0: NBC Radio, हर पल आपके साथ।
1: रुक रुक रुक रुक रुक रुक, रुक, रुक, रुक, रुक, रुक, रुक, रुक, रुक जाना।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में

मॉरिसस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन के तत्वावधान में आज के इस विशेष कार्यक्रम में सभी श्रोताओं को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जन्माष्टमी का महान पावन पर्व मना रहे हैं। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण की मानव समाज के लिए सर्वोत्कृष्ट जो देन है वो है भगवद गीता। श्रोताओं, साक्षात परब्रह्म के मुख से निकलने वाला ये अमृत अपने रूप में अद्वितीय है। आध्यात्मिक विकास के लिए इससे बढ़कर के कोई ज्ञान कोश नहीं है। सब कुछ छोड़ करके यदि कोई भगवद गीता की ही आराधना करे तो श्रोताओं, संसार की कोई शक्ति उसे अतिक्रांत नहीं कर सकती। भारतीय आस्तिक जन तो इसका समादर करते ही है, नास्तिक भी इसके सामने नतमस्तक होते हैं। श्रोताओं, जो हिंदू नहीं है वो भी भगवद गीता के सामने नतमस्तक होते हुए दिखाई देते हैं। विदेशी भी मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा करते हैं। इसके गौरव को देखते हुए भगवद गीता तथा उसके उपदेशक के आविर्भाव काल के संबंध में अनेक लोगों को भ्रम हो जाता है। कुछ विदेशियों ने तो लिखा है कि भगवद गीता जो है और श्री कृष्ण या भगवान राम से पहले, भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान राम से पहले हुए थे। ये कोरी कल्पना का आधार है श्रोताओं, इस पर जो है और किसी भी तरह से इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार सतयुग में नहीं हुआ था, उनका अवतार तो द्वापर युग में हुआ था। भगवद गीता का उपदेश भी और उसी समय हुआ था, क्योंकि भगवान राम का अवतार तो त्रेता युग में हुआ था, एक युग पहले। लेकिन फिर भी यदि वे भगवद गीता का आदर करते हैं, जिसका आदर करना अपरिहार्य है, तो उन्हें यह भी समझना चाहिए कि भगवद गीता स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। ये भगवद गीता महाभारत का एक अंग है। यदि गीता ज्ञान सत्य है तो श्रोता, महाभारत अर्जुन और वेदव्यास को झुठलाया नहीं जा सकता है। इस प्रकार समय की श्रृंखला अपने आप स्पष्ट हो जाती है कि महाभारत के बाद महाराज परीक्षित राजा हुए, उनके समय में ही कलियुग का आरंभ हुआ। कलियुग को प्रारंभ हुए अभी 5000 और 100 कुछ वर्ष बीते हुए हैं। इसके पश्चात, इसके पूर्व श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत में और महाभारत के बाद का समय जो है पंचांगों में भी तो प्राप्त होता है। पंचांग में युधिष्ठिर संवत लिखा हुआ रहता है। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण को और कुछ लोग जो है अवतार न मान करके महापुरुष मानते हैं, फिर भी उन्हें योगीराज, नीतिज्ञ, शिरोमणि, उच्च कोटि के दार्शनिक कहते हैं। अस्तु, भगवान श्री कृष्ण और उनकी गीता की महत्ता के सामने नतमस्तक तो वे भी होते ही रहते हैं। तो श्रोताओं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की हम जयंती मना रहे हैं। श्रोताओं, ये हमारे लिए और बहुत दिव्य बात है। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण ने जो उनका जो बुद्धि कौशल है ना, वो बहुत अद्भुत है। जो उनका

बुद्धि जो धर्म को सुलझाने में कितने और वो पटु थे, ज्ञान उनके और मस्तिष्क में और कूट कूट करके भरा हुआ था, ऐश्वर्य उनका जो तीसरा रूप है, वैराग्य जो है और वो जो बुद्धि का चौथा रूप है। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण राग द्वेष के और विरोधी रूप है। श्रोताओं, वैराग्य बुद्धि की पूर्णता तब होती है जब संसार में रहता हुआ भी सब में अनासक्त रहे, जैसे कमल का पत्र जल में रहता हुआ भी उससे निर्लिप्त रहता है। संसार छोड़ करके अलग हो जाना अभ्यासवश अपेक्षाकृत कुछ सरल है, परंतु संसार में रहते हुए उसमें एकदम निर्लिप्त रहना अत्यंत कठिन है। यही है शुद्ध ऐश्वर्य धर्म। एक तरफ तो वे नंद यशोदा के स्नेह पास और गोपियों के प्रेम में इस प्रकार बंधे हुए प्रतीत होते हैं और उनके बिना एक क्षण भी रहना कठिन प्रतीत होता है। श्रोताओं, किंतु दूसरी ओर अक्रूर के साथ मथुरा जाने के बाद एक बार भी वृंदावन वापस नहीं आए। ये जो है और ये आदर्श है, उनसे जो है एक बार गोपी प्रेम नहीं करता उसका क्या है? जब उन्होंने अपने कुटुंबी यादवों को भी उदंड होते हुए देखा, उनके द्वारा अशांति की संभावना हुई तो उनका भी और उन्होंने विनाश तत्काल विनाश कर दिया। श्रोताओं, राग द्वेष शून्यता का दूसरा नाम समता है, जो उनके चरित्र में ओतप्रोत है। हर एक यही समझता है कि भगवान कृष्ण मेरे हैं, किंतु वे किसी एक के नहीं थे। श्रोताओं, सबके थे और सबसे स्वतंत्र भी थे। महाभारत युद्ध के उपस्थित होने पर दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही सहायता मांगने के लिए जाते हैं और दोनों का ही जो है और भगवान कृष्ण जो है मनोरथ परिपूर्ण करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है श्रोताओं कि भगवान के जो लक्षण बतलाए गए हैं वे सब भगवान कृष्ण में ही मौजूद हैं। कहा भी गया है कि वैराग्यम ज्ञानम ऐश्वर्यम धर्म चेत्यात्म बुद्धयः बुद्धिश्री यश्चैव षड्वे भागवतो भगाः। इसमें यश और श्री दो बाह्य लक्षण हैं, ये भी उनके अनुगामी हैं। अन्य की चर्चा अभी अभी मैंने संक्षिप्त रूप में कही, तो भगवद गीता में श्रोताओं इन सब विषयों का विशद वर्णन है कि बुद्धि योग ही भगवद गीता का मुख्य विषय है, जिसमें वैराग्य योग, ज्ञान योग, ऐश्वर्य योग और धर्म योग क्रम पूर्वक आ गए हैं। योग साधना से जीवों में भी सात्विक बुद्धि के लक्षण प्रकट हो सकते हैं, किंतु किसी मात्रा में होते हैं और प्रयत्न करने पर होते हैं श्रोताओं, परंतु ईश्वर में स्वतः सिद्ध और पूर्ण होते हैं। भाई, भगवान के योग साधन रूप का वर्णन तो कहीं भी नहीं है, अतः यही कहना पड़ता है कि बुद्धि लक्षण उनमें स्वतः सिद्ध है, इसलिए उन्हें अच्युत भगवान ईश्वर का पूर्ण अवतार और साक्षात परमेश्वर मानना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण में अव्यय पुरुष का आचरण है, अव्यय पुरुष के पांचों लक्षण उनमें सन्निहित हैं। श्रोताओं, भगवद गीता में उन्होंने अपने को अव्यय पुरुष भी कहा। अव्यय पुरुष की मुख्य पांच कलाएं हैं आनंद, विज्ञान, मन उनमें सन्निहित है। वाक शक्ति से उन्होंने अनेक बार काम किया। भगवद गीता की घटना प्रसिद्ध है, युद्ध से पलायन करते हुए अर्जुन को उनकी वाक शक्ति ने ही स्वधर्म पालन में लगाया। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह कह करके भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन की बुद्धि को पलट करके रख दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवद गीता का हम अनुशीलन करें, उनका अध्ययन करें, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को कल्याणमय बना सकते हैं। आज यहीं पर समय समाप्त हुआ चला जा रहा है। ओम शांति ही शांति।

0: लीजिए सवेरे के 6 बज रहे हैं।
1: सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार सुमायरा अकबर अली से। आपको नमस्कार।
2: नमस्कार आदाब। कल रात राष्ट्रीय सभा में रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल को पारित किया गया है। रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल को परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद द्वारा पेश किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक के जरिए एक ठोस और साफ पैगाम दिया जा रहा है, खासतौर पर शराब या ड्रग नोशी करते हुए गाड़ी चलाने वालों को नए कानून के तहत इस जुर्म के लिए गाड़ियों को भी जब्त किया जा सकता है। रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कानून का पहला मकसद जुर्माना के पैसों को जमा करना नहीं या फिर गाड़ियों को जब्त करना नहीं, बल्कि नागरिकों की जिंदगी बचाना है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि ये एक बुनियादी जिम्मेदारी है और इस बिल के तहत सड़कों पर सभी तरह के जुर्मों के लिए सजा होगी और पुलिस अफसरों के पास कैमरे भी होंगे। इस साल के पहले 6 महीनों के दौरान निर्यात के सतह पर अच्छे नतीजे दर्ज हुए, लेकिन कुछ दूसरे पहलुओं को भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए। मॉरिशस एक्सपोर्ट एसोसिएशन मेक्सा के मुताबिक 0.2% की बढ़ोतरी नोट की गई है। 54 बिलियन रुपए का कारोबार हुआ है। हर साल की तरह हजारों मुर्शन 8 सितंबर को सेंट ख्वामे फौतलावाल के मकबरे पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक और गरीबों का मसीहा थे। इस साल इस तीर्थ यात्रा का विषय ओसामा विक पेलावाल पॉइंट सोसाइटी प्लीजिस एक फातियानिल है। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान आयोजक कमेटी से पादरी पैट्रिक पुलिदोरा ने उल्लेख किया कि ये विषय पोर्टली के बिशप के संदेश से प्रेरित है। विदेश में अमेरिकी ताकतों ने कल से ईरान पर हमले फिर से शुरू कर दिए। अमेरिका के सेंट्रल कमांड सेंटकम ने कहा कि अब नए हुरमूज में तिजारती शिपिंग के खिलाफ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को के हालिया हमलों की कोशिश के जवाब में अमेरिका ने कदम उठाया। ईरान के रेड क्रेसेंट के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई और एक बच्चा शामिल था। 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जाते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह घने बादल होंगे, दोपहर बाद सेंट्रल प्लाटो और हवाई ढलानों पर बादल घिराएंगे और रह रहकर हल्की बारिश होगी। आज रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और सेंट्रल प्लाटो तथा पूर्व के एक हिस्से में रह रहकर बारिश होगी। हवा पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। इसी वजह से दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासतौर पर पूर्व और दक्षिण वाले लगूनों में। तापमान सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम 20 से 23। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:17 पर और आज शाम को 6:01 पर सूरज ढल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
3: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ये RM3 है, परवीज़ा का साथ है। उर्दू तशरियात बनामे सबल खैर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आप तमाम सामीन खैरियत और आफियत से होंगे। रोशनियों, रहमतों और बरकतों से सजी इससे खूबसूरत नशरियात में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। मज़ीज़ामीन, ये वो लम्हात है जब दिल ज़िक्र इलाही से मुनव्वर होते हैं, रूह को सुकून मिलता है और ईमान को ताज़गी नसीब होती है। तो आइए मज़ीज़ामीन, इससे रूह परवर महफिल का आगाज़ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बाबरकत कलाम से, जो सरापा हिदायत और सरापा नूर है। बग़ौर व बाअदब समात फरमाइए तिलावत कुरान पाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम, ये हिकमत की भरी हुई किताब की आयतें हैं, नेकुकारों के लिए हिदायत और रहमत, वो जो नमाज की पाबंदी करते और जकात देते हैं, और वही हैं जो आखिरत का यकीन रखते हैं, यही अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही कामयाब हैं।

और लोगों में बाज ऐसा है जो बेहुदा हिकायतें खरीदता है ताकि लोगों को बेसमझे अल्लाह के रास्ते से गुमराह करे और उससे हंसी करे। यही लोग हैं जिनको जलील करने वाला अजाब होगा। और जब उसको हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो अकड़ कर मुंह फेर लेता है, गोया उनको सुना ही नहीं। जैसे उसके कानों में सिकल है, तो उसको दर्द देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो।

जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनके लिए नेमत के बाग हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है और वो गालिब है, हिकमत वाला है।

उसी ने आसमानों को सुतूनों के बगैर पैदा किया जैसा कि तुम देखते हो, और जमीन में पहाड़ बनाकर रख दिए ताकि वो तुमको लेकर डोलने न लगे, और उसमें हर तरह के जानवर फैला दिए, और हम ही ने आसमान से पानी नाजिल किया, फिर उसमें हर किस्म की नफीस चीजें उगाई। ये तो अल्लाह की तखलीक है, अब मुझे दिखाओ कि अल्लाह के सिवा जो हस्तियां हैं उन्होंने क्या पैदा किया है। हकीकत यह है कि ये जालिम खुली गुमराही में हैं।

और हमने लुकमान को दानाई बख्शी कि अल्लाह का शुक्र करो, और जो शख्स शुक्र करता है तो अपने ही फायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो अल्लाह भी बेनियाज है, लायक हमदो सना है।

और हमने इंसान को जिसे उसकी माँ तकलीफ पर तकलीफ सहकर पेट में उठाए रखती है, फिर उसको दूध पिलाती है और आखिरकार 2 बरस में उसका दूध छुड़ाना होता है। मैंने ताकीद की है कि मेरा भी शुक्र करता रहे और अपने माँ बाप का भी कि तुमको मेरी ही तरफ लौट कर आना है।

अगर वो दोनों तुझ पर जोर डालें कि तू मेरे साथ किसी ऐसी चीज को शरीक करे जिसका तुझे कुछ भी इल्म नहीं, तो उनका कहा ना मानना। हाँ, दुनिया के कामों में उनका अच्छी तरह साथ देना और जो शख्स मेरी तरफ रुजू लाए उसके रास्ते पर चलना। फिर तुमको मेरी तरफ लौट कर आना है तो जो काम तुम करते रहे हो सबसे तुमको आगाह कर दूंगा।

लुकमान ने यह भी कहा कि बेटा अगर कोई अमल चाहे राई के दाने के बराबर भी छोटा हो और हो भी किसी पत्थर के अंदर या आसमानों में मख्फी हो या जमीन में, अल्लाह उसको कयामत के दिन ला मौजूद करेगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बारीक भी है, खबरदार है। बेटा नमाज की पाबंदी रखना और लोगों को अच्छे कामों के करने का मशवरा देते रहना, बुरी बातों से मना करते रहना और जो मुसीबत तुझ पर वाकई हो उस पर सब्र करना, बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम हैं।

और तकब्बुर करते हुए लोगों के सामने गाल न फुलाना और जमीन में अकड़ कर न चलना, इसलिए कि अल्लाह किसी इतराने वाले शेखी खोरे को पसंद नहीं करता। और अपनी चाल में एतदाल किए रहना और बोलते वक्त जरा आवाज नीची रखना, क्योंकि बहुत ऊंची आवाज गधों की सी है और कुछ शक नहीं कि सबसे बुरी आवाज गधों की होती है।

क्या तुमने नहीं देखा कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सबको अल्लाह ने तुम्हारे काबू में कर दिया है और तुम पर अपनी जाहिरी और बातिनी नेमतें पूरी कर दी हैं। और बाज लोग ऐसे हैं कि अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, न इल्म रखते हैं और न हिदायत और न किताब रोशन। और जब उनसे कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी पैरवी करो तो कहते हैं कि हम तो उसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादों को पाया। भला अगरचे शैतान उनको दोजख के अजाब की तरफ बुलाता हो,

और जो शख्स अपने आप को अल्लाह का फर्मा बरदार कर दे और नेकुकार भी हो तो उसने मजबूत कड़ा थाम लिया और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही की तरफ है और जो कुफ्र करे तो उसका कुफ्र तुम्हें गमनाक ना कर दे। उनको हमारी तरफ लौट कर आना है फिर जो काम वो किया करते थे हम उनको जता देंगे। बेशक अल्लाह दिलों की बातों से भी वाकिफ है। हम उनको थोड़ा सा फायदा पहुंचाएंगे फिर अजाब शदीद की तरफ मजबूर करके ले जाएंगे

और अगर तुम उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया तो बोल उठेंगे कि अल्लाह ने। कह दो कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उनमें अक्सर समझ नहीं रखते।

और अगर यूं हो कि जमीन में जितने दरख्त हैं सब के सब कलम हो और समंदर का तमाम पानी स्याही हो और उसके बाद सात समंदर और स्याही हो जाएं, तो अल्लाह की बातें यानी उसकी सिफतें खत्म न हो। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है।

अल्लाह को तुम्हारा पैदा करना और जिला उठाना एक शख्स के पैदा करने और जिला उठाने की तरह है, बेशक अल्लाह सुनने वाला है, देखने वाला है।

क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा रखा है। हर एक एक वक्त मुकर्रर तक चल रहा है, और ये कि अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। ये इसलिए कि अल्लाह की जात ही बरहक है, और जिस जिस को ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो सब बातिल है, और ये कि अल्लाह ही आली रुतबा है, गरामी कद्र है।

क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही की मेहरबानी से कश्तियां समंदर में चलती हैं ताकि वो तुमको अपनी कुछ निशानियां दिखाए। बेशक इसमें हर सब्र करने वाले शुक्र करने वाले के लिए निशानियां हैं।

और जब इन पर समंदर की लहरें सायबानों की तरह छा जाती हैं तो अल्लाह को पुकारने और खालिस उसकी इबादत करने लगते हैं। फिर जब वो उनको नजात देकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो चंद ही लोग इंसाफ पर कायम रहते हैं और हमारी निशानियों से वही इनकार करते हैं जो अहद शिकन है ना शुक्र है।

0: लोगो अपने परवरदिगार से डरो और उस दिन का खौफ करो कि न तो बाप अपने बेटे के कुछ काम आए और न बेटा बाप के कुछ काम आ सके। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, बस दुनिया की जिंदगी तुमको धोखे में न डाल दे और न वो बड़ा फरेब देने वाला शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में किसी तरह का फरेब दे।
1: عنده علم الساعة وينزل

0: अल्लाह ही को कयामत का इल्म है और वही मैं बरसाता है और वही हामिला के पेट की चीजों को जानता है, और कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या काम करेगा, और कोई शख्स नहीं जानता कि किस सरजमीन में उसे मौत आएगी। बेशक अल्लाह ही जानने वाला है और खबरदार है।
1: सदकल्लाहुल अजीम। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक आयत कुरान पाक की सुने उसके लिए चंद नेकियां लिखी जाती हैं, और जो तिलावत करे उसके लिए कयामत के दिन नूर होगा। कुरान अल्लाह ताला की वो आखिरी और मस्तनद तरीन किताब है जिसे दीन के मामले में इंसानियत की हिदायत के लिए मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है। इस किताब हिदायत से इस्तिफादा इंसान तभी कर सकता है जब वो उसे पढ़ेगा और उस पर अमल करेगा। अल्लाह हम सब को कुरान समझकर पढ़ने की तौफीक दे, आमीन। अल्लाह उस ज़ात आला का अजमत वाला नाम है जो तमाम कमाल वाली सिफतों की जामा है। सिर्फ़ अल्लाह ताला इबादत का मुस्तहिक है।

हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग मैं सबको मानती हूँ मगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। ऐ इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में भी समा जाना, हमको भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना बना जाना। मज़ी सामीन, क़ुरान करीम की मुख्तलिफ आयात करीमा और मुतअद्दिद अहादीस शरीफा से ये बात वाज़ह तौर पर मालूम होती है कि एक मुसलमान

आसमान को अल्लाह ताला सैयदिना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम से बे इंतहा मोहब्बत करनी चाहिए। दर हकीकत मुअज़्ज़िज़ामीन, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

ये आर एम फ्री हैं, आप साथ दे रहे हैं उर्दू नशरियात सबाल खैर में दिन के 7 बजे तक। मजीद सामीन, रसूल करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक उसके माँ बाप, औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि आपकी मुबारक सुन्नत को अपनाया जाए, आपके दीन की मदद की जाए, आपके अक़वाल व अफ़आल की इत्तिबा की जाए, जिन बातों का दिया उनको बासत शौक बजा लाया जाए और जिन बातों से मना फरमाया उनसे बाज रहा जाए।

कुरान हकीम में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान यूँ हुआ, जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माना बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना, और जिसने रूगरदानी की तो हमने आपको उन पर निगहबान बना कर नहीं भेजा। ये आरएम फ्री है, परवीज़ा का साथ है, उर्दू नशरियात सबल खैर में दिन के 7 बजे तक। आइए मुअज़्ज़िज़ सामईन, चंद मज़ीद निशानियाँ हैं जिनको देखकर इस बात की पहचान होती है कि वाकई मुसलमान के दिल में मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र शरीफ बकसरत करना, बहुत ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ना, जिक्र की मजालिस मदरसे का शौक़ और उन मजालिस मुबारक में हाज़िरी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों से दोस्ती रखना, और दुनिया से बेरग़बती और फ़कीरी को मालदारी से बेहतर समझना। या अल्लाह, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि असल ईमान बल्कि ईमान की भी जान है, उसे अपने दिलों में बढ़ा दे। सिर्फ दावेदार नहीं बल्कि हकीकी आशिक रसूल बना दे।

रसूल कायनात फ़क्र मौजूदात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात ज़िंदगी ही क़यामत तक के लिए शुआर मयार हैं। यही वजह है कि सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर गोशा ताबनाक और हर पहलू रोशन है। यौम विलादत से लेकर रोज़े रिहलत तक के हर लम्हा को कुदरत ने लोगों से महफूज करा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतवालों ने महफूज रखा है और सनत के साथ तहकीकी तौर पर हम तक पहुंचाया है। लिहाजा मुअज़्ज़िज़ सामईन, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियात व अकमलियात हर किस्म के शक और शुबा से महफूज हैं। अल्लाह पाक हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में शामिल करें। तकनीकी मदद अंजू की रही है, मशकूर व ममनून है हम। परवीज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

सो गाइस थैंक यू सो मच समय जवान और रेडियो मनोरंजन लहर पर आप हमारी साथे जता जता बस एज कहशु के जिंदगी ना दिवसो वधारवा होय तो भाई विचारो ना कल्ला घटाड़ी दो अने एन्जॉय करो अपना म्यूजिक ने घणी वखत जारे मन बहु गुचवायेलु होय ने सो म्यूजिक इज दी ओनली सोल्यूशन अने म्यूजिक नी साथे मन हळवू थई जाय छे सो तमारा माटे मूकी जई रह्या छीए सुरती लोचो नु आ टाइटल ट्रैक बस सामने आ मळता रहेशु ફરી વાર કાલે સવારે 10 વાગે સો ટિલ ધેન એન્જોય કરતા રહો આપણા ગુજરાતી ગીતો એન્ડ રતાને આપો અનુમતિ નમસ્કાર શુભ દિવસ આપ સૌ

नमस्कार प्रिय श्रोताओ, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। जी हाँ, एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और प्रभु के नाम के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत है। और मैं उषा कौर यहाँ पर इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर

करने के लिए 11:30 बजे तक जहां भक्ति है वहां शांति है जहां विश्वास है वहां जीवन में प्रकाश है आइए आज के इस खूबसूरत पल की शुरुआत करते हैं प्रभु के स्मरण और सच्चे दिल की प्रार्थना के साथ क्योंकि भक्ति केवल हाथ जोड़ने का नाम नहीं बल्कि दिल को सच्चाई और प्रेम से भरने का नाम है

के अवसर पर हम व्रत रख रहे हैं और श्रद्धा और विश्वास का गणेश जी का व्रत हमें यही सिखाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। विघ्नहर्ता श्री गणेश अपने भक्तों के जीवन से कठिनाइयों को दूर करने की प्रेरणा देती है और बुद्धि धैर्य और सही राह पर चलने का आशीर्वाद देते हैं। तो आइए इस पवित्र अवसर पर हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे गणपति बप्पा, हमारे मन से हर डर और बुरा विचार दूर कीजिए और हमारे जीवन को सुख शांति और सद्बुद्धि से भर दीजिए।

11:11 हुए हैं। श्रोताओं, नेपाल में आई हाल की भयंकर भार में हमें एक गहरी सीख देकर जाती है, ये जीवन कितना अनमोल और कितना अनिश्चित है। एक पल सब कुछ ठीक होता है और अगले ही पल प्रकृति की एक लहर पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस आपदा ने हजारों परिवारों को गहरा दुख दिया और अनेक लोग अब भी अपनों की तलाश में हैं। ऐसे समय में हमें समझना चाहिए कि ना धन सदा साथ रहता है, ना मान ना पहचान साथ रहता है, तो बस हमारा कर्म, हमारी दया और प्रभु पर हमारा विश्वास। आज जो पल हमारे पास है उसे प्रेम से जिए, अपनों को समय दे, किसी दुखी का सहारा बने और हर सुबह प्रभु का धन्यवाद करे, क्योंकि जीवन बहुत नाजुक है परंतु प्रभु की दया बहुत महान है।

0: दिन के 12 बजे है। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे सुमेरा नमस्कार।
1: नमस्कार आदाब। अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट को और 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। ये प्रोग्राम 31 दिसंबर 2028 को ख़त्म होगा। अमेरिकी कांग्रेस ने इसे पारित किया है। एप्सा बैंकिंग ग्रुप ने विज्ञप्ति जारी की है। ग्राहकों से एक मोबाइल ऐप स्कैम से सावधान रहने की मांग की जा रही है। बैंक की दरखास्त करता है कि किसी भी शक के लिए ग्राहकों को फौरन 402-1000 पर फ़ोन करके बैंक से संपर्क करने की ज़रूरत है। मॉरिशस नोटरी एसोसिएशन ने कल पोर्टली में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। चीफ जस्टिस रेहाना मंगली गुलबूर और अटोर्नी जनरल गाविन ग्लोवर की मौजूदगी में यह समारोह लगाया गया। हिंद महासागर में नोटरी सम्मेलन के मौके पर यह पहल की गई। इलाके के डेलीगेट 4 सितंबर तक हिस्सा ले रहे हैं। रिबिया जोंपा के एक बाशिंदे को गिरफ्तार किया गया। 45 साल का ये व्यक्ति चोरी के कई मामलों से जुड़ा है। बाउंस चेक और फंडों की हेराफेरी के सिलसिले में पुलिस के मुताबिक फेसबुक पर मार्केट प्लेस पर उसने गाड़ी मालिकों से संपर्क किया होगा और जाली चेक्स देकर गाड़ियां खरीदी होंगी। फिर उसने गाड़ियों को फिर से बेचा। इस तरह उसने करीब 5.5 मिलियन रुपये हड़प लिए। विदेश में मिस्र के पूर्व में एक बस हादसे में कम से कम 16 लोगों की मौत हुई है। रेड सी के शहर दहाब और नुवेबा में अन्य 28 लोग जख्मी बताए जाते हैं। करीब 20 एम्बुलेंस को घटनास्थल पर भेजा गया। इजिप्ट में सड़क दुर्घटनाएं अक्सर होती हैं। पिछले साल करीब 6000 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई थी। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। गोपाल लेन रिविया डिजोंगी में 60 साल के 60 years old श्री बोलेन वीरासामी जो टिबोलेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सपैर तीन बजे इनके घर गोपाल लेन रिविया डिजोंगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रांबुआ की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। नंबर 5 डुगला स्ट्रीट लिसालिन में 49 साल की 49 years old श्रीमती होमावादी मुतुसामी ग्रेनाड पैदाशी नाम मुतुसामी जो अंबल के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सपहर तीन बजे इनके पति जोर्ज डेविड ग्रेनाड के घर नंबर 5 डुगला स्ट्रीट लेसालिन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेसालिन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। अंग्रे मर्सियालो कुले में 72 साल के 72 years old श्री गुरुदत्त ननका जो गुरु के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल एक बजे इनकी पत्नी संतना ननका के घर ओंगे मौसियालो कुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोक में दुबे परिवारों से हमें

0: हमदर्दी है।
1: You're listening to RM3 Radio Man.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: सभी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स को विनीता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। 12:08 हुए हैं, आज हैं 2 सितंबर और हम हैं रेडियो मनोरंजन पर, लेकर आए हैं आपके लिए खूबसूरत पुराने गाने। यानी कि यहाँ पर शुरू होता है हमारा सफर, जिसे सुहाना बनाने के लिए हमें आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप

0: नहीं होंगे तो फिर ये सफर पूरा कैसे होगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, थोड़ी देर में हमारा टिकटॉक लाइव होगा और हम आपसे करेंगे कुछ बातें और कुछ मुलाकातें, क्यों नहीं।
1: RM3 Radio.

का नाम है आशिक, गाना आपके लिए मुकेश साहब की आवाज में। 12:14, नमस्कार, स्वागत है रेडियो मनोरंजन RM3 पर। मैं हूं वेदिता, साथ दे रही हूं आपके। टिकटॉक हाँ होगा ना लाइव।

चलिए तो यहां पर सुहाना सफर के जितने भी हमारे प्यारे दोस्त हैं, मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा जो सिलेक्शन है अलग-अलग गीतों के साथ आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारे खूबसूरत गाने हैं कहीं ना कहीं आपकी पसंद इसके साथ जरूर जुड़ी हुई होगी। तो चलिए देर न करते हुए अगले गाने की ओर बढ़ते हैं और ये जो गाना है लेकर आए हैं आपके लिए

0: मैंने गीत लिखा है लेकिन मैं गीत लिखती नहीं हूँ, मैं लिखे हुए गाने, गाए हुए गाने आपके लिए पेश करती हूँ।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
0: चलिए देखते हैं हमारे कौन से वो दोस्त हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। सो सबसे पहले तो वेलकम करते हैं हम मिंता का, सहाय फैमिली हमारे साथ है, वी हैव गुमारस और ये हैं फ्रॉम ब्राज़ील, रीता देवी नामा और साथ में हमारे हैं यास्मीन, रास्फा, हाय रास्फा, विशाल थैंक यू सो मच, बनापिची आपको भी, एंड जी वीना, हाय आई एम गुड हाउ आर यू, सुल्ताना खंदाई नमस्कार, उत्तम जी आपका स्वागत है, सुनील भुवन हमारे साथ हैं, ओके, साथ में उनके दोस्त विक्षा केदू और सभी हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं तो बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, ओके, और गीतों का मजा लेते। चलिए माधुरी 1 2 3 4 करते हुए आ गई हमारे प्रोग्राम में, छा गई, तो ऐसे में हमने भी सोचा कि गाना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे सुनकर सब झूम उठे। नैन नहीं मिला सकते लेकिन गीतों से चैन तो चुरा ही सकते हैं, है ना। फिल्म का नाम है आमने सामने, रफी साहब की आवाज में पेश है गाना।

0: उस जालिम का नाम तो शायद हमको भी पता हो, लेकिन कौन है वो जानना चाहेंगे आप भी। कौन है हमारे साथ, तो आ जाइए हमारे टिकटॉक लाइव से जुड़ जाइए।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर,
0: हमसे पूछो हमको पता है उस जालिम का नाम। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 12:35 हुए हैं, वनिता का साथ दे रहे हैं आप लोग, और यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है इसके चलते यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त जुड़ चुके हैं, घूम रहे हैं एंड साथ में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हमारे गीतों के साथ काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यहाँ पर मैं आपके साथ पुराने गानों के साथ आई हूं, तो डेफिनेटली जब आपके डेडिकेशंस आते हैं, आपके मैसेज आते हैं, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो गाना जो होगा हम परी के नाम डेडिकेट करते हैं। वी हैव बाजा राकेश फ्रॉम फिजी आइलैंड्स, हेलो फिजी वालों कैसे हो, सिमला बिजादर, नीलिमा, रोहित को बस एक ही चीज आती है, वो है श्रीता, उन्होंने बस वही सीखा है। चलो थैंक यू सो मच। दीप्ति गुंदावरी जी आपका वेलकम है, लक्ष्मी वणकम कैसे हो, एंड वी हैव रंजीत सी दोयाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, क्या बात है रंजीत जी, आपका वेलकम है। एंड चलिए जी यहाँ पर डेविडसन हमारे साथ हैं, क्या ओके रिक्शा, हाय कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। किरण पुरी का वेलकम है, सायरा बानू हमारे साथ, किरण जी कैसे हो आप, और सोने जा रहे हो या अभी प्रोग्राम सुनने के बाद सोओगे, आई गेस प्रोग्राम सुनने के बाद सोओगे। तो चलिए यहाँ पर रमेश जी का वेलकम है, एंड ट्रैवल के लिए गाना हम डेडिकेट करते हैं, और साथ में गाना होगा आपके लिए, कहते हैं मम्मी का आज बर्थडे है, उनका नाम है माला गोबिन, चलिए उनके लिए। एंड यहाँ पर मनीषमा जी छुट्टी पे है, जी मनीषमा जी छुट्टी पे है, जैसे आएगी मुलाकात हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर रेहा के लिए गाना होगा विश्वनाथ प्रयाग जो त्रिनिदाद से है, एंड ऑल्सो फॉर लीना।
2: RM3 रेडियो, रेडियो, रेडियो।

0: सुहाना सफर।
1: अच्छा तो हमने गाना लगाया था नैन चुरा नैन मिलाकर चैर चुराना किसका है ये काम हमसे पूछो उस जालिम का नाम। यहाँ पे लिखा है उस जालिम का नाम है विदिता जो टिकटॉक लाइव नहीं कर रही है। अरे टिकटॉक लाइव हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट गाना किरण पुरी जी, जीजी लाल, नरेंद्र कुमार निंदी, काला राम कारीगर, वैंकूवर कनाडा में सुन रहे हैं, रोज सुनते हैं हमें, रोज रोज रोज। ओके तो चलिए यहाँ पर गाना किसके लिए होगा ये भी तो बताते चले। सो वी हैव नेक्स्ट गाना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जी ट्विंकल के लिए वी हैव विशा मीरा कहती हूँ कि ग्रैंड डॉक्टर विधि का बर्थडे है तो विधि के लिए गाना होगा। निजाम उजीर आपका हम वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच हमारे कार्यक्रम के साथ आप जुड़े हुए हैं। और सुनीता हमारे साथ है और उनकी ठीक है उनकी जो जेठानी है आज उनका बर्थडे है तो उनके लिए गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं जैसे कि सुगिनाम निज़ाम जी, वैसे आप सुगिनाम साउथ अमेरिका से हमें सुन रहे हैं तो आपका हम वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच, लवली हैविंग यू इन माय शो। रेशमा राम किशुन जी नमस्कार जी, कैसे हो आप। चलो यहाँ पर कर से कहते हैं हाय आई एम ऑन वेकेशन इन सिंगापुर। सिंगापुर वालों कैसे हो, तो चलो सिंगापुर में प्यार फैलाते रहो, हमारे प्रोग्राम का भी वहाँ पर भी चर्चा करते रहो और वहाँ पर भी जितने सिंगापुरियंस मिले उनको भी हमारे प्रोग्राम सुनाओ, उनको बोलो म्यूज़िक क्या होता है, उनको बोलो प्यार क्या होता है, उनको बोलो कि झूमना क्या होता है ऐसे गाने में।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: ये बड़ा मजा का गाना था, तुम हंसी में जवां डांस करके मजा आया आप लोगों को। हम भी कोशिश कर रहे थे लेकिन लिसनर्स के इतने सारे मैसेज आए हैं कि हम पढ़ रहे थे, नोट कर रहे थे। नेक्स्ट गाना निजाम बहादुर के लिए, लक्ष्मी जी के लिए, रेशमा, साहिल, मेहंदिनी और उनके फ्रेंड के लिए बिंता, सूबी, वेदराम रिचा हमारे साथ, शोभा, नेहा, सूर्या जो फिजी से साथ दे रहे हैं और बृंदा सोहन फ्रॉम ओके ये तो नहीं लिखा कहाँ से, लेकिन शी वॉन्टेड अस टू प्ले अ सॉन्ग फॉर हर इटालियन फ्रेंड्स। ओके आपके इटालियन फ्रेंड्स के लिए भी। जैस्मीन ए के, वी हैव सिंग, ओके कहते हैं एंजॉइंग फ्रॉम न्यूजीलैंड। हेलो न्यूजीलैंड वालों, कैसे हो, थैंक यू सो मच। एंड गाना होगा एस के सिदानी के नाम, विमी हेलो जी कैसे हो जी। और साहिल तो आ ही गए हैं हमारे प्रोग्राम में, चलिए उनके बॉस अनिल के लिए भी गाना होगा। हेलो एवरीवन, राधे राधे, ये हैं बेफिक्रे बॉयज, ओके थैंक यू। और यहाँ पर शाम स्टाइल हमारे साथ हैं, हेलो गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कहती है तू हंसी मैं जवां, मैं भी जवां, तुम हंसी नहीं, तुम हंसी मैं जवां तुम हंसी। देखो ऐसा करते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं, जितने भी लोग हैं सब हंसी सब जवां और सब मस्त एकदम यहाँ पर हमारा प्रोग्राम चल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ पर चांदनी सौदागर हमारे साथ है, किरण हाई, और परी कहती है हंसी तो फंसी हंसी तो फंसी यानी कि मैं हंसी और मैं फंस गई, ठीक है चलो। यहाँ पर केव हमारे साथ हैं एंड यहाँ पर आप कहते हैं कि मम्मा का बर्थडे है 3

सितंबर को अगर उनके लिए कोई गाना आप मम्मा का नाम फटाफट भेज दीजिए मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर वी हैव शालिनी, वी हैव बबीता बुलाकी एंड रीमा के लिए कोई गाना, ठीक है। और गाना होगा आपके लिए देविका किस नामा, ओके। गाना आपके लिए वी हैव संस्कृति और वी हैव क्यारा। चलिए इसी के साथ अभी जितने भी लोगों की मम्मी के पापा का भाई का बहन का जितने भी लोगों का बर्थडे है प्लीज़ लेट मी नो एंड लेट मी बी द बर्थडे, हो सकता है कल है, अगर आप अभी उनको विश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंड कहते हैं तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी, अगर आप चाहें तो ये गाना हमारे लिए चला सकती हैं। वैसे मैं देखती हूँ अभी मूड जो है ना थोड़ा मस्ती करने का है और यहाँ पर इटालियन डोस्त हमारे साथ है।

नजर नहीं चुराएंगे जी बस अगले गाने के साथ आगे बढ़ना है ये गाना हम रोश के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे हेमा आकाश निहाल सुजन हेमा और सभी बंतुआ फैमिली के लिए जो रहते हैं सचबेया देविका सुब्रन गंगाराम और साथ में ललिता हेलो जी कैसे हो इनके लिए गाना होगा दीप्ति गुंदावरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में यहाँ पर गाना जो होगा डेडिकेट करना चाहेंगे हम आपके लिए एंड चलो यहाँ पर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू कौशल जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर चुके हैं तो उनको हमारी ओर से बहुत सारा प्यार श्यामा माहिरा सुनील आपके लिए गाना होगा

0: मधुरी सुंदर संक्षिप्त समाचार आपसे अर्षिता नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉरिशस को अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट यानी अगवा के तहत अमरीकी बाजार में मिलने वाली तरजीही पहुंच अब 31 दिसंबर 2028 तक जारी रहेगी। इससे पहले इस व्यवस्था को इस साल की शुरुआत में 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया था, लेकिन अब इसे और 2 वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस फैसले का मॉरिशस के विदेश मामलों, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री रितेश रामफल ने स्वागत किया है। उनके अनुसार ये परिणाम उनके प्रशासन के तहत शुरू की गई बातचीत और वार्ताओं का नतीजा है। खासतौर पर थर्ड कंट्री फैब्रिक व्यवस्था यानी किसी तीसरे देश से प्राप्त कपड़े के इस्तेमाल की अनुमति को भी बरकरार रखा गया है। ये प्रावधान मॉरिशस के स्थानीय कपड़ा उद्योग के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मॉरिशस में 300 साल से अधिक पुरानी मॉरिशस एसोसिएशन ऑफ नोटरी ने कल यानी मंगलवार 1 सितंबर को पोर्टलिस में अपने पहले आधिकारिक मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश रिहाना मंगली गुलबुल और न्याय मंत्री गाविन ग्लोवर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ये उद्घाटन हिंद महासागर क्षेत्र के नोटरी सम्मेलन 2026 के तहत हुआ, जिसका आयोजन मॉरिशस में 1 से 4 सितंबर तक किया जा रहा है। इस सम्मेलन में हिंद महासागर क्षेत्र के विभिन्न देशों और द्वीपों से आए प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा ले रहे हैं। मॉरिशस में विदेशी कामगारों की बढ़ती मौजूदगी के बीच स्थानीय लोगों के रवैये को लेकर बहस तेज हो रही है। रविवार को साबलनुआ इलाके में स्थानीय निवासियों और विदेशी कामगारों के बीच झड़प हो गई। इस घटना की परिस्थितियों से परे अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है, यहाँ के दूसरे देशों से मॉरिशस आए इन कामगारों को स्थानीय लोग किस नजरिए से देखती हैं। सुपर मार्केट्स में काम करने वाले कई विदेशी कैशियर मडागास्कर, नाइजीरिया इत्यादि देशों से हैं। हालांकि कुछ जगहों पर ग्राहक विदेशी कामगारों की काम करने की धीमी रफ्तार, कभी कभी मुस्कुराहट की कमी या भाषा की बाधा को लेकर शिकायत करते हैं। हालांकि इन सुपरमार्केटों में ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मॉरिशस में फिलहाल 50,000 से अधिक विदेशी कामगार वर्क परमिट या सर्टिफिकेट ऑफ एग्जेम्पशन के तहत काम कर रहे हैं। विदेशी कामगारों की बढ़ती संख्या को लेकर जहां उनकी आर्थिक भूमिका पर जोर दिया जा रहा है, वहीं कुछ मॉरिशनों में इसे लेकर नाराजगी और असहजता भी बढ़ती दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि बढ़ते ड्रोन हमलों के बीच रूसी हवाई क्षेत्र विमानों के लिए पूरी तरह असुरक्षित हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एयरलाइनों को चेतावनी दी है कि यूक्रेन द्वारा रूस पर ड्रोन हमले तेज किए जाने के बीच रूसी हवाई क्षेत्र धीरे धीरे पूरी तरह बंद जैसा हो जाएगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने वाली हर एयरलाइन

0: एयरलाइन बीमा कंपनियों और रूस के मुख्य हवाई अड्डों का संचालन जारी रखने वाले सभी पक्षों को बढ़ते खतरे की को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि रूस आसमान अब पूरी तरह खतरनाक होता जा रहा है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ रही सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। रुट बयानिका ग्लेनपर्क वाकवा में 67 साल। ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं। रॉयल रोड लावेंटियर में बो नेशनल स्टोक के करीब 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती प्रेमिला जीतन पैदाश्रम ननको और जिन्हें वीना के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ आज शाम 5 बजे उनके घर लावोचे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 5 PM। ब्रांच रोड मौलाशो में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री इंदरजीत तिलक जिन्हें सुबानन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके बेटे सचिन तिलक के घर मौलाशो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोसल मौलुबीन बिलमाओ की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुमरो एट 11 AM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर। सुहाना सफर की हमारे इस सेकंड आवर में आपका वेलकम है। दिन के 1:12, आज है 2 सितंबर। जी हाँ, महीने में देखो अभी नया महीना शुरू हुआ और फिर उसके बाद देखो एक दिन भी निकल गया। चलिए इसी के साथ यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा गाना होगा वो नजीमा गोबर्धन के नाम, कवीना, शेला, प्रिश्का, साथ में लोगा के नाम भी, एंड वी हैव मीनाक्षी, कौशल, जेरी, सिमी, रामदत्त, उमेश, जयपोल, दहन, श्वेता, रवीश, प्रिशा, रवीशा, नंदा, नरिका, सुमिता एंड उनके लव संजय के लिए, और साथ में यहाँ पर अविनाश कहते हैं वाकवा में बरसात हो रही है और बरसात के साथ जो गाने हम सुन रहे हैं ना कमाल के हैं। थैंक यू अविनाश, थैंक यू सो मच। एंड डेडिकेटिंग दिस वन फॉर बर्के, एंड वी हैव सुनील चमन, संगीता सुखारी, शारदा मुचुराम, वर्षा आरती कहते हैं रेनी नाले में भी बारिश हो रही है, एंजॉय द रेन, एंजॉय योर कॉफी। एंड यहाँ पर दीपक बिहारी, अशोक मुगलदास, बबीता, कविता सिरतन, दीवान, श्वेता, सीता, कविता, अनु, संध्या, बबीता बद्दू, रोजी, रोशनी कहती हैं कि RM2 RM3 का प्रोग्राम उन्होंने टीवी पे देखा, बड़ा मज़ा आया, नाचते गाते बहुत अच्छा लगा। थैंक यू खान, कैनेडा से हैं, वहीं पे, अच्छा तो जहाँ से खान है वहाँ से किरण भी है, कैनेडा में हमारे साथ हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। माधवी, एंड वी हैव द तिवारीज, रोहन का वेलकम, एंड साथ में गाना बेबू के लिए।
1: RM3 Radio.
0: अब आमोरे मुए बोल रहा है तो जिनको समझना है समझ लें, गाना जो होगा बानोए के नाम, और साथ में ये गाना डेडिकेट करते हैं उनके लिए जो साथ दे रहे हैं सलीमा, कैसी हो सिस्टर, एंड कल्याणी हरी के नाम, और यही गाना होगा उनके लिए जो इस समय ड्राइव कर रहे हैं, हमारे गीतों को एंजॉय कर रहे हैं। आह वाह क्या बात है, ड्राइव करते करते थोड़ी हल्की हल्की बारिश, मज़ा आ गया।

0: मोरे मियो तो वे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ।

लग जा गले से रुत है सुहानी या है मोहब्बत या है जवानी। सुहाना सफर। चलो जी, दिन के 1:20 आप विनीता का साथ दे रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप लोग हमारे साथ और यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है सुहाना सफर। नेक्स्ट गाना किसके लिए? ये होगा बबीता, अश्विन रामबन, प्रेमिला, मनवीर, सरिता चतन, प्रकाश कुमार, नौशाद बुझावन के लिए। और साथ में यही गाना हम डेडिकेट करेंगे भाई उनके लिए जो हमारे साथ गाने एंजॉय कर रहे हैं। रोहित अभी भी हमारे साथ हैं और यहाँ पर दीपक बिहारी कहते हैं कि भाई हम तो किसी और ही दुनिया में चले गए। कोई बात नहीं, हम उसी दुनिया को सजाने के लिए आते हैं और वो दुनिया हमारी होती है जहाँ पर कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती और यहाँ पर सिर्फ खुशियां होती हैं और यहाँ पर होते हैं कुछ ऐसे ऐसे गाने जो दिल चुरा ले। अभी गाना होगा एहसास फिल्म का, लेकर आ रहे हैं किशोरदा की आवाज में, आपको जरूर पसंद आएगा जी। याद दिला दी हमारे सभी श्रोताओं की इस समय हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है और टिकटॉक लाइव पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।

0: RL3 Radio.
1: होटो पे ऐसी बात लेकर आई है, कहती है अगर कह दिया तो दुहाई है दुहाई, लेकिन हमें तो गाना सुनना ही है और वो भी लता जी की आवाज में, फिल्म है जिवल थीफ। ये गाना हम इंदिरा जी की तरफ से शाम के नाम उनके दोस्त श्यामा जी के लिए गाना होगा और मिली के लिए भी। यहाँ पर विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गाना जो होगा हम डेडिकेट करते हैं उन तमाम दोस्तों के लिए जो साथ दे रहे हैं। आप चाहे तो अपने मैसेज हम तक पहुँचा सकते हैं। आपको पता ही है कि हमारा टिकटॉक भी लाइव है और आप लोग हमें 5250620 पे अपने मैसेज पहुँचा सकते हैं।

यहाँ पर कनाडा में किरण जी कहते हैं कि सोने का टाइम हो गया, लेकिन अभी पांच मिनट करते करते और पांच मिनट रुक जाता हूँ, गाना सुन के जाता हूँ। और यहाँ पर एक और वेदिता हमारे साथ है, कहती है नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हो आप? वेदिता को वेदिता सिविल के बड़ा अच्छा लगा जी।

0: सहोज कुमार के लिए गाना डेडिकेट करते हैं जो इस समय टिकटॉक पे हमारे लाइव है। And we also have Hansraj joining us. Hi, कैसे हो आप? वर्षा जी को कोई गाना सुनना है, चलाते हैं थोड़ी देर में। जितन दिलवा आपके लिए पेश है गाना। और रंभा जी जो विल्मो में हमें सुन रही हैं, आपके नाम।
1: होटो में ऐसी बात

चलो म्यूजिक तो चलता रहेगा और इसी के साथ दिन के 1:31 चांदनी हरिराम हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं हमारे टिकटॉक लाइव में, और साथ ही साथ यहां पर जो अगला गाना होगा ये हम डेडिकेट करते हैं आपके लिए अनीशा, अनिल कुमार, हेंसले, रेखा रामा, सिद्दिक, अंजू रामचंद नदुलवा, और साथ में हमारे जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे दोस्त, तो आपको थैंक यू वंस अगेन। वैसे थोड़ा सा प्यार हुआ थोड़ा, बाकी ये तो नया गाना है भाई, हम चला नहीं सकते, लेकिन मालिनी राम रेखा के नाम डेडिकेट करते हैं नेक्स्ट गाना। दीप्ति थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, और चलिए इसी के साथ अभी हम नेक्स्ट गाना मुर्जू के नाम डेडिकेट करते हैं, और साथ ही साथ रेखा जी थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। विवीना कैसे हो जी, हेलो जी, ऑल गुड। चलो तो यहाँ पर अब किरण जी कहते हैं अब नींद रुकी नहीं जा रही, अब सोना पड़ेगा, चलो गुड नाइट आपको किरण जी, लेकिन बाकी हमारे जो दोस्त हैं उनसे कहेंगे हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि गीतों का सफर जारी है।

0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: और ये गाना हम मून के नाम डेडिकेट करेंगे, जो कहते हैं गाने तो बड़े बढ़िया है भाई।

0: ऊंचे नीचे रास्ते लेकिन मंजिल दूर नहीं है मंजिल एकदम पास है अगर ध्यान से देखो तो
1: सुहाना सफर
0: अविनाश कहते हैं कि गाने सुनते सुनते मैं बहकवा से यूनियन फ्लैग पहुंचाया और यहां पर क्या कमाल के गाने हैं बारिश इधर मौसम बादल छाए हुए मजा आ रहा है रागिनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं थैंक यू वी हैव रेशमा चुकौरी जो कि रेनियन आइलैंड से सुन रही हैं थैंक यू हेलो रेनियन आइलैंड में बस अकेले आप ही सुन रही हो या और भी दोस्त हैं उनको भी बोलो हमारे प्रोग्राम को सुना करें हमें मैसेज किया करें कृष्ण कुमार का स्वागत है वी हैव निरुल एंड मोनीश वंसुदेव सीता पदारत विनोद जी नमस्कार स्वागत है आपका प्रोग्राम में और यहाँ पर माधुरी कहती है एक बार फिर हमारा नाम ले लीजिए हमें पता चलेगा कि हम जिंदा हैं माधुरी माधुरी माधुरी माधुरी एक दो तीन नहीं तो एक दो तीन चार है चलो अगीता सिवू के लिए साथ में देविका सुब्रन रुकैया जो रेजुई से हमें सुन रही है हमारी पड़ोसन और ऐश वीक यहाँ पे तरुण राम मेरा बच्चा है तो हाँ बिल्कुल और पापा जी गाना आपके लिए देवी गीता रघुबर प्रेमिला बाई राम जी उत्तम करुणा कालीन भावना साथ दे रहे हैं थैंक यू जी अब मैं क्या ही बताऊँ आपको गीतों के सिलेक्शन में एक और गाना फिल्म का नाम है थ्रिशोल मैं तो चलाने वाली थी गाप जी गाप

चलिए यहां पर जो हमारा अगला गाना होगा हम करुणा जी के नाम डेडिकेट करेंगे एक बार फिर साथ में हमारे थले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सो वी गोना डेडिकेट द नेक्स्ट गाना आपके लिए और डैनी जगरू जो हमारे साथ जुड़े हैं आपको भी हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार

0: आपको तो हमारे पास ही आना है और आपको जाना कहाँ है, ये है आपका सुहाना सफ़र। और यहाँ पर सुहाना सफ़र हम तय कर रहे हैं रेडियो मनोरंजन के इन खूबसूरत गीतों के साथ जो आप सुन रहे हैं। चलिए जी, किशोरदा की आवाज़ में कौन कैसे फिल्म के इस गाने के बाद अब लता जी की बारी है। वो कहते हैं कि अगर तुम ना होते, अगर हम ना होते तो क्या होता। भाई हम तो सोचते अगर आप ना होते तो क्या होता। चलो मामी पाम को हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पर नेक्स्ट गाना संजीव के लिए, और संजीव ने फिर ओके चलो तो श्यामा जी आपके लिए गाना होगा। एंड वी हैव प्राकी, तो प्राकी के नाम हो जाएगा ना।
1: RM3 रेडियो

0: हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, लेकिन हम तो हैं।
1: सफर
0: मैं मजाक कर रही हूँ जी, मजाक कर रही हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम हैं स्वीटी बीतन नालिनी पंकज गिरजानन लीना श्यामा जो संशुजत से हैं, नवीन जो साथ दे रही हैं उनके लिए, प्राकी आपके सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आपके साथ योगा करते हैं और साथ में ये गाना जाएगा, उन सभी दोस्तों के लिए जो हमारे साथ हैं, सानिया नीलम कहते हैं हाँ बिल्कुल थैंक यू सो मच। सो गाइस अगले गाने के साथ अभी समय हो गया है बाय बाय कहने का, हम आपसे मुलाकात करेंगे जरूर लेकिन वो होगा कल 12 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं।
2: कंटिन्यूअस म्यूजिक।
0: नीलम जी आपके लिए गाना डेडिकेट करती हूं मैं और मेरे जाने का समय हो गया। फ्रेंड्स थैंक यू, आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम, हमारे गीतों के साथ आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो चलते चलते जो लोग अभी ड्राइव कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, भोंकू आज बना पीछी साथ देते रहिए और कसम पैदा करने वाले की मैं कल फिर आऊँगी। बाय बाय, टेक केयर।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। बुजुर्गों की बदलती स्वास्थ्य जरूरतों को देखते हुए जीतू अस्पताल में 36 बिस्तरों वाली दो नई इकाइयां शुरू की गई हैं। उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें भी बदल जाती हैं। बुज़ुर्गों को उनकी शारीरिक कमज़ोरी, अलग अलग बीमारियों और रोज़मर्रा के कामों में उनकी आत्मनिर्भरता के स्तर को ध्यान में रखते हुए विशेष चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। मॉरिशस में सरकारी अस्पतालों में जेरियाट्रिक यानी बुज़ुर्गों की चिकित्सा सेवाओं का धीरे धीरे विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में जीतू अस्पताल में बुजुर्ग मरीजों की तीव्र चिकित्सा देखभाल के लिए दो नई इकाइयां शुरू की गई हैं। इन दोनों इकाइयों में कुल 36 बिस्तरों की क्षमता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर बेहतर तरीके से पूर्वानुमान लगाने के लिए मॉरिशस में एमस्टर यानी मॉरिशस स्ट्रैटेजिक टूल फॉर द असेसमेंट ऑफ रिस्क परियोजना शुरू की गई है। इस उपकरण की मदद से अधिकारी ये पहचान सकेंगे कि देश की कौन सी महत्वपूर्ण बुनियादी संरचनाएं जलवायु और आपदा संबंधी जोखिमों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। इससे सरकारी धन और निवेश को सही दिशा में लगाने के साथ साथ देश की आपदारोधी क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। और मॉरिशस अपनी ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री अर्थव्यवस्था के भविष्य को नए सिरे से आकार देने के साथ साथ छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले कारीगर मछुआरों के हितों की रक्षा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी उद्देश्य से अफ्रीसी क्षेत्रीय परियोजना के तहत मॉरिशस को करीब 30 मिलियन रुपए की वित्तीय सहायता मिली है। ये परियोजना ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप सदर्न अफ्रीका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की साझेदारी में संचालित की जा रही है। इस पहल के तहत करीब 2500 मॉरिशस के और रोड्रिक्स के 1700 मछुआरों को विभिन्न परीक्षण दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड 2050 दिनों तक बिना किसी बंदरगाह पर रुके समुद्र में रहने के बाद अमरीकी परमाणु ऊर्जा से संचालित विमान वाहक पोर्ट USS अब्राहम लिंकन थाईलैंड के एक बंदरगाह पर पहुंच गया है। करीब 5000 चालक दल के सदस्यों वाले इस विशाल युद्धपोत के कर्मचारियों को लंबे समय बाद कुछ समय आराम का मौका मिला है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ ही सुनिए शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। जुक्रे रोड नोटरडाम में बानबे साल के 92 ईयर्स ओल्ड के श्री रूप नारायण सिंह अजुदा जिन्हें किशोर के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके बेटे आचार्य रिजेश अजुदा के घर नोटरडाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुमोरो एट हाफ पास्ट 10 AM। ऑंग्रे मौसिया लुकुले में 72 साल के 72 ईयर्स

0: उनके श्री गुरुदत्त ननका, श्री गुरुदत्त ननका जिन्हें गुरु के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सतना ननका के घर उखली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 1 PM। नंबर 5 दुगला स्ट्रीट लिसालिन में, नंबर 5 दुगला स्ट्रीट लिसालिन में 49 साल की 49 ईयर्स की श्रीमती ओमावादी मुतुसामी ग्रेनाद, श्रीमती ओमावादी मुतुसामी ग्रेनाद पैताशना मुतुसामी और जिन्हें अम्बाल के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके पति रोज दाविद ग्रेनाद के घर लिसानी से उठाकर दफनाने के लिए लिसालिन का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। गोपाल लेन रिविया दिस अंगी में, गोपाल लेन रिविया दिस अंगी में 60 साल के 60 ईयर्स के श्रीबालेन वीरास्वामी जिन्हें छिबालेन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके घर रिविया दिस अंगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गौम्बुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे एट 3 PM। राय रोड लावंचिया में नेशनल स्टोर के आगे 68 साल की 68 ईयर्स की श्रीमती प्रेमिला जीतन पैदाशन मन को जिन्हें वीना के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 5 बजे उनके घर लावोचे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुडे एट 5 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play,
2: NBC Radio, TV, NBC Radio, TV. RM3 Radio, Radio, Radio. धरोहर के सरोवर अपन साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से, तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।
3: नमस्ते, धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में तुम लोग के स्वागत करत है जा। आज के धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में हमनी भोजपुरी के बारे में चर्चा करब जा। भोजपुरी सीख बत अनुकुन, साथ साथ में तनिकुन मुहावरा बुझवल, निमन निमन भोजपुरी गीत। ये कार्यक्रम जाने ला महात्मा गांधी संस्थान और MBC के मिलल जुलल सहयोग से तैयार करल जात बा। एकर में हमनी के तकनीकी सहयोग मिलत बा हमनी के हजा के सहयोगी संजू टोकोरी के, साथ साथ में हमनी के बाकी जन सहयोगी लोग हवन जा जय गणेश दाव सिंह और MBC के भी सहयोगी लोग एकर में अयन जा। तो आज के हमनी के कार्यक्रम में खास तौर पर तो लोग भी सब बजा भाग ले, कहे कि एक दुगो खेल रही तनिकुन समय देव जा आपके भी तनिकुन सुने के और उजन बुझवल है उजन मुहावरा है उकर अर्थ खोजे की। आपके याद होई गल सप्ताह ऐसने कर ले जा, और गल सप्ताह हमनी मॉरिशस में भोजपुरी के जो शब्द है कैसे दूसर दूसर भाषा से आल बा, कैसे भोजपुरी के शब्द दूसर भाषा में गल बा, एकर पर भी चर्चा करब जा। पर एकर से पहले कार्यक्रम की शुरुआत करे ले जा गीत संगीत।

0: सागर के सरोवर अपन साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से हर बुधवार 2 बजे से लेके 3 बजे लेक और M3 पर तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे
1: धरोहर के सरोवर धरोहर के सरोवर।
2: तमनी भोजपुरी शब्द जुनवा दिग्भाई संधेर शब्द है जो दूसर भाषा से आलबा जैसे हमने लता बुआ बोला जा लता बुआ आंत वही शब्द उकरा हिंदी में मेज बोला जा तो काहे भोजपुरी में मेज नहीं बोल के हमने लता बुआ बोला जा

एकर पर ढेर शोध कार्य होल बा, पर एक सबसे जुन आसान तरीका है जाने के। अब देखा मेज शब्द हम ज ऐसा होला, ज तनिकुन मुश्किल होला उच्चारित करे के, जबकि लताब ला तब ओकर में वा जोड़ के ओकरा भोजपुरी बना दिलन जाए। क्रियोली भाषा में तो ओकरा लताब बोली रह जा, फ्रेंच में लताबल लताबल। देख क्रियोल भाषा में क्रियोल मोगुसिया में तनिकुन जस्ती आसान होल लताब, भोजपुरी ओकर जिसे बोला जाए ओकर मिलावट ओकर में आन के ओकरा लतबुआ बनाई लग। यही प्रकार हमनी जब एगो शब्द ले ला जा फ्रेंच में शेज, हिंदी में कुर्सी, क्रियोल मोरिशियन में बोला जा सेज, भोजपुरी में सेजवा अंत सेजवा, तही वा संगे एकर में हो भोजपुरी पंचलाल। इसने मतला शब्द ले अब जा मतला, क्रियोल मोरिशियन में भी मतला बोले जा, हिंदी में बोला जा बिस्तर, जबकि भोजपुरी में हमनी मतलब बोला जा मतलब बिछावता मतलब सरियावता। ढेर कोई ई एगो उक्ति है बोले बोले लंजा मॉरिशस में, जब मॉरिशन भोजपुरी के बारे में चर्चा करे लंजा मंजा मोताई के दम्बोर दम्बोर पीमा प्लांतलबा। अब मोताई मोताई फ्रेंच में, माउंटेन अंग्रेजी में, मोताई क्रियोल मोरिशिया में भी, जबकि हिंदी में ओकरा बोला जा पहाड़ या फिर पर्वत। तो पहाड़ पर्वत ई शब्द उच्चारित करे के तनिकुन कठिनाई होला, पहाड़ पर्वत। वही खातिर भोजपुरी में हमने ओकरा मोतेवा बना दे जा, वाक्य बना मोताई के दम्बोर दम्बोर पीमा प्लांतल बा, प्लांतल शब्द दे दिया है वाक्य में। देख मोताई के धला भोजपुरी शब्द होगल, दम्बोर दम्बोर ओकर किनारे किनारे, दम्बोर दम्बोर दम्बोर फ्रेंच में क्रियोली में, पीमा पीमा वो भी फ्रेंच क्रियोल मोरिशियन है, प्लांतल प्लांतल प्लांती बा। तो देख बता खाली दूगो शब्द भोजपुरी के बा, ठेठ भोजपुरी के बा। ऐसा ढेर कुछ ऐसा हुए ला शब्द लोग, ऐसा शब्द भी बात जो भोजपुरी के है पर हमनी के आम तौर पर जब बात करी ला जा खोल मोहसिया में भी बात करी ला जा तो उस सब शब्द के प्रयोग होला। थोड़ा वो भोजपुरी शब्द के अपना ले हुआ गलबा दूसर भाषा में है, जब पर हमी खोल मोहसिया के बात करते जा। जैसे एगो शब्द बोला जा जलसा, लिबेफिया जलसा जलसा करता हाउ सुनो बगीत जलसा के रात बा, तो जलसा शब्द क्रियोल मोरिशियन वो में प्रयोग कर ला जा, भोजपुरी में तो प्रयोग हुई भी करेला। इसने बेलना बोला जा बेलना के मार, बेलना के क्रियोल मोरिशियन में कुछ बोल बा बेलना, लेकिन यह बातें कुछ बेलना दीपे बेलो फाराता और बेलना बेलना था। इस शब्द चलाल भोजपुरी से, तमाशा है देखा तमाशा तमाशा दीपे फिर तमाशा लाबा, तो ई शब्द भी भोजपुरी से आनल गलबा। ने बोले जा कबू कोई देरा जाला तब बोला दिन कुमास गाय थर थरी, जैसे हमने कबो फुटबॉल में बोले ला जा जब लिवरपूल मैदान में उतरे ला तो दूसर टीम के थरथरी हो लगेला, जिनको मांस गाय थरथरी, ये भी भोजपुरी से आनल है। कबो बोले जा ए बायो भयो, भयो शब्द बायो, इसने फुकनी फुकनी शब्द फुकनी, प्याओ जुन खाई ला जा प्याओ, निशा भोजपुरी गाना सुन लो बा निशा निशा निशा निशा निशा लगेला, क्रियोलो में बोला जा क्रियोल मोरिशिया में लिन निशा, नशा शब्द से

0: फगाता शब्द के लिए ओकर को नो दूसर शब्द है उ पराठा मनावता पराठा फगाता कहाई कढ़ाई शब्द कढ़ाई कढ़ाई गरम बा खोल मौसे में कहाई तैसे ढेर शब्द बा जो है भोजपुरी के शब्द है उ दूसर भाषा में लगेला प्रयोग हुई बहुत उदाहरण बा हमने हमें एक सब कार्यक्रम में तो लोग के बताई रह जा
1: RM3 Radio.

0: सरोवर अपन साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से हर बुधवार 2 बजे से लेके 3 बजे लेक और M3 पर तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे
1: धरोहर के सरोवर धरोहर के सरोवर।
2: सीता ब्याह गीत मरुआ गीत बुलाल जिला एकरा एगो मिश्र विवाह गीत एल्बम में अलबा प्रियंका घरवाल देखत हुआ ई भी एगो धरोहर है। इस ब्याह गीत विवाह गीत ई कार्यक्रम में बाद में हमी के जो सहयोगी हुआ जय गणेश दाव सिंह और एगो विवाह गीत के बारे में चर्चा करियन। अब हमने ई कार्यक्रम के एगो ऐसा पहलू के लिए अब जा जो गर्ल सप्ताह शुरू करनी जा और उनके अच्छा लगा कहे कि बाद में ढेर कोई से मिलनी तो लोग बोलन जा रही जो बुझावल ओकर में से दो तीन गो जननी जा तरीका बाद में हमके पता चल। तो हम सोचते है कि अभी तो हम है जहां आप रेडियो में हो जा सुनत हुआ तभी एगो बुझावल बोला बुझे के तो कैसे सुनत तोहरा। हम सोचने को उपाय हमने के भाई जन हुआ तकनीकी सहयोगी संजू तो उनकरा बोला नहीं। संजू भाई नमस्ते।
3: नमस्ते भाई अरविन।
2: तो देखा आज तोरा जिस वे बलि के बकरा बनाई ले जा पर तू भोजपुरी बताया जाने ला और जहाँ रहे ला फोन सक रहे ला हो जाता किशोर ठकुरी भाई वन भोजपुरी के एकदम सरताज तोरो नाम ठकुरी है तोहर चचा हवन
3: चचा
2: दिखला एगो धरोहर के सरोवर में बहते बहते है जा चलाल हुवन MGI में तो हम एगो एक दू को बुझावल आनब ओकर जवाब हमके दिया।
3: अच्छा
2: ठीक शुरू कर जा।
3: अच्छा
2: वो गीत है आवा आवा बुझावल बुझे तो चलाल हुआ संजू भाई आज हम संगे बुझावल बुझे पहल का है निमन से सुना
3: बोला।
2: आंगन में रखल रुपया आंगन में रखल रुपया चोर ले न चोर के भाई। फिर से सुन ला। आंगन में रखल रुपया चोर ले न चोर के भाई बोला था।
3: अच्छा रुपया मतलब कोनो गोल चीज कोनो कीमती चीज आंगन में हमार देखे में चांद के बात है।
2: चांद गोल रहेला।
3: हाँ
2: चांद कीमती है।
3: हाँ
2: बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया एक अंक तोहरा मिल गल। अब तनिकुन तकुन तो कठिन ले हुआ बजा है दिखब जा। उजर गाय दूर से आई पेट फराई तब जनाई। उजर गाय दूर से आई पेट फराई तब जनाई बोला बोला।
3: उजर गाय दूर से आई इतनी मुश्किल बा भैरविन
2: पर हम जाने जाते हो लगे बाई शादी कर लो ना।
3: हाँ हाँ हाँ
2: शादी कर लो। आजकल जब शादी करे ले जाएगो परंपरा बन गल बाबू ले जा नो गिफ्ट बॉक्स।
3: अब जान ली
2: कौन सी है
3: लॉवलोप।
2: हाँ उजर लॉवलोप वही खातिर बोला उजर गाय।
3: हाँ हाँ हाँ
2: उजर गाय दूर से आई दूर से आई जब लोग ला फरबन आई।
3: हाँ
2: तो कैसी जन बोकर भीतर कोची बा।
3: हाँ हाँ
2: अब शादी में ओकरा फरबत अब देखबा कितना पैसा मिलल बा।
3: हाँ।
2: कभू कभू पैसा नहीं रहेगा।
3: हाँ।
2: ये भी होला हाई भी जान गेला। अरे बाप चला हयो हयो औरों को उजर रही लजा। उजर बकरी पेट में लकड़ी
3: है जानीला सुन ले है। उजर बकरी पेट में लकड़ी मतलब लहसुन
2: लहसुन गार्लिक एकदम सही बोला। लहसुन देख ले वो गोल रहेला।
3: हाँ हाँ हाँ
2: उजर रहेला।
3: हाँ
2: जब ओकरा घर में खाए के पकावेला
3: कबो कबो
2: कब लहसुन छिलेला।
3: हाँ
2: छिलेला लहसुन।
3: हाँ
2: तब छिलबा लहसुन तब बीच में कुछ मिलेला बीच में एगो छोटा सुन लकड़ी
3: लकड़ी
2: हवे है। उजर बकरी पेट में लकड़ी माने लहसुन।
3: हाँ

0: सब जाना तो हाई तन कुछ मुश्किल रही तुम्हारा ऊपरे छत्ता नीचे जाटा
1: है यो जानी ला
0: हाई तो जाने ला
1: ऊपरे छत्ता नीचे जाटा
0: हमें के श्रोता लोग के भी एक थोड़ा समय दे ला जा निमन से ध्यान से सुना ऊपरे छत्ता या छत्ता जो भी हुई नीचे जाटा

0: हाँ
1: कौन सी है?
0: अचार में खाइला।
1: अचार में खाल?
0: हाँ।
1: आम?
0: नहीं।
1: अमरा?
0: नहीं।
1: कौन सी है?
0: सुरन।
1: सुरन भाइयो, सुरन सुरन। हाँ अच्छा बोला सुरन। ऊपरे छत्ता नीचे जाता, यानी ऊपरे हो जो नुकर पत्ता रहेला उमाले वो छत्ता मत दिना उकरा, और नीचे माटी के नीचे
0: जाता
1: जाता। चलाल सुरन है लाने जन्मा, है लाने जन्मा। उजर जमीन, आजकल सब उजर उजर होता है। उजर जमीन करिया बिया, जमीन उजर बा बिया करिया बा।
0: हाई सुनले रही
1: हयो, रोज तो हर सामने रहला। हाँ। हमने के सामने बा भी।
0: हाँ।
1: फिर से बोली जा, उजर जमीन करिया बिया।
0: हमर देखे में पापिये है,
1: पापिये
0: पेपर।
1: हाँ कौन रंग के है?
0: उजर
1: उजर।
0: हाँ।
1: तो है करिया बिया कहां से चला जो लिखले हुआ।
0: हाँ
1: बहुत सही, जो लिखले हुआ उजर जमीन करिया बिया का बारे बा। आज के एगो सत्र के गो अंतिम बुझावल ले जा, और देखा तो हमी के भाई संजू मुझात भाई पुस्तक बात हो लगे बा नहीं
0: नहीं नहीं भाई पुस्तक नहीं।
1: हाँ तो जितना को हमी के सुनत हो जा, हमी बोले जा कि हाई पुस्तक जो है हीरा मोती ई स्वर्गीय दिमनला मोहित जी के है, और आज देखा ई धरोहर छोड़ के गलवन, और हमनी एकर से तो लोग के भोजपुरी सिखावत है जा, अच्छा लगत बा। उकर परिवार लोग हमी के सुनत हो जा, लोग के नमस्ते बोलब जा, प्रणाम बोलब जा। हैला एक चिड़ैया लट, उकर पंख बजे फट। एक चिड़ैया लट, उकर पंख बजे पट। उकर खलारी उजर, उकर मांस मजेदार। एक चिड़ैया लट, उकर पंख बजे फट। उकर खलारी उजर, उकर मांस मजेदार। आजकल मिलत बा धीर
0: खाइयो जानी ना
1: तो लगे भाई।
0: हाँ शुगर केन,
1: गन्ना
0: गन्ना।
1: हाँ उकर मांस मजेदार खैबत अच्छा लगला खाई के।
0: हाँ।
1: और वो एगो धला इस उकर पत्ता जब हिले ला ता।
0: हाँ।
1: जैसे फट फट बजेला हो जोन बा तो ऊ हो गल उकर मांस रहे मजेदार गन्ना। अरे बाप बारे बाप, आज लगभग सब जान गई लन। तबरी अला आवब जा संजू, तो तन कुंजस्ती कठिन कठिन लेके आवब जा। चल एगो एगो आखरी एगो आखरी एगो आखरी।
0: अच्छा।
1: है ढेर कोई खुश लेन जा। एक कटोरी खून माटी के नीचे।
0: हाय तो
1: आसान बात
0: सब कोई जानेला,
1: हम के जिन्ना जन सुनत हो जा वो लोग भी हंसते हैं सही, तो सब कोई जानेला बोल दिया गोची है।
0: बेतराव
1: बेतराव लाल रहेला ना।
0: हाँ। मुझाला
1: और गोल रहेला।
0: हाँ।
1: तो मुझाला एक कटोरी, कटोरी भी गोल रहेला। चला बहुत धन्यवाद तोहरा देव जा, फिर से अबरी सप्ताह लेके आव जा। आप भी जे हमी के कार्यक्रम में बुझौल में भाग ले खुजबत हमी के बोलिया, हमनी को दिन प्रबंध करब जा, आपके भी बोलाब जा है जा। चला धरोहर के सरोवर कार्यक्रम के आगे बढ़ाब जा। ई जो बुझौल रहल खूब बुझलन हमनी के भाई संजू, एगो गीत सुनब जा बुझौल पर ही, काफी गीत बा रंभा राम तोहल जी, सब कोई रंभा राम तोहल जी के जाने लग जा। हाउ गीत कैसे है उनकर गीतवा, शहर के लिजिनुआ में जोली जोली छोकरी, पर एकर्स के अलावा वो और निमन गीत गेले हुआ जैसे है भी ये गीत सुनबा बुझावल पर। धरोहर के सरोवर कार्यक्रम RN3 पर अरविंद की प्रस्तुति बा। RM3 रेडियो।

0: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से। तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।
1: बुझवल बुझनी जा हमनी के दोस्त संजू के धन्यवाद देव जा और बारम दुहल के ई गावल गीत। तो इसने भोजपुरी लोक परंपरा में जैसे ओरल ट्रेडिशंस बैठा जा अंग्रेजी में ओरल लिटरेचर एकर में मॉरिशस में भारत में भी बहुत प्रचलित भोजपुरी के मुहावरा कहावत और लोकोक्ति आवेला। आज एक दो लोकोक्ति एक हब जा एक दो मुहावरा कहावत मिलके ध्यान से सुना। अंतर मंतर घोंगा सारी, अंतर मंतर घोंगा सारी, बुढ़िया मांगे लहुंगा सारी। एकरा चाह समझाए के ई उस समय में प्रयोग करल जाला जब कोनो नानी या फिर दादी अपन नाती या नातिन के धला घाव लगल बा तब दादी या नानी

ओकरा ओंचते ओकरा ओंचेला और बोलेला कि वो खुद भुरिया हो गल बा, लहंगा और उस सारी मांगता। इस सुन के लैका लोग अपन तरगुन दर्द भुला दलन, जा लगे लन जा हंसी। अंतर मंतर घोंगा सारी, भुरिया मांगे लहंगा सारी। अंग्रेजी में बोला जा धलब लैका लोग संगे एगो जोक करे के। इसने अंधरा के कुत्ता बता से भूकेला, अंधरा के कुत्ता बतास से भूकेला, एकर अर्थ है सोचा जानो थे बधेर कोई, अर्थ है व्यर्थ में बेकार में चिल्लाना, टू बॉक अब द मून। अब कोई चांद के देख के भूकी तक कुछ होई भला बेकार में कोनो काम करेगी। और वो लिख लिया जा, ऐली न गैली फलाना बो कहैली, ऐली न गैली फलाना बो कहैली। एकर मतलब है जिकर से कोनो संबंध न बा, कोनो रिश्ता नहीं बा, उनकर से रिश्ता या फिर संबंध बा बोलबा कि हाँ बा, यानी ऐली न गईनी फलाना बो कहलैन, टू एसोसिएट थिंग्स विच आर नॉट सो, जोन चीज नहीं बा ओकर संगे संबंध जोड़े खोजबा, हाय गुहा। और ले ले जा, अकल बड़ा बा बल नहीं खे, नहीं खे भारत में नहीं खे जिसे मोर्चस में नहीं बा, अकल बड़ा बा बल नहीं बा। एकर अर्थ है बल से अधिक बड़ा बुद्धि है, बल जितना भी रही बुद्धि से काम नहीं कर बा तक सब बेकार जला। इंटेलिजेंस इज ग्रेटर देन माइट। और वो छोटा सुन सुन नहीं बा कोई बोलेला, जैसे बतियाला मुझाला अगम जानी है, अगम जानी है। एकर अर्थ निकलेला कि भविष्यवाणी कर लेला कि आगे कौन सी हुई, आगे से कुछ जानने वाला है, अगम जानी और फोरटेलर। ये काफी धला जे ढेर बतियालन जा जा, हम तो जानी ला है ऐसे हो हाँ उसे हो, तो उनकरा अगम जानी बोली ल जा। और ले ल जा, अगली भैल पिछली पिछली भैल पुरधाइन, अगली भैल पिछली पिछली भैल पुरधाइन। पुरधाइन के मतलब है मालकिन, अगली माने पहली, भैल हुई, पिछली माने अंतिम। एकर अर्थ है जहां पीछे होला के आगे होला के तुलना में जस्ती सफलता मिल जाला, ई हो जा से लागू होला, यानी टू गिव मोर इंपोर्टेंस टू द लास्ट वन। कैसे एगो चीज तो लगे बा बहुत दिन से, तेको दूसर मिल गल तो जो आगे से रहल ओकरा भुला देबा, जो इन बाद में आल ओकरा जस्ती महत्व देबा। अगली भैल पिछली पिछली भैल पुरधाइन, वो मालकिन बन गल। और जिनको ले ले जा, अघायल बकरी लकड़ी चबावेला, अघायल बकरी लकड़ी चबावेला। बकरी का वो लकड़ी चबावेला तक कौन सी एकर अर्थ है, एकर अर्थ है जेके बहुत मिलेला ढेर कुछ मिलेला वो कर महत्व नहीं जानेला। अघायल बकरी लकड़ी चबावेला, ए कंटेंट पर्सन हैज लिटिल डिजायर।

है एगो औरों को बहुत आसान है। अन्न के कण बना दिलक, अन्न के कण बना दिलक, यानी जो चीज बनल बा ओकरा बर्बाद कर दिलक, अन्न के कण बना दिलक, टू स्पॉइल। कबो ई भी सुनो बात दादी लोग बोले लंजा अनेत करता, उ तो अनेत करता यानी हद से ज्यादा काम करता, अनेत टू अब्यूज। एक दूसर मां अपन अंडा बच्चा या अपन रोना भवना, अपन अंडा बच्चा या अपन रोना भवना। सुन बा कबू कोई कहू जाला अपन लैका फैका सबके लेके चल जा लंजा तई बोले लंजा भोजपुरी में अपन अंडा बच्चा या अपन रोना भवना यानी बाल बच्चों के साथ। एगो आखरी लो अब जा अपन कुरुक धुन निकैले बा, सुन बा मुर्गी कुरुक हो जाला, अपन कुरुक धुन निकैल लगैले बा। कुरुक मुर्गी जने कुरुक मुर्गी ओकर धुन लगाते रहला तई उक्ति जुन है ई उ समय होला जब रह रह के पानी आवेला पानी बरसेला और काम में जाए के परेशानी होला तो हवे बार बार कुछ मांगे के प्रार्थना करब या फिर सुनने होला तंग आ जाए। टू बी फ्रीक्वेंट अपन कुरुक धुन लगैले बा, बार बार वही रट लगैले बा जैसे बोले जा। तो ई आज के हमनी के ई भाग में मॉरिशस में प्रचलित भारत में प्रचलित एक दुको मुहावरा कहावत और लोकोक्ति अन्य जा और उस आभार बा ई हमनी स्वर्गीय दीमनाला मोहित जी के जिनकर पुस्तक हीरामोती रिडल्स एंड सॉन्ग्स में ऐसा ढेर बा। कार्यक्रम के आगे बढ़ा जा को गीत सुनब जा फिर और बहुत कुछ बा धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में तुलो खाजी। RM3 Radio.

0: धरोहर के सरोवर अपन साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से हर बुधवार 2 बजे से लेके 3 बजे लेक और M3 पर तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।
1: धरोहर के सरोवर, धरोहर के सरोवर।
2: नमस्ते, धरोहर के सरोवर हमनी के प्रोग्राम में तो लोग के स्वागत बाती। आज एगो हरदी गीत लेके आल हैं सर, कुरिया के खेतवा में उपड़े जा हरदी। कुरी के खेतवा में हरदी उपड़ा जेला, दुल्हिन पे नवा हरदी चढ़ावल जात बा। हरदी सुहाग के बोली बुलत हवन, हरदी सौभाग्य के बोली बुलत हवन। दुल्हिन के बहिन सिल लोढ़ा पे हरदी पीसेला, सुहाग दुलिन पे नवा हरदी चढ़ावत जादबा। हरदी सुहाग के बोली बोलत हवन, हरदी सौभाग्य के बोली बोलत हवन। हरे हरे डूब के हरदी, हरे हरे पटवन बाते। दुल्हिन पे नवा हरदी चढ़ावल जादबा। हरदी सुहाग के बोली बोलत हवन, हरदी सौभाग्य के बोली बोलत हवन। एगो जन्म के अंतर्गत एके हरदी विधि होवेला, चल नवा हरदी दुल्हिन के चढ़ावब जा। हरदी सुहाग के बोली बोलत हवन, हरदी सौभाग्य के बोली बोलत हवन। इ गीत में बहिन द्वारा हरदी विधि खातिर हरदी पीसे के वर्णन होत बाती। इ गीत हरदी के महताओं पर बल देवेला कि हरदी हमनी के जीवन में एके हला चढ़ेला। तभी त बोलल गेल बा कि हरदी सुहाग और सौभाग्य के बोली बोलत हवन। हमनी के मॉरिशस के भोजपुरी हरदी गीतवन में कुइरिन के नाम अक्सर आवेला। कुइरिन एगो जाति विशेष है जोन खेती बाड़ी द्वारा अपन जीविका कमावेलन। प्राचीन काल में हरदी के खेती और उनकर व्यापार कुइरी द्वारा होत रहल बा। गीत के भाव और महत्व, ई गीत दुल्हिन के शादी के आगे हरदी के रस्म पर आधारित बा। हरदी के विधि में हल्दी के लेप दुल्हिन के गोराई सौंदर्य और सौभाग्य खातिर लगावल जाला। गीत में बार बार कहल जात बा हरदी सौभाग्य के बोली बोलत हवन, हरदी सौभाग्य के बोली बोलत हवन। इसे इशारा मिलेला कि हरदी के लेप खाली शरीर पर डाले की चीज नहीं है, बलूक ई एगो शुभ आशीर्वाद है जोन से दुल्हिन के विवाहित जीवन सुखमय होखे। कुइरी और खेत के प्रति गीत के शुरुआत होखेला, कुइरिनिया के खेतवा में हरदी उपराजेला। इसे पता चलेला कि हल्दी के उपज के जर कुइरी जाति से जुड़ल बा। कुइरी एगो पारंपरिक कृषक जाति है जोन हरदी जैसन उपज के खेती और व्यापार करेला। मॉरिशस के भोजपुरी संस्कृति में कुइरिन के नाम अक्सर गीतवन में आवेला। इसे सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव के प्रतीकों बाते। परिवार और नारी शक्ति की भूमिका

दुल्हन के बहन से लोढ़ा पे हरदी पीसेला। इ लाइन में बहन के भूमिका दिखाई देवेला। वो खुद हरदी पीस के रस्म की तैयारी करता। सिल लोढ़ा पर हरदी पीसल जाला। इ परंपरा के सम्मान और पारिवारिक सहभागिता के दर्शावेला। नारी के हाथ से बनावल हरदी शुद्ध और शुभ मानल जाला। प्रकृति और शुभ संकेत हरे हरे डूब के हरे हरे पटवन बाटे। हरे रंग का प्रतीक डूब और पट्टा शुभता समृद्धि और जीवन के हरियाली के दर्शावेला। दुल्हन के चारों ओर के माहौल की सुंदरता नयापन और नवजीवन के संकेत के रूप में देखे के मिलेला। हरदी के एक बार के विधि एगो जन्म के अंतर्गत एक हरदी विधि होवेला। इलाइन बोलल बा के हरदी के रस्म जीवन में एक बार होवेला। वो अति पावन और अविस्मरणीय क्षण है। ई दुल्हन के जीवन की एगो नवा शुरुआत के रूप में देखल जाला। अंततः ई हरदी गीत खाली एगो विधि के वर्णन नहीं है, बल्कि ई कुरी जाति की ऐतिहासिक भूमिका, महिला शक्ति और पारिवारिक सहभागिता, प्रकृति से लगाव और शादी के सामाजिक सांस्कृतिक गुणता के एगो सुंदर मिश्रण है। मॉरिशस के भोजपुरी संस्कृति में ई गीतवन के माध्यम से आजो ऐसन परंपरा जातीय गौरव और सामाजिक सरसता जिंदा बा।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अर्षिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर बेहतर तरीके से पूर्वानुमान लगाने के लिए मॉरिशस में एमस्टर यानी मॉरिशस स्ट्रैटेजिक टूल फॉर द असेसमेंट ऑफ रिस्क परियोजना शुरू की गई है। इस उपकरण की मदद से अधिकारी ये पहचान सकेंगे कि देश की कौन सी महत्वपूर्ण बुनियादी संरचनाएं जलवायु और आपदा संबंधी जोखिमों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। इससे सरकारी धन निवेश को सही दिशा में लगाने के साथ देश की आपदा रोधी क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। समुद्री संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ अधिक प्रभावी कार्रवाई के लिए मॉरिशस में वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम को लागू किया जा रहा है। अल्बियो के फिशरीज रिसर्च सेंटर में निगरानी अब दूर से और वास्तविक समय में की जा रही है। इसके जरिए मछली पकड़ने वाले जहाज़ों की भौगोलिक स्थिति और उनकी पकड़ की निगरानी की जा सकती है। इस डिजिटल बदलाव को तेज करने के लिए संबंधित नियमों में जल्द ही संशोधन किए जाने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य समुद्री गतिविधियों की निगरानी को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आधुनिक बनाना है। और मॉरिशस को अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट यानी आगुआ के तहत अमरीकी बाजार में मिलने वाली तरजीही पहुंच अब 31 दिसंबर 2028 तक जारी रहेगी। इससे पहले इस व्यवस्था को इस साल की शुरुआत में 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया था, लेकिन अब इसे और 2 वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस फैसले का मॉरिशस के विदेश मामलों, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री रितेश रामफोल ने स्वागत किया है। उनके अनुसार ये परिणाम उनके प्रशासन के तहत शुरू की गई बातचीत और वार्ताओं का नतीजा है। खासतौर पर थर्ड कंट्री फैब्रिक व्यवस्था यानी किसी तीसरे देश से प्राप्त कपड़े के इस्तेमाल की अनुमति को भी बरकरार रखा गया है। ये प्रावधान मॉरिशस के स्थानीय कपड़ा उद्योग के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और उधर नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद 8वें दिन भी राहत और आपदा लोगों की तलाश का अभियान जारी है, जबकि आपदा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नेपाल पुलिस के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 1093 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 4500 लोग अब भी लापता हैं। कई जल परियोजनाओं की सुरंगों में राहत कर्मी उन कामगारों की तलाश कर रहे हैं जो कीचड़ और मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। आपदा की भयावहता को देखते हुए सरकार ने प्रभावित क्षेत्र को 3 महीने के लिए संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। राजधानी काठमांडू में अज्ञात पीड़ितों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन इस त्रासदी के बीच मानवीय एकजुटता की तस्वीरें भी सामने आ रही है। बिदुर में युवा स्वयंसेवकों ने एक सहायता केंद्र बनाया है, जहां प्रभावित परिवार अपने मोबाइल फोन चार्ज कर पा रहे हैं और लापता परिजनों की तलाश के दौरान एक दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल रासुवा में बच्चों के चेहरों पर फिर मुस्कान दिखाई दी। वे एक फुटबॉल के आसपास खेलते नजर आए। मलबे और तबाही के बीच ये कुछ पल की बेफिक्री मानो उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी बनकर सामने आई है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
4: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
5: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का और MBC 3 पर हमारे सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। ये रेडियो मॉरिशस का प्रसारण है। मैं हूँ रत्ना, पहुंची हूँ आज की चर्चा के इस कार्यक्रम को लेकर, जहाँ पर हम सेहत को लेकर कुछ बातें करते हैं। और बेशक आज के इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में हमें सहयोग मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ कविश है टेक्निक पर, और प्रोडक्शन असिस्टेंट है उरुसा, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ इस वक्त आज हम बात करेंगे विश्व सुसाइड प्रिवेंशन दिवस पर, यानी आत्महत्या को किस तरह से रोका जा सके, इस पर हम ज़्यादा बात करेंगे। और आज हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर आर्य कुमार जग्गी सर जी, जो कि एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट है SSRN अस्पताल में। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, बहुत बहुत स्वागत। बा
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करब जा वर्ल्ड आत्महत्या रोकथाम दिवस पर। तो डॉक्टर जी, पहला तो हम हये पूछब कि हई कब मनावल जाला और एकर मनावे के पाछे कौन उद्देश्य बाती।
1: देखो, ई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और एगो और एसोसिएशन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, ई दोनों मिलकर हर 10 सितंबर को ये दिन घोषित कर लेवन सा, जोन वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। ये 2003 से ये मनाओ जाला, और ये है एकर एगो लक्ष्य बहुत तिरहल कि आज भी दुनिया भर में 800,000 लोग, यानी कि 800,000 लोग सुसाइड करत हो जा, यानी कि हर 40 सेकंड में एक आदमी सुसाइड करता। तो ये के बचाए से, इकर से आदमी के छुटकारा पाए से, एक हई जन इतना से एक कमती करके जितना कमती हो सके, या तो कम बीजों की एको से सीतें हुई। मैं तब भी जितना

0: कमती हो सकी ओके कमती करे खातिन हई एगो दिन घोषित करल बा ताकि एगो अवेयरनेस कैंपेन सकी चलावल जाए जैसे हमने अभी राज्य में तेवे में बताते जा ऐसे और लोगाज में और कितना सिप्टोजम कितना पोस्टर्स और हर जगह हर देश में एक बारे में जानकारी लोगों के जनाए की ताकि लोग एक समझे सकी जाने सकी कैसे सकल जाए शिशित रोके एगो चीज ई हम जाने बोले चाहब सबसे कि एगो एकर में ढेर बहुत पैसा नहीं लगी एकर में ढेर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं बा एकर में ढेर बड़ा बिल्डिंग नहीं चाहेला एकर में ढेर बड़ा लापागई नहीं चाहेला
1: इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए
0: बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं एकर में सिर्फ जानकारी चाहेला हाँ कि कैसे और इस साल हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एगो टॉपिक देवे ला और इस साल जो टॉपिक दिले बा चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड एंड स्टार्ट द कन्वर्सेशन यानी कि इसके बारे में बात करेगी ओकर जो नजरिया बा देखे के वो लोगों को चेंज करेगी सब जो सोसाइटी बा जो सब समाज बा सबके एकर बारे में अपन नजर चेंज करेगी और बात करेगी जब कोई दिक्कत बा कोई कोई के बा लीदे से सीधे कोई के मन में कुछ गलत विचार होता तो ओकर बारे में बात करेगी
1: ओकरा कैसे समझ बा कैसे बचाई बा कैसे ओकरा एदे कर बा
0: हाँ। तो इस सब के बारे में बात करेगी बोले की और ओकर हेल्प ताकि लोग सकी और सब आदमी की हेल्प करे और हेल्प से सकब से जिमिंदे करे
1: तो डॉक्टर जी हैजा पर आत्महत्या के जब हम बात करत हैं सुसाइड के जब हम बात करत हैं तो ओकर मेन कॉजेस कौन बा काहे कौन कौन सिचुएशन में कुमाजे एगो आदमी के दिमाग में चला आवेला अपन सुसाइड करे के
0: देखा एकर कॉज ढेर बा पहला पहला के एक पहला तो सब ले कोजेस बा जो जो मलाद है डिजीज है जो मेंटल डिजीज है मेंटल डिजीज किसे डिप्रेशन बा सिजोफ्रेनिया बा बाइपोलर बा ये सब बा ये सब से जो लोग थोड़ा सुफिया होलन सा वो लोग के तौदों से लीदे सीधे वो लोग के दिमाग में आवे के तो सब तो इतमों से सकल जाए काम ले करे अब दूसर बा जो लोग है ड्रग से लालकोल से ये लोग फंस गल वन से कर में तो वो लोग के कोनो सीमा नहीं लौकेला वो लोग के लौकेला कि मजे वो लोग के हाँ ये गो एंड करे
1: अपन अपन डेड एंड नियर
0: ओकरा लौकेला कि अब हमने की अपन समाप्त कर चला अब दूसर बात कोई है जो क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित रहन सर कैसे बा कौन से बा प्रॉब्लम लेके बा प्रॉब्लम दूसर जो प्रॉब्लम ना सौते बा जो से कौन जी काफी हो जालन सर तो इस सबसे वो लोग के एगो तौदों से सोचे कि अब हम के जियल से का हुई अब दूसर आउडी लोग बात जो लोग कोनो बिजनेस में असफल हो ढेर पैसा बिला गए तो वो लोग के लिए आए लगे ला कोई है जुआ में एक साथ ढेर पैसा बिला गल कोई है काजिनो में लेकुश में सब में बिला गए तो वो लोगों के लिए से सीधे आए लगे तो ये सब जो है ये सब मेन कॉजेज है अब दूसर बात लड़का लोग ढेर लड़का लोग अपन के बना लन सर कि पढ़ाई सबसे अतिया कहाँ एग्जाम में फेल हो लन सर या जितना सोच लेलन सर उतना नहीं आने सके लन सर तो लोग के तौदों से सोचे कि अब हमनी क्या करब सर जी के तो है सब मेन कॉजेज बा जो लोगों के दिमाग में आवेला लीदे सीधे देना चाहिए
1: तो डॉक्टर जी जहाँ पर हम अभी थोड़ा घड़ी पहला जब तू बोलन डिप्रेशन एंग्जाइटी अकेलापन ढेर कोई अकेला रहन सर तो हई में भी ढेर कोई के ऐसा हो जाला कि अब हम कौन चीज करब कहाँ जाम तो हई में सुसाइड के कोनो कनेक्शन बात है कि हई सब जो मलाद हक मजा एगो डिप्रेशन कोई के डिप्रेशन जब चलावेला कोई के एंग्जाइटी के प्रॉब्लम रहेला कोई के ऐसा जैसे तू बोलत हवा तो हई में को मजा कैसे ओकर कनेक्शन रहेला
0: देखा ह्यूमन बीइंग जो है आदमी जो है आदमी एगो सोशल बीइंग है जिनके सभा में समाज में जिए चाहे ना अकेले में नहीं सकेला जिए
1: सच्चे की बोले
0: तो हई सबसे पहला आदमी के समझे चाहे ना कि वो के जिए चाहे ना सोसाइटी में तो जब बहुत लोग है डिप्रेशन में चल जान सर जब डिप्रेशन में क्या होला डिप्रेशन एंग्जाइटी सब में सबसे डिप्रेशन में चल जान सर डिप्रेशन से वो लोग अपने आप के निकले लगे रहन सर लोगों से हटे लगे रहन सर समाज से हटे लगे रहन सर काम में रुचि नहीं रहना उन लोग के अब कुछ करे के नवा चीज करे के नहीं अब जहाँ पे कोई चीज होता है जहाँ पे थोड़ा प्लेजर बा उस सबसे हटे लगे रहन सर उन लोग उदासी में जिए लगेला अपने आप के अकेले महसूस करे लगे रहन सर तो ये सब अकेलापन उन लोग के तब आने लगेला गलत लीदे की ओर कि अब हमार कोई यूज नहीं बा

0: हमरा अपन जिए के कोनो मकसद नहीं बा, कोनो विजन तो सब छोड़ के तब वो लोग सोचे वो लोग में गलत विचार आए लगेला, निदेश से आए लगेला। तो हई सब चीज जब हो देखी अपन फैमिली में कोई एक बार थोड़ा ऐसे हो लगल बा तो ई सब आदमी के जरूर चाहे ना खत्मों की ओर ले जाएगी।
1: तो डॉक्टर जी जैसे अभी तू बोला था, मान ला अभी कोई के तू देखबा काम में एगो आदमी बहुत पहला हसत रहलन, खेलत रहलन, बतियात रहलन, अब एक कुछ शांत हो गल, चुपचाप हो गल, लेकवा भी कबो कबो लेकोल में तू देखबा एक कुछ कोना में रहे के शुरू कर देवेला, नए कोई के संगे बात करेला, तो हई में जब तू सुसाइड के बारे में ओकर से कैसे बतियाएबा, मतलब मान ला अगर कोई ऐसा व्यक्ति बा तो जब तू बतियाए के शुरू करब तो हई ओकरा जस्ती उकसावेला या बात करे के जस्ती ओकरा एदे करेला?
0: नहीं, पहला ये समझे चाहना कि जो आदमियों के से बतियाया जाए तो ये जाने चाहना कि वो अपने आप के प्रोफेशनल नहीं समझे लगी कि अब वही ओके ओके लगी थ्रेटे करे। नहीं, पहला ओकर संगे ओके ओके घुल मिले परी, ओकर संगे ओके ओकर जो नोकर दिल में बा उन ओकर से हेल के निकाले परी, ओकर ओके अकॉम्पाइन करी परी, ओके अकेले नहीं छोड़ेगी, ओकर प्रॉब्लम जाने परी, ओके देखे ओके अकॉम्पाइन करी, ओके अकेले नहीं छोड़ेगी। तब जैसे जनबा का प्रॉब्लम तब ओके प्रोफेशनल के यहाँ आने चाहना, ताकि ओके निमन से ओकर जो जो दिक्कत बा, क्योंकि बहुत लोग सोचेला कि नहीं हम दिक्कत बा से नहीं सकब निकले, उन्होंने कोनो चीज के कोनो एगो प्रॉब्लम के फिनिशन है, प्रॉब्लम बात सोल्यूशन बा, सब एगो प्रॉब्लम के सोल्यूशन बा, वो देखा देना कि हई सीमा नहीं बा तो दूसर सीमा खोजल देना, तो सब कुछ के एगो सोल्यूशन बा। तो वो जब आदमी को दिक्कत है बा तो वो लोग के हाँ जब वो लोग प्रॉब्लम में रहला तो वो लोग के नहीं रोकेला सोल्यूशन। तो ई सब के दिखाए खातिर ई सब खातिर पड़ेला कि आन दुखते या तो ओके ओके अकॉम्पाइन कर, तब ओके समझावल देना, तो हई सब यहाँ लीदे जो नौके रहेला कि नहीं अब हमारे फिनी बा तो वो सबसे वो लोग निकले सकेला।
1: तो डॉक्टर जी मान ला अभी घर अभी लइकवन के जब बात करते हैं, आजकल के जितना युवा वर्ग हवन, जितना यंग जनरेशन हवन, ओकर में कौन ऐसन सिम्टम तू देखे सकब, या बड़ा आदमी में भी कौन ऐसन सिम्टम तोरा लौके के तोरा तू चीन जाइब कि ओकरा तो तनी कुमा जब प्रॉब्लम चलाल बा, कैसे कैसे तू जानब? बस कि जाने लो आजकल के जो समस्या अभी जन जैसे समाज में चलता, सब कोई अपन अपन प्राइवेसी में खोजल, सब कोई अपन अपन स्पेस खोजेला, तो कैसे तू जानब कि कोनो कोई के कुमा जे कैसे उस सिम्टम वा चिन्ह?
0: पहला तो अभी जाने चाहना कि लड़का लोग जस्ती अपन पागों संगे रहना।
1: हाँ,
0: तो पारों लोग के रोल सब ले आप होता होगा, सबसे आप होता हूँ पारों लोग जब देखी लड़का में कोनो सौंस में आऊँ बा, वो अभी चिरा संगे बैठ के खाए के संगे बैठ के ब्रेकफास्ट लेके जीने लेके दिन के तक लेकोल में रहना, तो एक को उन्हें अपना आप के खिचे कर लग अपन आसाम में बैठा रहता, वो खाए के लेके चल जाता है अकेली,
1: नहीं संगे हाँ
0: कोई से बतियात नहीं बा, वो खोए बा खोया रहता नहीं अपन के एक्सप्रीमें नहीं कहता, वो जो चीज खुशी रहल कहूँ खुशी रहल जाए के फिल्म देखे ओके बोला तो चला फिल्म देखे तो बता नहीं हम नहीं जाब, वो खुशी रहल शादी में जाए के कहूँ घूमे जाए के तो ओके बता चले के तब बता नहीं जाए, तो हई सब एगो बहुत ऐप होता हूँ सैतुम है। और देखब कि वो जो रुचि रहल ओके पढ़ाई में रुचि रहल जो काम में हो रुचि नहीं लगता, और फिर देखब जो नुकर जन जन सुए सब बहुत रमास के रखत है लू उ सब छोड़े लगल, कोई आवत है तो दे देवता था
1: छोटा छोटा चीज
0: आप है वन सब छोटा छोटा चीज देख के पाओ के समझे चाहना कि कोनो दिक्कत बा
1: कोनो चीज
0: बा जो ओकरा तनी फाची के करता है, तो हई सब प्रॉब्लम है कि पाओ के समझे चाहला कि एक एगो कहूँ अपने नहीं समझाए लगे कि अपने थोड़ा समझाए कि देख ले प्रॉब्लम हुआ तो ओके कोनो पोजिशन है नहीं ले जाए कि कहीं नहीं समझे कि एगो स्टिग्मा है कहूँ कोई क्या ले जा देने को सिकोलोग यहाँ ले गए नहीं कि एगो सिक्यार्थ यहाँ ले गए नहीं तो गलत हो गल कि ओके लड़का के काहे हम सब यहाँ ले जाते नहीं वो लड़का के कोनो एज चाहेला तो ऐप होता है प्रोफेशनल लोग सकियन सा ओके गीदे करे ओके समझाए ओके देखाए कि कौन रास्ता अच्छा बा कि काहे उलाको सब चीज अपन पाओ से नहीं सकेला बोली
1: तो लापोश जैसन रहेला। मतलब अभी मान ला आजकल के जितना लाइक वालों के जब बात करीला तो कबो कबो ऐसन बुझाला जैसे नहीं बतियाई खोजत हवन तो ओकर में कैसे तू टैकल करब ऐसन सिचुएशन के पस कि ढेर कोई लइकन लोग नहीं खुशी रहेलन सा ओकर जो स्पेस है ओकर में तू इन्वेड करब जैसे तू ओकर लासाम में हेल जाइब तो खिसिया जाला गुस्सा करेलन सा तो कैसे तू ओकर संगे बतियाई के शुरू करब?
0: नहीं देखा

0: जब दिग्भा तो उदास रही
1: हाँ।
0: और सबसे पहला लोग में दिग्भा उस सुतते वंश रात भर बहुत देर जातवंश सुते जाते फजीर के उठ जातवंश और वो लोग में दिग्भा थोड़ा ईगिता सो चलावेला जल्दी से खिसा जान से तो उन लोग के सपोर्ट करे खाते उन लोग के समझाए के पहला तो याद को जिन्हें हाली सुई आने जा के कोई दुखते है यहाँ तब वो कर बाद सीवी को सिकोलोग यहाँ चाहे ओके ओके अपने से नहीं समझाए रहेगा ना कोई बहुत पागल जो है वो लोगों कर संगे खींच कर दे बेला या तो वो लोग बना लीजिए कर दे लेकिन बोली हम तेरा दिक्कत में हमारा नहीं अच्छा लगा था तो लोग वो लोग ओके बना लीजिए कर दे बेला तो हई गलत है जब बना लीजिए कह रहे जब ओके ओके समझ ओके दिखलाए कह कि नहीं कहा तू कहा बतिया तू नहीं एग्जिस तो उसे लेकर आउरी अपन में खो जाना तब ओके डर लगे आप बोले कि तो नहीं तो उसे नहीं करे कि लेकिन आगे सुने कि जो बोलक तो पर सोचे कि समझे कि और ओके वो से नहीं जाए कि लाख जब सुतत ने बैगो लेका तो हई नहीं अच्छा बा कोई प्रॉब्लम बा तब भी नहीं सुतेला लाख जब लेका कि एगो डिसिप्लिन दोमी चाहेला है वो नहीं सकी कि एगो ये चीजों जो है तो वो एक बजे रात के दो बजे रात के जाता सुते
1: तो कहूँ ना कहूँ जब वो नहीं सुतेला तो ओकर कपार जस्ती फाची गे होला और हई को मजा एगो ट्रिगर करे लंस ओकर जो कपार के जितना भी प्रॉब्लम रहेला वो ओकरा ट्रिगर करे लंस
0: हाँ तब उदासी आए लगे ला जब सुतेला नहीं तब उदासी तब ओकर में तब भाव जब अब पढ़े नहीं सकेला नहीं मन से तब कौसौत नहीं सकेला हुई तब वो एगो जाल में फसल जाला
1: एगो दलदल नियर फंसते
0: जाना तब वो सोचेला कि अब हमर हम हमर आगे नहीं सकब बढ़े अब हमर यही अंत बा अब हम कुछ नहीं सकब करे तो हई एगो एगो एतिबा कि आदमी के चाहेला समझे के चाहेला पागल लोग के सेतु सोचे के और समझे के कि पढ़ाई सब कुछ नहीं है कि एगो सर्टिफिका एगो लड़का ने जस्ती बढ़ा नहीं सकी रही
1: हम काहे के आज देखबा तू एक के गो घर में मान ल दू गो भाई या दू गो बहिन रही तो एक जस्ती मालय रही और एक उतना पढ़े में उतना निपुण नहीं रही मेसेल में दूसर बगल में ओकर जोन खयाची विते ह उ में उ जस्ती निपुण रहेलन
0: डेफिनेटली मो कई हो एगो लड़का के एगो दूसर लड़का से नहीं कंपाए करे की कई एगो लड़का के अपन संगतिया लोग से नहीं कंपाए करे की कई हो एगो लड़का के ओकर वाजे से नहीं कंपाए करे की एगो लड़का हर एगो लड़का अपन ही नहीं खा सकी को एगो चीज में ज्यादा अच्छा बा एगो चीज में नहीं अच्छा बा तो ओकर जो न अच्छा बा ओकर ओके वालों इसे करेगी नहीं कि जो में नहीं अच्छा बा उस में ओके ओके
1: शुरू कर देवेला और हई कहू ना कहू लैकवा के जो अंदर के जो कॉन्फिडेंस है उ लेवल के उ तनी कमती कर देवेला और कहू ना कहू हये सब फैक्टर्स है कि उ बढ़ावा देवेला डिप्रेशन के एंग्जाइटी के और बहुत कालिते के मेंटल इलनेस खातिर तो आज हम बात करत हई वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर जे 10 सितंबर के मनावल जाए और आज हमनी के संगे डॉक्टर जागेसर रहैजा पर उपस्थित होल हवन बिल्कुल 9:30 बजे के बाद तू हमनी के संगे जुड़े सकब कोनो सवाल रही तो आज के कार्यक्रम के जारी रखब जाए गीत के संगे और बेशक आज के कार्यक्रम में और भी ऐसा दिलचस्प सवाल जोड़ल जाए अभी थोड़ा घड़ी में एगो गीत के

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस आज की चर्चा।
1: की चर्चा कार्यक्रम को जारी रखा जा रहा है और बेशक इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें इस तकनीक पर सहयोग मिल रहा है कविश का, साथ ही साथ उरुसा हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट और प्रोड्यूसर शीतल लोबिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट SSRN अस्पताल के डॉक्टर जग्गी सर, जो हमें किस प्रकार से सुसाइड का रोकथाम के लिए कौन से कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं और क्या गतिविधियां की जा रही है, साथ ही साथ कुछ ऐसी जानकारियां जो हमें कहीं ना कहीं जानकारी देती है कि किस प्रकार से इस जो सुसाइडल टेंडेंसीज है या किस तरह से सुसाइड करने का मन में विचार आता है, कौन से लोग किस सिचुएशन में जाकर ऐसा करते हैं, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं डॉक्टर जी से। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर जी से पूछना चाहूँगी, डॉक्टर जी स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस का क्या कहता है कि कितने मतलब हमारे जो परसेंटेज है किस तरह से वो दिखाता है कि लोग कितने कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं?
2: देखो ई जैसे बा हर पेई में एगो तौदौस है कि सीसी जस्ती है मेल में फीमेल ले त्वाफा जस्ती है और मोरिस में भी हो गई तौदौस है।
1: अच्छा
2: मे तौताचीव सीसी जस्ती है फीमेल में मेल ले।

0: अच्छा
1: हाँ, उत्वाफा जस्ती फीमेल में है,
0: फीमेल में जस्ती रहेला,
1: जस्ती अच्छा, रहेला हाँ, और देखा गया हर साल अभी कैसे मोविस में गत बरिस 100 टन से जिमुन सिस देवलबा, अभी हाई बरिस मेले 100 टन दे जिमुन सिस देवगलबा,
0: यानी अभी तक
1: अभी मेले के स्टैटिस्टिक्स बा इरा पुलिसिया से जो नेतिवा तो ई में

0: L'âge 15, c'est 24 ans, mais. Mm-hmm. Or l'âge 25, c'est 45 ans, mais. Justice.
1: अच्छा
0: एगो पीक है लोग जस्ती दौलन छ तँजी कि इन्टरनेसनल मे देखल गर्बा कि जस्ती ह लाज कैस से वैतनेवो में और लाज अवोंसे में तनी 65 से लाओ में जस्ती ह और बीच में थोड़ा कम दिया मैं ई सब एगो साची सिख छ देखल गर्बा उस औरी कि ज्यादा जेन में काहे से सिदोला जेन में लास्ट कैसे वेट निवो में देखा गया बाहर दम कि त्वाज्यम कोज मोर्टालिटी हो सिसिड ना कोज हाई लेयर सबसे ज्यादा फिस्ताशों आवे ला लेकर लोग में सबसे ज्यादा वो लोग पढ़ाई में रहने सा जहाँ वो लोग के एग्जाम में फेल होने सा वो लोग गलत सीमा में पढ़ जाने सा वो लोग गलत काम में पड़ जालन सा या तो कोई काम बिला जाला या पैसा बिला जाला हई हई लाजवा उन लोग के लाज सब ले फाजिल लाज जो में बहुत लातों शो जाए
1: जहाँ पर एगो डेवलपमेंट हो बता लेको में हाउ हाउ जहाँ पर एगो
0: सब इतनी रहा आउटी ओकर आउटी प्लीज हई ये लाज जैन लाज में लाज कैस आ तेवो में हई ये सब लाज में कोनो मलाद मोताल जो है कैसे डिप्रेशन बा या तो बिपोलर बा या मैम सिजोफ्रेनी बा ये सब है ये लाज में शुरू होला तो जब शुरू होला तो है लाज में कौन एगो टेंडेंस है पेरेंट लोग के नहीं एक्सेप्ट होगी एगो एगो फास डिनायल में रहना सा तो जब वो लोग नहीं एक्सेप्ट होला तो क्या वो ट्रीटमेंट वाने दे वेलन सा वो के डॉक्टर यहाँ नहीं ले चालन सा तो हाउ लोग है लेकिन अपने में है जैन वन अपने में रेंफर्मे हो जालन सा और फिनालमो ओ लोग में है गलत लीडे है लगेला और जाके अपने आप के समाप्त कर देवेलन सा तो है पागल लोग के बहुत ऐप होता है कि देखे कि है लास्ट में जब लड़का बोलता नहीं अच्छा बा और लड़का में सोच में होता जब लड़का डिप्रेशन में जाता है या तो बतियाता चीज जो समझ में नहीं आता का ही ऐसी बतियाता तो ऐप होता है कि ओके डॉक्टर यहाँ ले जाए चाहे ना
1: तो डॉक्टर जी बहुत घर में है भी समस्या बात है कि जब लइकवा एक्सप्रीमे करे खोजेला तो कबो कबो ऐसा होला कि माता पिता लोग नहीं समझे खोजेलन सा और कबो मानला जा एगो एगो लइकवा जब सच्चे के एगो कोना में बा एक अकेले हो गल बा नहीं है कोई कोई संगे बतियाता तो ढेर कोई पाहों लोग समझेलन सा कि उ तो झूठे झूठे करता झूठ बोला था तो है में कैसे एगो पाहों डील कर सकी या कैसे तू पाहों लोग के कौन चीज बोलबा जैसे के मान ला ऐसा समस्या घर में उत्पन्न हुआ था तो कैसे एगो पाहों के डील करे के चाहिला
0: हम पहला तो पाहों लोग के बोलब जहां कोनो सोंसमो दिखबा जापन ने काम है
1: हां
0: तो जस्ती निमन से देखे चाहेला और फिर ई खाली पाहों के थी नेमा खाली सुसाइड बचाए खातिर एगो गोल बा पाहों के फामी के जोन पोस फामी लोग बा जोन पोस वाजें लोग बा जोन पोस कमराद बा या तो लेकर लेकोल या तो प्रोफेसर लोग बा इस सब के रोल सोसाइटी के रोल बहुत ऐप होता है लाकोस जब समझ में आवेला तो ये लोग सब के लोग केला तो ये जब पारों मैम जे पारों तो नहीं सुन वो नहीं चाहे आगे बढ़े के तो फामी लोग के समझाए जाए ना पागल लोग के समझ जाना कि एगो सर्टिफिका ओकर लड़का ले जस्ती बड़ा नहीं बा और ये सब ने ऐप होता बा कि प्रोग्रे खाली पढ़ाई में पोगे करत से पोगे नहीं हो जाना
1: बहुत बहुत चीज हा ओकर संगे
0: संगे संगे जो सकी लड़का आगे बढ़े लड़का सकी प्रोग्रे करे लड़का सकी डेवलप हो दूसरा सांस में तो है सब में एक में सोसाइटी के और फैमिली के रोल ऐप होता बा पारों नहीं हूँ समझी तो के समझाई की कि लड़का के एक चाहे ना कि बचाई में एक जना के बचाई में खाली नहीं सब बोले कि एक जना के हाथ रह जाए ना
1: सच के और जैसे डॉक्टर जी मान ला जा कोई जिनेस हवन कोई युवा हवन कबो कबो ऐसा भी हो जाला कि ओकर संगतिया में या कबो ऐसा हो जाला कि तुगास लिकुल में कबो बुलिंग के समस्या उत्पन्न हो जाला था है में भी लाइक वो नहीं खोजेलन सा एक्सप्रीमे करे या नहीं खोजेलन सा बतावे अपन पाहों लोग के तो है में कुछ तो बोल पा
0: नहीं तो है में सब ले पोता हूँ रोल लिकुल लिकुल के समझे चाहना कि है सब चीज निमन से देखेगे और जब जब ओकर प्रोफेसर दिखाता कि लड़का में समझ में आवता और प्रोफेसर से पहला लड़का के जब कोनो प्रॉब्लम बुलिंग होला तो वन प्रोफेसर से जाके बोलेला तो ओकर प्रोफेसर के है चीजवा के बनानी से नहीं करे चाहना है सब के एनालिज नहीं ली चाहना
1: एक
0: पर एक्शन लेके और समझाए के लड़का लोग के क्योंकि एगो लड़का

0: क्या जब सीसी देव जाला तो हम सब लेखपन जो न कर लो तू हाज में रह सब आफिक देवला एक ओ सीसी से मिनिमम 15 जन आफिक देवला सोचवा ओकर फामी ओकर पोस्ट है ये बा ओकर सितना संगतिया बा ओकर सब उस सब आफिक देवलन सब मतलब है कि जब कोनो ऐसा ने को चीज लेके आके कोनो बोला था तो एपूत हो कि लेकुल के समझे के पोविसय के समझे के पोविसय के जो नक्शों ले के बा ले के जब मैं लेकुआ सोची होई कि ओकर बात इसने मैंने चल गल
1: मतलब ओकर एक्शन लेवे के बहुत जरूरी हो
0: चला वो कितना परिथी होई मैं लेकुआ के समझे ओके सोची हो चाहे ना कि ओके देखल जाता
1: और जैसे आजकल तो डॉक्टर जी जैसे सोशल मीडिया बहुत जोर शोर में है तो लेकिन लोग ढेर इन्फॉर्मेशन को लेते करे लंसर ढेर चीज अपन कपार में डाले लंसर जो कंस्ट्रक्टिव नहीं है जो कबो कबो हो जाला कि सोशल मीडिया के भी कोनो लैंपैक रहेला लेकिन के कपार पे
0: रहेला जरूर रहेला पहला तो लड़का लोग के ढेर सोशल मीडिया पर नहीं रह जाना सेतु जब बड़ा हो तो उनसे जब लड़का लोग पढ़ाता तो सोशल मीडिया से दूर हुए रह जाना जितना हो सकी मैं जब रहा तो उनसे तो दिखे चाहना पागल लोग के अपन एक गौर रही चाहना होकर सोशल मीडिया कौन कौन सोशल मीडिया है कहाँ पे कैसे एहतियात करता लोगों से और कौन ओकर रहती अब जब देख सोशल मीडिया में लड़का लोग जब अभी जो कमागत लोग से एहतियात करत हो जब लड़का के कोनो जब ओके गलत बुद्धि आए लगेला तो स्पेशल में वो सोशल मीडिया में पहला लिखेला कि अब ओके जिए के नहीं मन बा कि अब ओके आगे जाए के नहीं मन करता कि अब ओके सब कुछ छोड़े के मन करता तो ऐसा नहीं ऐसा चीज जब लिख देवेला तो ऐसा चीज जब कोई देख लग तो ऊ लेकिन के बहुत ऐप होता हुआ वो लोग के सुने के और वो लोग के औकात ही करेगी ये बहुत ऐप होता हुआ नहीं तो वो लोग आगे बढ़ते जाना वो लोग अपने आप के आउड़ी गौफहमे कर ले जान सर और वो लोग के अंधकार में चल ले जान सर
1: तो डॉक्टर जी जैसे अभी सोशल मीडिया के बात कर रहा था तो मीडिया के एगो है बहुत बड़ा लैंपैक बहुत बड़ा रोल रहेला तो कबो कबो ऐसा भी हो डाला कि मान ला कोई परिवार में कोई सुसीदे कर देले हुआ तो है बतवा के तनी जस्ती सेंसिटाइज कर देवेला तो है भी कोनो कोनो तरह से अफेक्टे करेला उनकरा उनकर परिवार पर कोनो एगो मानसिक प्रेशर डाले लन सर
0: जरूर है मैं बहुत एपोतों में कि जो सुनानिस्त होगा वो लोग के रिस्पॉन्सिबल रह जाना है सब चीज के देखे जाना लाखों सब जो जो फामीवा आफिकते और बैगो सीसीद से ओकर सोचिमो वही जाने ला कितनो आदमी ओकर काहे हमने रिचुअली सब करी ला सा काहे सब बना के आदमी लोग के सब लापुईया ही सब होला वो सब ताकि वो लोग के सूचे मिली एगो सूचे है एगो सौदे सूचे है मैं हई लेवा में जब तू ओके सूचियाँ दे दे अलावा ओके आउड़ी प्रेशन डालत होगा पर तो हई से दीजा वे को प्रेशन पर रहेला से तू का पोस्ट फैमिली लोग से तू का पोस्ट कमरात लोग लाइक जो एक जना सिसदेव रहेला ओकर तो वो लोग बहुत अफेक्टिव जानन सर तो हई बहुत हरा होल बा जब इतना लेकर अफेक्टिव जाना लोग कितने वो लोगों आगे जाए कि तब वो लोग के डर लगे लगेला घर में से निकले के कि लाखों सा एगो एगो एथी क्रिए का देवे लंसा एगो एगो सेनायो कि जन से वो लोग के अब डर लगेला आदमी ये कैसे फास करी अंसा तो ऐसा चीज नहीं करे चाहे ना जितना हो चकी आदमी के कौन पहुंच चाहे ना कुछ सीसी जो है कोई की सकी थी ये एगो एगो मलाद से जैसे जैसे देखी लासा कोई खिस गौजाक से मर गल तो किस गौजाक से मर गल एगो एगो एगो मर नहीं है तो उसने सीसीद से कोई मरेला तो पागे ही हवे नज़र से दिखे चाहे ना कि ओके बनानी से नहीं करेगी ओके ऐसा नहीं करेगी कि लोग उसे डर
1: आगे बढ़े के तकलीफ
0: होई तो हई नहीं करे चाहे ना
1: तो हई कहीं ना कहूँ हई भी मान लो एगो परिवार में एगो सुसीद चलावेला तो हई समस्या के साथ साथ ओकर परिवार ओकर जितना संगतिया हवन ओकर जितना रिश्तेदार हवन उस सब कोई के एगो मेंटल थाका भी चलावेला एगो दबाव चलावेला जेकर में समाज के है ये एगो रोल है कि ओकरा स्टिग्मेटाइज नहीं करे के ओकरा बहुत जस्ती सेंसिटाइज नहीं करे के काहे के मीडिया के भी एगो रोल सोशल मीडिया के एगो रोल रहेला और हैजा पर है सब कारण भी कहूँ ना कहूँ एगो दबाव खेक कर देवेला उ परिवार खातिर उ व्यक्ति के जितना संगतिया हवन जितना रिश्तेदार

हवन उन सब कोई खातिर। और आज हम बात करत हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंटिव डे प्रिवेंशन डे, कैसे तू है के रोकब, कैसे रोकथाम करब है में समाज के जितना रोल है, बहुत ऐपोत रोल रहेला उनकर परिवार के, उनकर समाज में जितना भी लोग हवन सब कोई के जिम्मेदारी निभाए के बहुत जरूरी हो। और आज के कार्यक्रम में जे तू भाग लेवे खोजत हव तो 4028085 पर तू हमने के टेलीफोने करे सकब। अभी थोड़ा घड़ी में जानब जा कि एगो साइकोलॉजी या एगो साइकोलॉजिस्ट या एगो साइकैट्रिस्ट के कौन रोल रहेला, इस सब में कैसे ओकर जिम्मेदारी निभावेलन सर। एगो गीत के ब्रेक के बाद फिर उसे कार्यक्रम के आगे बढ़ावब जा।

0: आज बात कर रहे हैं वर्ल्ड सुसाइडल प्रिवेंशन डे, सुसाइड प्रिवेंशन डे, रोकथाम किस तरह से करनी है, जिन्हें आत्महत्या के विचार भी आते हैं, किस तरह से हम उसे पहचान सकते हैं, किस तरह से उसकी मदद कर सकते हैं। और बिल्कुल जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि इस साल का जो थीम रखा गया है वो है बात करिए, बिल्कुल आप शांत ना रहिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन, जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ उसका सोल्यूशन भी है, और उसे ढूंढने में बस हमें उनकी मदद करनी है जो सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। और यहाँ पर एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, बिल्कुल जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं, जो साइकियाट्रिस्ट हैं, उनका एक बहुत अहम भूमिका होती है समाज में। आइए जानते हैं डॉक्टर जाकिर सर से कि क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रोफेशनल्स का, जहाँ पर हेल्पलाइन का क्या रोल होता है, जो लोग ऐसी समस्या से गुजरते हैं वो किस तरह से आप तक पहुंच सकते हैं।
1: देखा, सबसे पहले समझे चाहला कि लड़का लोग के एक आधो चीज है, कहो है जो एक आधो चीज लोग नहीं सकेला, ना पारों से बोले न सकेलन सा अपन पोवेश लोग से, या बड़ा वो लोग हाँ। कितने अपन फैमिली में अपन चीज नहीं सकेलन सब बोले, तो वो लोग के पढ़ेला कोमिया तो एगो सिकोलोग के देखे सर, तो सिकोलोग अकेले में वो लोग से बात करेला, वो लोग के जो दिल में बात जो उन लोग के दिक्कत बात जो है वो अपन वॉइस आउट करेला, तो वो लोग जो सोचे लंसा कि हई हमर हमर हई इसके हमर कोनो समाधान नहीं बा, तो वो लोग के समझावे लंसा, लोग के दिखाए ला सा, वो लोग के सिकोलोग दिखावे ला कि कैसे क्या करेला, और सिकोलोग देखेला कि नहीं एकर में कोनो प्रॉब्लम बा कि चाहेला कि दवा लेवे की, तो वो सिकियाथियाँ भेज देवेला, पहला सिकियाथियाँ भेजे कि या तो जैन आली सुए कहो जैन डॉक्टर जैन आली सुए देखेला, देखेला कि नहीं कोनो कोनो हवन से कोई बा जो बोला था कोई चीज़ बोला था तनी कॉम्प्लिकेट बा तनी चीज़ बा जो मैं कि दवा चाहना, तो सिकियाथियाँ भेजेला। और आज हम कि जाने चाहना कि मोइस के जो पहुँच को बड़ा लोपिताल बा सब में सिकियात बा, सिकियात बा, सिकोलोग बा, सोशल वर्कर बा, वो लोग के सबके सुतनिया करेगी। और सिक्यात आज सब जितना एरिया हेल्थ सेंटर बा हुओ पे कंसल्टेशन देवा था।
0: अच्छा, मतलब सगरो सगरो
1: बस के सगरो ओके हाँ। जितना हो सकर बाला कोस आज हवे पॉलिसी बा की तो लोग के भीरी आवे की, त आदमी के समझे चाहना जब कोनो दिक्कत बा त एजिते नहीं होई की, ई एगो मालाद है कैसे डिप्रेशन हुए बा, या तो कौन जितना मेंटल डिजीजेस बा, या तो कभी कोनो तनाव में रहन से उसके लागू एगो मलाद नहीं है, वो आके बचे से खाली सिकायत से या सिकोलोग से, तो वो लोग सुलाजे सोचे हो रहा लोग एगो सीमा लग जाना, वो सैम भोजन से एगो सैम बोला अभी कि एगो एक एक जना कि अभी एक आध दिन होला कि लोपिताल में आदमी थोड़ कुछ खातिन एक अजमो ऐसा करलक वो के लीदे से सीधे आवत हल वो आके बोलक कैजुअलिटी में तो के आदमित कर दिलन सर, तो ओकर प्रॉब्लम कुछ रह ख्यालियों का मादाम को से नहीं बतियाता।
0: अच्छा,
1: तो ओके बला के ओकर मादाम से बतियो नहीं सर, ओकर मादाम बोलक नहीं पेनो प्रॉब्लम बतियाई ओकर संगी रही, ओकर सब लीदे चल गल, ओकर जो उदासी रहल चल गल, वो अच्छा खासा अपन घरे चल गल,
0: यानी एगो ब्रिज क्रिएट करे के चाहिला कि कौन समस्या बा ओकरा सुन के
1: ओके समझा के ओके जने को चीज सॉल्यूशन हो के आन दे अब सर, तो वो थी सुलाजे हो चला ओकर सब कुछ चल जाला, तो ये जब वो नहीं आवत लोपिताल तक कुछ गलत कर देवत तो सब कोई की दुख होत, वो एगो एगो आदमी जैन में जो काम करा था सब सब में पहचिया, तो ये यहाँ कि कहो नहीं सोचे के कि कोनो चीज सैंपन तो ओके इसने रह जाब नहीं सगरो आज तो दुखते बा सिक्यात बा सिकोलोग बा, मैम कोई डरेला लोपिताल आई के तो प्रीवेओ में बा सिक्यात प्रीवेओ में सिकोलोग बा, ओ मैं जाके बतिया।

0: डॉक्टर जी जैसे अभी स्टिग्मा कर के बात कर ली तो ढेर कोई है ये सोचेला कि जब हम एगो सिक्यात हियाँ जाब हियाँ सिकोलोग हियाँ जाब तो हमने के आदमी बोली हम पगला गल हई है ये से को मजे ढेर कोई डिराला जाए के ओकर बारे में तू कौन चीज बोल
1: ये सब पोतवा समझे के कि जो मेंटल डिजीजेस है इहो पागे एगो एगो एगो माला जो दूसर मना दी देखा कैसे लीदे सीसी दे वो कॉम्प्लिकेशन कैसे कोई के डिप्रेशन आवेला तो पारे ओकर कॉम्प्लिकेशन है लीदे सीसी दे तो ओके पहला लीदे सीसी दे वो येजों से रात खेते करे तो उसने कैसे कोई के ओके हाइपर टेंशन है तो हाइपर टेंशन वहाँ पहला खेते करे के जब मैं ओके क्रिस कॉजाक नहीं हुई तो क्रिस कॉजाक होला तो वो येजों से हो जाला पहला ओके आने के लुपताल पहला ओके खेते करे के येजों से तो उसने कोई के डिप्रेशन बा या सिजोफ्रेनी बा तो ओके को लीदे सीसी दे होता तो वो येजों से हो जाला तो येजों से पहला खेते करे के तो ये सब एगो स्टिग्मा सोचब ई सोचब कि नहीं पगला गल आज हाउ एगो लेपोक रहल आज जो है जिक्शन में से पगला जो है मुआ फू जो बैल से है निकाले चाहे आगे रहल कि थ्रेटमन एक चीज रहल आगे रहल कि सब समझत नहीं रहन से आदमी समझे नहीं आगे रहल कि एक कोनो फुजों सोस नहीं चाहतन से कैसे रह चाहे मैं हई सब में बहुत काम बा और आज जो है इ समझल गल बा समझल गल बा कि एगो मलाध जैसे सब मलाध और इहू अपन थ्रेटमो में अच्छा रहला जैसे कोई को जाबित हो गल तो अपन थ्रेटमो लेवेला तो अच्छा रहला ओका जाबित कंट्रोले रहला तो ई कोनो कोई सोचला कि नहीं हम कोनो प्रॉब्लम मोहताल हो तो हम दवाई लेब तो लाभी भर पड़ी ले के ती आदी खोजब खोजब तो ही समझे चाहे ना कि अरे जाबित हो तो जाबित के दवाई लेवत हुआ तोशो हो तो तोशो के दवाई लेवत हुआ तो वो आदि कोई लगा वो लेवत हुआ जब वो कंट्रोल में रही तो उसने हटे जब एक कोई डिप्रेशन में बा कोनी खो गल तो दवाई ले लॉन्ग टाइम भी लेवेला जब मैं कंट्रोल में रही
0: तो वो एगो थेरेपी करता और आज ओकर नाम देवल गल बाते
1: थेरेपी करता तो आवडी अपनी ऐसा नहीं थी कि एक आतले जब देखी रहा था वो कहो पहला ट्रीटमेंट के संगे ओके सिपो साइकोलॉजी को देखे तो साइकोलॉग को संगे ओके सपोर्ट करेला और दवाई लेवेला तो वो अच्छा रहेला अपन काम करेला अपन सब लावी नॉर्मल ले चला जैसे सब आदमी ने चालन सा
0: तो डॉक्टर जी मान ला कोई के घर में सुसाइड के एगो केस बन गल बा तो उनकर परिवार के भी चाहिला एगो थेरेपी कंटिन्यू करे के एगो काउंसलिंग लेवे के
1: देखो कैसे शुरू में डेफिनेटली मो पहला एगो काउंसलिंग दे के लोग के वो लोग के समझाए के वो लोग के सुटेनिया करे के हई लौतुआस पर है पोतो जब ये अंतुगे वंश वो लोग के लौतुआस अच्छा बा वो लोग के सपोर्ट सिस्टम अच्छा बा वो लोग के लौतुआस कौपो होता कि एगो प्रॉब्लम चला बा उन लोग के सिपोते करे चाहना वो लोग के हाउ सुचेवा देवे चाहना नहीं कि आके खिचके करे चाहना नहीं कि आके ब्लामे करे चाहना कि तोरे खातिन होगल हई खातिन होगल हाउ खातिन होगल तो हई थी तो जब हाउ सुचेवा रहला तो कितने कोई के नहीं सेहत है मैं कितने कोई हाँ मैम सुचेवों के बाद भी कहो होला कि वो लोग थ्री सो जान से नहीं सके से एक्सेप्ट करे कि ऐसा क्या होगा के घर में तो उन लोग के लोग की वजह कभी उन लोग के दिमाग में यू आए लगेला कि ओकर प्लास में का हम नहीं चगे नहीं सब ऐसा ऐसा जब आवेला दिमाग में तो वो लोग के चाहेला आके सुचे ले के वो लोग के चाहेला दुखते हैं यहाँ के वो लोग के परेला थोड़ा दिन पे देते कभी खाली खाली सुचे साइकोलॉजिक से नहीं अथी हो रहा पहला कहियो थोड़ा दवाई दे के थोड़ा दिन दवाई पर रहना सर तो समझाओ जरा जब तक वो लोग रे से अपन लाभी नॉर्मल में जो रे से नहीं अपन लाभी ले लेन सर नॉर्मल जैसे अपन नाभी ले चला तरन सर तब जाके वो लोग के तब सकेला दवाई आ गई थी वो चला
0: तो डॉक्टर जी मान ला कोई के ऐसा सुसाइडल टेंडेंसी एगो एगो ऐसा प्रश्न मन में आवता उनकरा बहुत डिप्रेशन चलाल बा एंग्जाइटी चलाल बा तो कैसे तू उनकरा गाइड करब कि ओकर अलावा जीवन में बहुत चीज है कैसे उनकरा तू एगो थेरेपी या एगो ट्रीटमेंट द्वारा तू कैसे सीखेब कि कैसे कौन सी चीज अपनाई के कैसे करब आगे लेके जाए के जीवन
1: देखा हर एगो का से पा गया हर एगो का जो नावेला जो उनके भाव सब तो पहला एनालिसिस करेगी पहला उन लोग की सुने की पहला सब ले आप होता उन लोग की सुने की उन लोग की अपन जो उन लोग के दिल में बाप बोले दे के जब बोले लंसा तब समझे पड़ेगा कहाँ प्रॉब्लम हुआ बा तो कहाँ उन लोग के सकब सा ए दे करे कौन ए दी मैं ना कुछ देर रहा है जो उन लोग एगो चीज के इतना ले को लोग सोचे लगेला कि सोचे लंसा है ये लोग के फिनाल तब पहला लोग के समझाए कि नहीं है के अलावा आवरी चीज बा कैसे चीजों के लोग कहता कि नहीं हम एग्जाम में नहीं पास हुई नहीं तो है ये हमारे अब का कर लावी में नहीं।

0: अभी बाहों लोग के समझाए चाहना देखा लोग के कि फेल हो जाए तो का करे भाई कि खाली नहीं बताए कि नहीं पास हो बे हई कर देवे तो आउरी हई कर ऑप्शन तो से हाउ कर ऑप्शन ओके हईयो समझा चाहे ना कि
1: ओकर भी सीमा बा
0: ओकर सीमा बा फेल हो गेले तो पेन प्रॉब्लम कि हई तुरा हईयो सब भी करे
1: एगो काहे के उ जब नहीं बतावेलन सा त नहीं जानेलन सा कि जब ऐसन चलाल त अब कौन
0: ची करेगे तो वे त भागो लोग के प्रोफेसर लोग के समझाए चाहे लइका लोग के कि हई में नहीं रेसी होइले त आउरी चीज बा सीमा खाली एगो नहीं बा जब फेल हो गए हाँ तो हई चीज वहाँ हई बहुत ऐप होता वहाँ हई मौत आई थी वहाँ आने की नहीं तो बहुत यही सब हमने के पहला हुए सुन के लोग के पोषण लोग सुने लंस उन लोग के समझे लंस तो लोग के गीदे कह लंस और पहला उन लोग के जब को लीदे सीसी दे बात तब लोग के थोड़ा दिन आदमित्व का दिला सर लोपिताल जब मैं लोग के पोस्ट रब सा उन लोग के सेवैये कर रब सा ना कुछ उन लोग के हाउ ले वहाँ आको पाई मो चाहे ना उन लोग के चाहे ना कि कोई उन लोग के संगे बा उन लोग अकेले नहीं वन सा तो हाउ जब आवे लंस लोपिताल रहे लंस तो लोग के रेगिडिया मो देखी ला सा उन लोग के सूचिया साइकोलॉजिक सूचिया साइकियाट्रिक थोड़ा दवाई वो दे पाए ना ला कुछ देर ला होला कि निमन से वो सोच में वो लोग सुते ला नहीं निमन से तो लोग के वो लोग के नींद रे से आने ला सा उन लोग के समझा के तब वो लोग हो दिक्कत वहाँ से निकले
1: सर। डॉक्टर जी आज के कार्यक्रम के लगभग समाप्ति ले चला ही नहीं सर, तो डॉक्टर जी जाते जाते हमने के श्रोता लोगन से हेल्पलाइन के नंबर या कोनो ऐसा नंबर रही जेकर से वो कॉन्टैक्ट करे सकी तो हमार श्रोता लोगन के जरूर बता दा।
0: देखा हमने के मिनिस्टर मिनिस्टर ला सोंते के ओकर हेल्पलाइन बाटे जो बैनकात तो बैनकात काम करेला वो एगो निम्हो बा जो मिनिस्टर के बा 89 56 66 बैनकात तो बैनकात मिनिस्टर के मिनिस्टर ला सोंते के बा एगो बा SOS SOS Enfant जो 800 30 30 और फिर ब्रीफेंडर्स वो बा जो के ओकर ओकरो हेल्पलाइन बा जो ओहू एट देवेला 800 93 93 इसब पर जब जब टेलीफोन है करियन सा कोनो दिक्कत बा कोई अकेले समझाता कोई के ऐसा लीडिया होता जब सुने के लंस तब प्रोफेशनल लोग वो लोग के सुनेला वो लोग के समझेला वो लोग के अकॉम्पाइन करेला ताकि वो लोग के समझावेला कि कोची करेके और ऐप होता हूँ कि ये लोग कोई से बात करियन सा
1: बतियाए के बहुत जरूरी है। जी हाँ, आज के कार्यक्रम रहल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे पर जो 10 सितंबर के मनावल जाए और एकर पर ढेर कार्य करता पर बेशक एगो सितवाइये एगो जिम्मेदार नागरिक के नाते हमनियों के भी एगो जिम्मेदारी चलावेला कि हमनी के लौतुगाज में कोनो भी व्यक्ति ऐसन समस्या के सामना करत हवन तो कैसे तू उनकरा एगो एड देब कौन ची देब कौन कौन एडवाइस देब कहाँ जाए के चाहेला जैसे डॉक्टर जी हमनी के बोलन है नंबर वा वेनकात सेट उपलब्ध रहेला जहाँ पर जे तोहरा कोनो सवाल रही तो तू टेलीफोने करे सकब संपर्क बनावे सकब तो एकर से एकर संगे हमनी के टेक्निकल टीम काविश संगे रहल उरुसा और शीतल लोबिन हमनी के प्रोड्यूसर और साथ ही साथ डॉक्टर जागेसर तोहरो और तोहर सब टीम के बहुत बहुत धन्यवाद बोलब जा और बिल्कुल एगो और नवा कार्यक्रम के साथ उपस्थित रहब जा तबले हमनी के बस अनुमति दीजिए। नमस्ते, शुभ दिन सभी को।

0: ये सुनते हैं समाचार आशिता के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिरीश, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉरिशस में 300 साल से अधिक पुरानी मॉरिशस एसोसिएशन ऑफ नोटरी ने कल यानी मंगलवार 1 सितंबर को पोर्ट लुइस में अपने पहले आधिकारिक मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश रियाना मंगली

0: गुलबुल और न्याय मंत्री यानी अटॉर्नी जनरल गविन ग्लोवर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ये उद्घाटन हिंद महासागर क्षेत्र के नोटरी सम्मेलन 2026 के तहत हुआ, जिसका आयोजन मॉरिशस में पहली से 4 सितंबर तक किया जा रहा है। इस सम्मेलन में हिंद महासागर क्षेत्र के विभिन्न देशों और द्वीपों से आए प्रतिनिधि मंडल भी हिस्सा ले रहे हैं। बुजुर्गों की बदलती स्वास्थ्य जरूरतों को देखते हुए जीतू अस्पताल में 36 बिस्तरों वाली 2 नई इकाइयां शुरू की गई हैं। उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें भी बदलती जाती हैं। बुजुर्गों को उनकी शारीरिक कमजोरी, अलग अलग बीमारियों और रोजमर्रा के कामों में उनकी आत्मनिर्भरता के स्तर को ध्यान में रखते हुए विशेष चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। मॉरिशस में सरकारी अस्पतालों में जेरियाट्रिक यानी बुजुर्गों की चिकित्सा सेवाओं का धीरे धीरे विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में जीतू अस्पताल में बुजुर्ग मरीजों को की तीव्र चिकित्सा देखभाल के लिए 2 नई इकाइयां शुरू की गई। इन दोनों इकाइयों में कुल 36 बिस्तरों की क्षमता है। नई इकाइयों से बुजुर्ग मरीजों को उनकी विशेष स्वास्थ्य जरूरतों के अनुरूप अधिक समर्पित और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मॉरिशस अपनी ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री अर्थव्यवस्था के भविष्य को नए सिरे से आकार देने के साथ साथ छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले कारीगर मछुआरों के हितों की रक्षा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस उद्देश्य से अफिसिस क्षेत्र या परियोजना के तहत मॉरिशस को करीब 30 मिलियन रुपए की वित्तीय सहायता मिली है। ये परियोजना ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप सदर्न अफ्रीका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की साझेदारी में संचालित की जा रही है। इस पहल के तहत मॉरिशस के करीब 2500 और रोड्रिक्स के 1700 मछुआरों को विभिन्न प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य मछली पकड़ने को अधिक टिकाऊ, अधिक लाभदायक और पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार गतिविधि बनाना है, साथ ही स्थानीय मछुआरों की आजीविका को सुरक्षित भी करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद 8वें दिन भी राहत और लापता लोगों की तलाश का अभियान जारी है, जबकि आपदा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नेपाल पुलिस के ताजा आंकड़ों के अनुसार 1093 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 4500 लोग अब भी लापता हैं। कई जल परियोजनाओं की सुरंगों में राहत कर्मी उन कामगारों को तलाश कर रही हैं जो कीचड़ और मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। आपदा की भयावहता को देखते हुए सरकार ने प्रभावित क्षेत्र को 3 महीने के लिए संकट ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। राजधानी काठमांडू में अज्ञात पीड़ितों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन इस त्रासदी के बीच मानवीय एकजुटता की तस्वीर भी सामने आ रही है। बिदुर में युवा स्वयंसेवकों ने एक सहायता केंद्र बनाया है, जहां प्रभावित परिवार अपने मोबाइल फोन चार्ज कर पा रहे हैं और लापता परिजनों की तलाश के दौरान एक दूसरे के संपर्क में बनी हुई है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: RM3 Radio.

सो चलिए दोस्तों अभी के लिए साथ दे रहे हैं आप ऑन रेडियो मनोरंजन RM3 हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप दिल से मिले दिल ये प्रोग्राम आपके लिए जहां पर कुछ रोमांटिक गाने आपके लिए हम लेकर आते हैं आई नो ये टाइम आपका भी होता है जब आप या तो ड्राइव कर रही हैं या घर से हमारे साथ जुड़े रहते हैं हमारे सभी दोस्त जिन्होंने ट्यून इन किया है रेडियो मनोरंजन के साथ वेलकम कुमार

तो यहाँ पर खूबसूरत गाने आपके नाम दिल से मिले दिल प्रोग्राम लेकर आए हैं जहाँ पर ये जो सूदिंग सॉन्ग्स हैं आपकी आफ्टरनून को थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बना रहे हैं कोशिश यही रहती है कि डिफरेंट सॉन्ग्स के साथ आपको एंटरटेन करते रहे अभी के लिए समय हो चला है इन खूबसूरत गीतों का RM3 रेडियो मनोरंजन 5250620052506200 आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस

और चलिए दोस्तों, इसी के साथ समय हो चला है कि हम आपसे ले अलविदा। समय हो चला है कि परी यहाँ से जाए, तो अब एक और खूबसूरत गाना आप सुन पाए। तो बस कुछ ऐसे ही प्यारे गाने अगर आप सुनना चाहते हैं तो यू आर द राइट प्लेस। यह है आपका अपना RM3 रेडियो मनोरंजन। सो छोड़े जा रहे हैं आपको विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक और आपसे मुलाकात होगी जल्द। तब तक के लिए कनेक्टेड रहें आप RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ।

योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, आसक्ति का त्याग करके योग में स्थित होकर कर्म करो तथा सफलता और असफलता में समान भाव रखो, यही समत्व योग कहलाता है। श्रोताओ, योग का अर्थ केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं, कर्मों में कुशलता भी योग कहलाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो और अपना निर्धारित कार्य पूरी एकाग्रता या तल्लीन होकर संपन्न कर रहा हो,

0: उसको भी हम योग कहते हैं। प्रिय श्रोताओ, एक बार फिर अनकही एक कहानी नामक कार्यक्रम में विश्वानंद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। अपनी स्वरचित कहानी लेकर प्रोफेसर राजशेखर भी हमसे जुड़ गए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। तो विलंब न करते हुए चलिए सुनते हैं अनकही एक कहानी प्रोफेसर राज की जुबानी।
1: सर्वप्रथम आपका हार्दिक आभार गुरु बिस्वा। नमस्कार प्रिय श्रोतागण, रेडियो की इन मधुर तरंगों पर गुरु बिस्वा के साथ मैं प्रोफेसर राज आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम अनकही एक कहानी में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व निकट है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं बल्कि प्रेम, नीति, कर्तव्य, बुद्धि, करुणा और धर्म की एक ऐसी विराट यात्रा है जो हजारों वर्षों से मानवता का मार्गदर्शन करती आ रही है। महाभारत में श्री कृष्ण ने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन धर्म की स्थापना में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन अपने ही स्वजनों, गुरु और पितामह को सामने देखकर विचलित हो गए और उनके हाथों से गांडीव छूट गया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें केवल युद्ध करने की प्रेरणा नहीं दी बल्कि जीवन का वह महान दर्शन दिया जिसे हम आज श्रीमद् भगवद गीता के नाम से भी जानते हैं। हाँ श्रोतागण, आज की हमारी अनकही एक कहानी केवल श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद की कहानी नहीं है, या उस प्रश्न की कहानी भी है कि महाभारत का वास्तविक नायक कौन था। क्या वह अर्जुन था, भीम था, कर्ण था, या फिर वह अदृश्य रणनीतिकार, सारथी और मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज की कहानी हमें कुरुक्षेत्र की रणभूमि से लेकर श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान और बर्बरी की दिव्य दृष्टि तक ले जाएगी और बताएगी कि जब धर्म संकट में हो तब सही मार्गदर्शन स्वयं सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। तो हाँ प्रिय श्रोतागण, कहानी इस प्रकार शुरू होती है। महाभारत का युद्ध केवल दो परिवारों के बीच भूमि का विवाद नहीं था बल्कि यह धर्म और अधर्म, नीति और अनीति तथा अहंकार और समर्पण के बीच का महान महासंग्राम था। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध की भेड़ियां बजने लगी थीं, तब कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों ने आर्यावर्त के समस्त राजाओं और महारथियों को अपने पक्ष में मिलाना प्रारंभ कर दिया। इस महाविनाशकारी धर्मयुद्ध की शुरुआत से ठीक पहले एक अत्यंत अनूठा और दुर्गामी प्रसंग द्वारका नगरी में घटा। संसार की दो सबसे बड़ी शक्तियां, कौरवों की ओर से भावी सम्राट बनने की आकांक्षा रखने वाला दुर्योधन और पांडवों की ओर से धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध धनुर्धर अर्जुन एक ही समय पर भगवान श्री कृष्ण के राजमहल में सहायता की याचना लेकर पहुंचे। यही वह क्षण था जिसने महाभारत युद्ध का भावी इतिहास, उसकी दिशा और उसका अंतिम परिणाम सदैव के लिए निर्धारित कर दिया। द्वारका में श्री कृष्ण अपने भव्य शयन कक्ष में अपनी सैया पर विश्राम कर रहे थे। कक्ष में एक ओर स्वर्ण का ऊंचा सिंहासन रखा था तो दूसरी ओर उनके श्री चरणों के समीप खाली जगह थी। दुर्योधन ने अहंकार से भरे कदमों के साथ कक्ष में प्रवेश किया। वह श्री कृष्ण को सोया हुआ देखकर मुस्कुराकर और अभिमान पूर्वक उनके सिर की ओर रखे ऊंचे सिंहासन पर जाकर बैठ गया। इसके कुछ ही क्षणों बाद अर्जुन ने बड़े विनीत भाव से उसी कक्ष में प्रवेश किया। वे श्री कृष्ण को नमन कर उनके चरणों के पास हाथ जोड़कर अत्यंत नम्रता से खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जागते ही उनकी दृष्टि सबसे पहले अपने चरणों के पास खड़े अर्जुन पर पड़ी और स्वागत की मुद्रा में मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण बोले,
0: आओ पार्थ, तुम्हारा स्वागत है। तुम कैसे आए? अरे गुरुराज दुर्योधन, आप भी पधारे हैं। कहिए, आज द्वारका की भूमि पर दोनों का एक साथ आगमन कैसे हुआ?
2: हे कृष्ण, कुरुक्षेत्र में पांडव और हमारे बीच युद्ध होना अब निश्चित हो चुका है। मैं इस महायुद्ध के लिए आपसे सहायता मांगने आया हूं और चूंकि मैं आपके कक्ष में अर्जुन से पहले आया था इसलिए धर्म और नियम के अनुसार

0: अनुसार आपकी सहायता प्राप्त करने का पहला अधिकार मेरा बनता है।
1: हे दुर्योधन, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप कक्ष में पहले पधारे थे, किंतु मेरी आंखें खुलते ही मेरी दृष्टि सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी। इसके अतिरिक्त नीति कहती है कि मांगने का प्रथम अवसर छोटे को दिया जाना चाहिए। अर्जुन आपसे आयु में छोटे हैं, इसलिए प्रथम याचना का अधिकार अर्जुन को ही मिलना चाहिए।
0: ये क्या कह रहे हैं आप वासुदेव? यह तो पक्षपात है, पक्षपात।
1: पक्षपात नहीं गुरुराज, संतुलन बनाए रखने के लिए मैं आप दोनों के समक्ष अपनी सहायता के दो मार्ग रखता हूं। एक ओर मेरी 10 लाख अति पराक्रमी दुर्जय और शस्त्रधारी नारायणी सेना होगी, जो रणभूमि में शत्रु का विनाश करने में सक्षम है, और दूसरी ओर मैं अकेला रहूंगा, निहत्था, जो युद्ध में न तो कोई शस्त्र उठाएगा और न ही किसी पर प्रहार करेगा। पार्थ, तुम चुनो, तुम्हें क्या चाहिए?
0: अर्जुन वहां बैठे थे और उन्होंने बिना कोई संकोच किए गदगद कंठ से कहा, हे वासुदेव, मुझे आपकी इस 10 लाख सेना की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो केवल आप चाहिए। आप मेरे पक्ष में रहें, चाहे आप शस्त्र उठाएं या ना उठाएं। और वहीं दुर्योधन भी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर सोचता है, मूर्ख अर्जुन, इस निहत्ते और तटस्थ कृष्ण के लिए इतनी विशाल और अजय नारायणी सेना को त्याग दिया, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? और फिर अपनी भावना प्रकट करते हुए दुर्योधन कहता है, हे केशव, यदि अर्जुन को केवल आपका साथ चाहिए तो मुझे आपकी यह विशाल नारायणी सेना सहर्ष स्वीकार है।
1: जैसी तुम्हारी इच्छा दुर्योधन, मेरी सेना तुम्हारी हुई।
0: और इस तरह से श्री कृष्ण की सेना और स्वयं श्री कृष्ण का बंटवारा हो गया। दुर्योधन विजयी भाव से मुस्कुराता हुआ नारायणी सेना का आधिपत्य लेकर कक्ष से चला जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर मुड़कर सस्नेह पूछते हैं,
1: पार्थ, तुमने यह क्या किया? दुर्योधन ने तो पूरी सेना ले ली और तुमने एक निहत्थे ग्वाले को चुना जो युद्ध में भी नहीं लड़ेगा, तुमने मुझे क्यों चुना?
0: अर्जुन नतमस्तक हो जाता है और भक्ति भाव से कहता है, हे केशव, संसार का कोई भी बल आपके ज्ञान और मार्गदर्शन के सामने तुच्छ है। मुझे आपकी सेना की नहीं, केवल आपके सत्य, आपकी नीति और आपके साथ की आवश्यकता है। कृपा करके इस युद्ध में आप मेरे रथ के सारथी बनिए और मुझे सन्मार्ग दिखाइए।
1: तथास्तु पार्थ, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा और तुम्हारे रथ की बागडोर भी संभालूंगा।

इस प्रकार संसार ने देखा कि जहां दुर्योधन ने भौतिक शक्ति सेना को चुना, वहीं अर्जुन ने परम चेतना ईश्वर श्री कृष्ण को साक्षात चुन लिया। द्वारका में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के उपरांत पांडवों ने युद्ध टालने का अंतिम प्रयास किया। महाराज युधिष्ठिर के शांति संदेश को लेकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर की राजसभा में पधारे, परंतु अहंकार में अंधे दुर्योधन ने धर्म और शांति के इस प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से ठुकरा दिया। हस्तिनापुर की भव्य राजसभा सजी हुई थी। महाराष्ट्र, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य,

0: और समस्त सभासद उपस्थित थे। श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव रखने के लिए वहां खड़े होते हैं और सबको संबोधित करते हुए बहुत ही गंभीर एवं मधुर स्वर में कहते हैं,
1: हे महाराज धृतराष्ट्र, मैं कुरुवंश को महाविनाश से बचाने के लिए संधि का अंतिम प्रस्ताव लाया हूं। पांडव युद्ध नहीं चाहते। वे कहते हैं कि यदि आप उन्हें केवल 5 गांव भी दे दें तो वे उसी में प्रसन्न रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे और इस प्रकार युद्ध टल जाएगा।
0: श्री कृष्ण के प्रस्ताव को सुनते ही दुर्योधन क्रोध में पागलों की तरह हंसते हुए खड़ा होता है। हे केशव, आप पांडवों का पक्ष लेकर मुझे ज्ञान ना दें। 5 गांव तो बहुत दूर की बात है।
1: यावद् भी तीक्ष्णया सूच्या विध्येद्वेन केशव तावदपि अपरित्याज्यम भूमेर्नः पांडवान् प्रति।
0: हे वासुदेव, बिना युद्ध के मैं पांडवों को तीखी सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, समझे आप? धृतराष्ट्र अपने पुत्र को इस तरह से साक्षात श्री कृष्ण पर भड़कते हुए देखकर कांपने लगते हैं। कहते हैं, पुत्र दुर्योधन, शांत हो जाओ, भगवान श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान लो, इसी में कुरुवंश का कल्याण है। पुत्र, इसी में कुरुवंश का कल्याण है। दुर्योधन पिता की भी बात को नहीं स्वीकारता है, वह और भड़क जाता है। पिताश्री, आप भयभीत ना हो, हमारी अजय सेना पांडवों का संहार कर देगी। युद्ध ही हमारा अंतिम निर्णय है पिताश्री, अंतिम निर्णय है। श्री कृष्ण दुर्योधन को क्रोधित देखकर उन्हें लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसीलिए वे बहुत ही शांत किंतु गंभीर स्वर में कहते हैं,
1: दुर्योधन, तुम शांत जल में आग लगा रहे हो। तुम्हारा यही हट, अहंकार और अधर्म संपूर्ण कुरुवंश के विनाश का कारण बनेगा। अब रणभूमि में ही न्याय होगा। हाँ, रणभूमि में ही न्याय होगा।
0: श्री कृष्ण राजसभा छोड़कर चले जाते हैं और युद्ध का शंखनाद निश्चित हो जाता है। हस्तिनापुर की सभा में शांति की अंतिम वार्ता दुर्योधन के हट के कारण निष्फल हो गई। युद्ध की घोषणा के साथ ही पांडवों और कौरवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में आमने सामने आ डटी। युद्ध का शंखनाद होते ही अर्जुन के मन में अपने बंधु बांधवों और गुरुओं के प्रति मोह और विषाद व्याप्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि है, दोनों ओर विशाल सेनाएं खड़ी थीं। शंखनाद और भेड़ियों का भयानक शब्द हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण पांडु पुत्र अर्जुन के श्वेताश्व युक्त रथ के सारथी बने हुए थे। अर्जुन अंदर से बहुत ही व्याकुल हैं। वे प्रभु श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर खड़े हैं और उनसे याचना कर रहे हैं, हे कृष्ण, कृपा करके मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कीजिए, ताकि मैं देख सकूं कि अधर्म का पक्ष लेकर युद्ध करने कौन कौन पधारा है और मुझे किनके साथ युद्ध करना है। अर्जुन के अनुरोध को देखते ही श्री कृष्ण रथ को भीष्म और द्रोण के समक्ष खड़ा करते हुए अर्जुन से कहते हैं,
1: पार्थ, देखो, कुरुवंश के इस महान जम्मग घट को देखो।
0: अर्जुन अपने सामने अपने आदरणीय संबंधियों को देखकर कांपने लगते हैं और गांडेय धनुष उनके हाथ से छूट जाता है। वे बोल पड़ते हैं, हे कृष्ण, रणभूमि में अपने ही भाइयों पितामह भीष्म और परम पूज्य गुरु द्रोण को

0: शस्त्र ताने खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है और शरीर कांप रहा है।
1: सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते।
0: और श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही गंभीरता पूर्वक देखते हैं और उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं।
1: पार्थ, इस धर्म युद्ध के मुहाने पर खड़े होकर तुम यह कैसी दुर्बलता दिखा रहे हो?
0: श्री कृष्ण के समझाने पर भी अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आता है। उनके आंखों में आंसू भरे हुए हैं और अश्रु पूर्ण नेत्रों से वे कहते हैं, हे वासुदेव, अपने ही स्वजनों को मारकर मुझे यदि तीनों लोकों का राज भी मिले तो मेरे किस काम का? अपनों के रक्त से सने भोगों को भोगने से अच्छा तो मैं संन्यास लेकर जीवन बिताना समझूंगा। मैं यह युद्ध कदापि नहीं करूंगा वासुदेव, कदापि नहीं करूंगा।
1: हे अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में तुझे यह अज्ञान और कायरता कहां से घेर बैठी? यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है और न ही तुझे यश देने वाला है। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो।
0: अर्जुन शोकाकुल होकर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं और श्री कृष्ण उन्हें परम ज्ञान की ओर ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को स्वजनों के मोह और शोक से व्याकुल देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन करने का निर्णय ले लिया है। अर्जुन के अज्ञान को दूर करने और उन्हें धर्म पथ पर अग्रसर करने के लिए श्री कृष्ण ने आत्मा की सनातन अजर अमरता और निष्काम कर्मयोग का अमर संदेश देना प्रारंभ किया। कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध की दुंदुभी के बीच समय मानो ठहर सा गया था। अर्जुन रथ पर शोकाकुल बैठे थे और श्री कृष्ण परम ज्ञान की ज्योति जला रहे थे। श्री कृष्ण ने ओजस्वी और बहुत ही शांत स्वर में कहते हैं,
1: हे अर्जुन, तुम अज्ञान वश उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य ही नहीं है। जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे न तो जीवित मनुष्यों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए।
0: अर्जुन बहुत दुखी हैं। वे कहते हैं, हे केशव, सामने मेरे पूज्य पितामह और गुरुजन खड़े हैं। यदि मेरे बाणों से उनका शरीर शांत हो गया तो क्या उनका अस्तित्व सदा के लिए समाप्त नहीं हो जाएगा? इस पाप का भागी मैं कैसे ना बनूंगा?
1: पार्थ, यह तुम्हारा भ्रम है। न तो ऐसा कोई समय था जब मैं, तुम या ये समस्त राजा नहीं थे और न ही ऐसा कोई समय होगा जब हम नहीं रहेंगे। शरीर नश्वर है किंतु इसके भीतर व्याप्त आत्मा अजर अमर और अविनाशी है।
0: श्री कृष्ण ब्रह्म ज्ञान देते हैं,
1: नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हे अर्जुन, इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर प्राप्त करती है। फिर शोक किस बात का?
0: हे वासुदेव, यदि आत्मा अमर है तो फिर इस युद्ध के जय पराजय, पाप पुण्य और परिणामों का उत्तरदायी कौन होगा?
1: कर्मण्येवाधिकारस्ते।

0: वाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हे पार्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फल की इच्छा रख कर किया गया कर्म हे मनुष्य को बंधन में बांधता है। तुम जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। कर्म फल की चिंता छोड़कर जब तुम अपने कर्तव्य का पालन करोगे, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। उठो अर्जुन, अपने धर्म के लिए युद्ध करो, आगे बढ़ो।
1: आत्मा की अमरता और निष्काम कर्म का ज्ञान देने के पश्चात श्री कृष्ण अर्जुन की मना स्थिति को समझ चुके थे। जब अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठा कि संसार के द्वंद्वों से विचलित हुए बिना कर्तव्य का पालन कैसे किया जाए, श्री कृष्ण ने उन्हें स्थित प्रज्ञ का लक्षण समझाते हुए समत्व बुद्धि धारण करने का उपदेश दिया। और कहां पर दिया? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, जहां कोलाहल था। श्री कृष्ण के ओजस्वी स्वर के सामने शांत प्रतीत हो रहा था। अर्जुन एकाग्र चित्र होकर वासुदेव के मुख की ओर देख रहे थे। जिज्ञासा और नम्रता से अर्जुन पूछने लगे, हे जनार्दन, आपने निष्काम कर्म की बात कही, किंतु व्यवहारिक जीवन में सुख दुख और राग द्वेष मनुष्य को विचलित कर देते हैं। प्रभु, विचलित कर देते हैं। जो मनुष्य हर परिस्थिति में शांत रहता है, उसे स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के लक्षण क्या हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है?
0: हे पार्थ, जब मनुष्य अपने मन में उठने वाली समस्त सांसारिक कामनाओं का त्याग कर देता है और केवल अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है।
1: और इसके साथ ही श्री कृष्ण गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश देते हुए कहते हैं,
0: दुखेश्व द्विग्न मना सुखेशु वित गतस्पृह वितराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते। जो दुखों की प्राप्ति होने पर मन में व्याकुल नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जिसकी कोई लालसा नहीं रहती, और जो राग अर्थात आसक्ति भय और क्रोध से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है।
1: हे केशव, परंतु मनुष्य की इंद्रियां तो इतनी चंचल हैं कि वे बलपूर्वक मन को हर लेती हैं, इन पर विजय कैसे प्राप्त की जाए?
0: हे धनंजय, जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, वैसे ही जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपने वश में कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने से आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से काम और काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नाश से मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है।
1: अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण पुनः दृढ़तापूर्वक कहते हैं,
0: इसलिए पार्थ, समत्व बुद्धि ही असली योग है। तुम अपनी इंद्रियों को वश में करो, लाभ हानि की चिंता से परे हटो और समभाव से युक्त होकर युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य का पालन करो।

0: कर्म योग और समत्व बुद्धि का गूढ़ ज्ञान देने के उपरांत भी अर्जुन के मन में अभी भी अपने कर्माधिकार को लेकर संशय शेष था। उनके इसी भय और हिचकिचाहट को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने अलौकिक विश्व रूप के दर्शन कराए और समस्त बंधनों से मुक्ति देने वाला शरणगति का अंतिम महा उपदेश दिया। अब सोचिए, कुरुक्षेत्र की वह भूमि और श्री कृष्ण का सौम्य रूप अचानक अत्यंत तेजोमय होने लगता है। समय पूरी तरह ठहर जाता है और संपूर्ण आकाश दिव्य प्रकाश से भर जाता है और श्री कृष्ण को इस ब्रह्मांडीय रूप और इनके स्वरूप को देखकर श्री कृष्ण फिर अपने पार्थ अर्जुन से कहते हैं,
1: पार्थ, तुम कहते

0: हो कि तुम इन स्वजनों का वध नहीं करोगे। सत्य तो यह है कि काल रूप होकर मैं इन सभी अधर्मियों का संहार पहले ही कर चुका हूँ। भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन, ये सब मेरी काल अग्नि में भस्म हो चुके हैं। तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो, निमित्त मात्र।
1: श्री कृष्ण अर्जुन को दीप दृष्टि प्रदान करते हैं। अर्जुन के सामने भगवान का अनंत विश्व रूप प्रकट होता है, जिसमें सहस्त्रों, सूर्य, समस्त नक्षत्र, देव, दानव और काल के विकराल मुख में समाते योद्धा दिखाई देते हैं। अर्जुन यह स्वरूप देखकर भय और विस्मय से कांपने लगता है। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। वह विनती करता है, हे देवाधिदेव, हे जगन विनाश, आपके इस कोटि सूर्य के सामने तेजस्वी और भय उत्पन्न करने वाले रूप को देखकर मैं दिशाहीन हो गया हूँ। कृपा करके शांत हो जाइए और मुझे अपने सौम्य रूप का दर्शन कराइए। मुझे बताइए कि जीव के लिए परम कल्याण का मार्ग क्या है। श्री कृष्ण पुनः अपने द्विभुज सौम्य रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं,
0: हे धनंजय, इस विश्व रूप को देखना अत्यंत दुर्लभ है। जो मनुष्य केवल मेरे प्रति अनन्य भक्ति रखता है, वही मुझे वास्तविक रूप में जान सकता है।
1: और इसी के साथ श्री कृष्ण गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश भी देते हैं।
0: सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, अपने सारे कर्मों, धर्मों, संशयों और आश्रयों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें समस्त पापों, संतापों और बंधनों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो, शोक मत करो।
1: भगवान कृष्ण के अंतिम उपदेश को सुनने के साथ अर्जुन परम शांति का अनुभव करता है और फिर गौरवान्वित होकर गांडीव उठाकर खड़ा हो जाता है और बहुत ही गर्व के साथ एक योद्धा की तरह कहता है, हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया। आपकी कृपा से मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। अब मेरा संशय दूर हो चुका है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और फिर इस प्रतिज्ञा के साथ ही कुरुक्षेत्र का भीषण युद्ध समाप्त हुआ। धर्म की विजय हुई। पांडव विजयी तो हुए, किंतु उनके मस्तक पर विजय का अहंकार भी पनपने लगा। इस अहंकार को छिन्न भिन्न करने और युद्ध के परम सत्य को प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण पांडवों को खाटू स्थित वीर बर्बरिक के कटे हुए मस्तक के समक्ष ले गए, जिसने अपनी अमोघ दृष्टि से पूरा युद्ध देखा था। वहां जाकर युधिष्ठिर के मन में जो गर्व की भावना थी, जो घमंड की भावना थी, वह बहुत ही मिश्रित भाव से वे हाथ जोड़ते हुए बर्बरिक के सामने कहते हैं,
0: हे वीर बर्बरिक, तुमने एक ऊंचे टीले से अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा कुरुक्षेत्र का पूरा महाभारत युद्ध देखा है। पांडवों में इस बात की चर्चा है कि इस भीषण संग्राम में सबसे बड़ा योद्धा कौन था। कृपा करके बताओ कि यह युद्ध किसने जीता और इस महान विजय का वास्तविक श्रेय किसे जाता है।
1: हे धर्मराज, क्षमा करें, परंतु यदि आप सत्य सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे रणभूमि में ना तो अर्जुन का गांडी बाण चलाता दिखा, ना भीमसेन की गदा प्रहार करती दिखी, और ना ही किसी अन्य योद्धा का पराक्रम दिखा।
0: यह तुम क्या कह रहे हो बर्बरिक? तो फिर युद्ध में क्या क्या घटित हो रहा था?
1: श्री कृष्ण की ओर देखकर अपने

0: नेत्रों में आंसू भरकर बरबरीक कहते हैं, हे पांडवगण, संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में मुझे केवल एक ही सत्य दिखाई दे रहा था, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। महाकाल बनकर चारों ओर घूम रहा था, वही अधर्मियों और कौरव सेना का संहार कर रहे थे और वही पांडव सेना के ढाल बनकर सबकी रक्षा कर रहे थे। फिर बर्बरीक आगे कहते हैं, रणभूमि में बहने वाली रक्त की धारा भी उन्हीं का स्वरूप थी और प्राण हरने वाले भी स्वयं वासुदेव ही थे। पांडव तो केवल एक माध्यम मात्र थे। युद्ध की रचना से लेकर विजय के अंतिम क्षण तक सब कुछ केवल कृष्ण और केवल कृष्ण ही कर रहे थे। बर्बरीक की बात सुनकर युधिष्ठिर का अहंकार समाप्त हो जाता है। वे बहुत लज्जित हो जाते हैं और अपनी लज्जा पर पश्चाताप करते हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ते हैं।
1: हे वासुदेव, हमें क्षमा करें। बर्बरीक ने सत्य ही कहा है। सारा जगत, सारा कर्म और यह विजय सब आपकी ही लीला है, आपकी ही लीला है प्रभु।
0: पांडवों का अहंकार चूर चूर हो जाता है और वे समझ जाते हैं कि सृष्टि का हर कार्य केवल परमात्मा श्री कृष्ण की ही कृपा और प्रेरणा से संपन्न होता है।

0: प्रिय श्रोतागण, आपको यह कहानी कैसी लगी आप जरूर हमें मेल करके बताइएगा। तो आज की कहानी का केंद्रीय संदेश यह है कि जीवन के संघर्षों में केवल बाहरी शक्ति ही निर्णायक भूमिका नहीं निभाती, सही दृष्टि, विवेक, नीति और धर्म के मार्गदर्शन की भूमिका उसमें कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। महाभारत में श्री कृष्ण ने शस्त्र ना उठाकर भी धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने अर्जुन के मोह और भ्रम को दूर किया और उन्हें उनके कर्तव्य और धर्म का बोध कराया। श्री कृष्ण का गीता उपदेश हमें सिखाता है कि मनुष्य को परिस्थितियों से घबराकर अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। उसे अपने कर्म को ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए और परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान कर्म को कमजोर नहीं करना चाहिए। चाहे वह विद्यार्थी का जीवन हो, शिक्षक का कर्तव्य हो, परिवार की जिम्मेदारी हो या राष्ट्र और समाज के प्रति अपना दायित्व। तो अब हमारा समय आ गया है मुहावरे का। तो इस बार के जो मुहावरे हैं वो भगवान कृष्ण से ही जुड़े हुए हैं। पहला मुहावरा है शंखनाद करना, दूसरा है गांडीव उठाना। फिर से सुन लीजिए, शंखनाद करना और गांडीव उठाना। इस पर आप विचार विमर्श कीजिएगा और अगले कार्यक्रम में हम इसका अर्थ आपको बताएंगे। पिछली बार जो आपसे मुहावरे पूछे गए थे वे भगवान शिव जी पर थे और पहला मुहावरा था विष पीना या नीलकंठ होना। इसका अर्थ गुरु विश्वा जो हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं वे बताएंगे।
1: जी हाँ प्रोफेसर जी, इसका अर्थ है संकट या अपमान को चुपचाप सह लेना। अगर वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे तो ऐसा होगा, समुद्र मंथन के दौरान शिव जी ने हलाहल विष पीकर संसार की रक्षा की।
0: बहुत बढ़िया। और जो अगला मुहावरा है वह है तीसरी आंख खुलना।
1: जी हाँ, इसका अर्थ है अत्यधिक क्रोध आना या सर्वनाश का कारण बनना। और वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे तो ऐसा होगा, तुम शांत रहकर ही बात सुलझा लो, अगर पिताजी की तीसरी आँख खुल गई तो घर में कोई नहीं बचेगा। श्रोताओं, इसे संबंधित एक छोटी सी कथा है, कृपया इसका रसा स्वादन कीजिए।
0: जी।
1: एक दिन रोहन और उसके छोटे भाई मोहन में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों ने गुस्से में घर का सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। तभी उसकी बड़ी बहन ने उन्हें समझाते हुए कहा, तुम दोनों शांत रहकर ही बात सुलझा लो,

0: अगर पिताजी की तीसरी आंख खुल गई तो घर में कोई नहीं बचेगा। दोनों भाई डर कर चुप हो गए। थोड़ी देर बाद पिताजी आए और उन्होंने दोनों को शांतिपूर्वक समझाया। रोहन और मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने एक दूसरे से माफ़ी भी मांग ली।
1: आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर भेजें। देखिए गुरु बिस्वा ने मुहावरे पर कितनी अच्छी कहानी लिखी है जो अभी अभी आपने सुनी है, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: धन्यवाद।
1: और प्रिय श्रोतागण, आप भी अपने जीवन में रोजाना मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं, आप भी गुरु बिस्वा की तरह छोटी छोटी कहानी लिख सकते हैं, अपने बच्चों को सुना सकते हैं और अपने मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं, आपको बहुत ही रचनात्मक खुशी मिलेगी। तो प्रिय श्रोतागण, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमें केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनने और उत्सव मनाने का अवसर नहीं देती, बल्कि यह हमें अपने जीवन के कुरुक्षेत्र को पहचानने का अवसर भी देती है। हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब हम अर्जुन की तरह दुविधा में पड़ जाते हैं, क्या सही है और क्या गलत, किस मार्ग पर चलें, अपने कर्तव्य को कैसे निभाएं और कठिन परिस्थितियों में निर्णय कैसे लें। शायद ऐसे ही किसी क्षण में हमें भी अपने जीवन के किसी श्री कृष्ण की आवश्यकता होती है, एक ऐसे गुरु, माता पिता, शिक्षक, मित्र या मार्गदर्शक की जो हमें सही रास्ता दिखा सके। तो आज अनकही एक कहानी आपको आमंत्रित करता है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने कठिन समय में आपको सही मार्ग दिखाया? क्या किसी गुरु के एक वाक्य ने आपके जीवन की दिशा बदल दी? क्या आपने कभी श्रीमद् भागवत गीता के किसी संदेश को अपने जीवन में अनुभव किया है? अपनी ऐसी अनकही कहानी हमें लिखकर भेजिए जो श्री कृष्ण, गीता, गुरु, कर्तव्य, धर्म, जीवन संघर्ष या सही मार्गदर्शन से जुड़ी हो। आपकी चुनी हुई कहानियाँ हमारे रेडियो कार्यक्रम में सुनाई जाएंगी और आगे चलकर एक पुस्तक का हिस्सा भी बनेगी। इस पावन जन्माष्टमी पर आइए हम संकल्प लें कि श्री कृष्ण को अपने कर्म, अपने विचार और अपने आचरण में स्थान देंगे। अपने कर्म को ईमानदारी से करेंगे, कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखेंगे और धर्म तथा सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होंगे। अपनी रचनाएं हमें professorrasekhar@gmail.com पर भेज सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए, सुनते रहिए, लिखते रहिए और अपनी सोच को स्वर दीजिए, क्योंकि कौन जानता है, आपकी एक छोटी सी कहानी किसी दूसरे के जीवन के कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के एक संदेश की तरह मार्गदर्शन का प्रकाश बन जाए। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।
0: प्रोफेसर राज जी, इन महत्वपूर्ण सूचनाओं और अमृत तुल्य विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, कहा गया है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्य वशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणैः। अर्थात कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों द्वारा विवश होकर सभी प्राणी कर्म करते हैं। श्रोताओं, जीवन में कर्म से बचना संभव नहीं, इसलिए सही कर्म का चुनाव करना अधिक महत्वपूर्ण है। कर्म को केवल नौकरी न मानकर कर्तव्य और सभ्य समाज निर्माण का माध्यम समझना चाहिए। परिणाम हमारे पूर्ण नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन प्रयास और कर्तव्य हमारे हाथ में होते हैं। श्रेष्ठ कर्म वह है जिसमें केवल स्वार्थ नहीं बल्कि दूसरों का हित भी जुड़ा हो। प्रिय श्रोताओं, अब हम अपने कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। अब विश्वानंद और प्रोफेसर राजशेखर को आजा दीजिए। अगले सप्ताह फिर एक ऐसी ही दिलचस्प व शिक्षाप्रद कथा लेकर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। आप सभी लोगों ने हमें ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए कोटिशा धन्यवाद और नमस्कार।

बुधवार 2 सितंबर 2026 की सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मॉरिशस को अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट यानी अगवा के तहत अमरीकी बाजार में मिलने वाली तरजीही पहुंच अब 31 दिसंबर 2028 तक जारी रहेगी। इससे पहले इस व्यवस्था को इस साल की शुरुआत में 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया था। पिछली 8 अगस्त को अमरीकी सेनेट की मंजूरी के बाद अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने भी कल इस विधेयक को भारी बहुमत से मंजूरी दी। लंदन में प्रधानमंत्री बदलने के बावजूद शागोस द्वीप समूह पर ब्रिटेन का रुख मॉरिशस के साथ समझौते को लेकर बरकरार है। कल संसदीय अवकाश के बाद संसद के पहले प्रश्नकाल के दौरान सरकार ने इस मुद्दे पर सवाल किए। मुलाकात इस बुलेटिन में मॉरिशस के दो ऐसे युवाओं से जिनकी उपलब्धियां बेहद खास हैं, लक्ष्य बुदादू और उरुषा जीतन को अमरीकी कंपनी कोलोसल लेबोरेटोरीज एंड बायोसाइंसेस की ओर से छात्रवृत्ति मिली है। ये कंपनी डोडो को फिर से जीवित करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक शोध कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद 8वें दिन भी राहत और लापता लोगों की तलाश का अभियान जारी है, जबकि आपदा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नेपाल पुलिस के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 1093 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 4500 लोग अब भी लापता हैं। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। अमेरिका ने अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट यानी अगवा को 2 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। पिछले 25 वर्षों से लागू ये व्यापार कार्यक्रम मॉरिशस समेत उप सहारा अफ्रीका के कई देशों को अमरीकी बाजार में तरजीही पहुंच प्रदान करता है। पिछली 8 अगस्त को अमरीकी सेनेट की मंजूरी के बाद अमरीकी

0: प्रतिनिधि सभा ने भी कल इस विधेयक को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी। अगवा की अवधि बढ़ाने के लिए मॉरिशस ने इस साल मई और जुलाई में दो बार अपनी दलीलें और प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखे थे। ये विस्तार ऐसे समय में हुआ है जब मॉरिशस 6 से 9 दिसंबर तक होने वाले 18वें अमेरिका अफ्रीका बिजनेस समिट की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अगवा का दो साल का विस्तार मॉरिशस के लिए बेहद महत्वपूर्ण समय पर आया है। लंदन में प्रधानमंत्री बदलने के बावजूद शागोस द्वीप समूह के मुद्दे पर ब्रिटेन की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। इसका स्पष्ट संकेत कल वेस्टमिंस्टर से मिला, जहां संसदीय अवकाश के बाद संसद के पहले प्रश्नकाल के दौरान सरकार से इस मुद्दे पर सवाल किए गए। ब्रिटिश सरकार ने पुष्टि की कि मॉरिशस के साथ हुआ समझौता अब भी उसके एजेंडे में शामिल हैं और इस समझौते के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान मौजूदा सरकारी बजट में अब भी मौजूद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री सकर स्टामर ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। इस निर्वाचन क्षेत्र में उन्हें बदलने के लिए जल्द ही एक उपचुनाव होगा, जहां वे 11 वर्षों से चुने गए थे और जिसे लेबर पार्टी के लिए सुरक्षित माना जाता है। खबरों का आगे बढ़ाते हैं। आज शाम मुलाकात हम करते हैं मॉरिशस के दो ऐसे युवाओं से जिनकी उपलब्धियां बेहद खास हैं, लक्ष्य बुदादू और उरुषा जितन को अमरीकी कंपनी कॉलोसल लैबोरेटोरीज एंड बायोसाइंसेज की ओर से छात्रवृत्ति मिली है। ये कंपनी डोडो को फिर से जीवित करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक शोध कर रही है। दोनों छात्र इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत जीनोम इंजीनियरिंग और संरक्षण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल जैसे क्षेत्रों में काम करेंगे। इस तरह मॉरिशस के इन दो युवा प्रतिभाओं को हाल के वर्षों की सबसे क्रांतिकारी वैज्ञानिक परियोजनाओं में से एक में योगदान देने का अवसर मिला है। डोडो को फिर से जीवित करने की कोशिश में अब मॉरिशस की भी अपनी वैज्ञानिक छाप दर्ज हो रही है।
1: ये दुनिया के वैज्ञानिक जगत की सबसे साहसिक परियोजनाओं में से एक है, डोडो को फिर से जीवित करना। मॉरिशस का ये प्रतिष्ठित पक्षी जेनेटिक्स की मदद से दोबारा अस्तित्व में आ सकता है और इस रोमांचक अभियान के केंद्र में मॉरिशस के दो युवा छात्र हैं। उन्हें अमरीकी कंपनी कोलोसल लैबोरेटोरीज एंड बायोसाइंस से शोध के लिए छात्रवृत्ति मिली है।
2: We welcome Arusha and Lakshay.
1: हम उरुषा और लक्ष्य को अपनी टीम में स्वागत करते हैं। उरुषा हमारे कंसर्वेशन टीम के साथ काम करेगी, जबकि लक्ष्य जेनेटिक मॉडिफिकेशन टीम के साथ काम करेगा। शोधकर्ताओं की टीम ने डेनमार्क के एक संग्रहालय में रखी दो की खोपड़ी से निकाले गए डीएनए का इस्तेमाल करके दो के जीनोम को पहले ही अनुक्रमित और पुनर्निर्मित कर लिया है। अब वे डीएनए के एक एक हिस्से को फिर से तैयार करके दो की विशेषताओं को दोबारा विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। लक्ष्य बुदादू कहते हैं,
3: Nous vous prenons un bout de l'ADN du dodo qui nous pour injecter dans ma cellule. Sa cellule là nous pour réinjecter lui dans le Nicobo pigeon. Et là quand ça pigeon là il pour connaître 19, nous pour gagner une nouvelle génération. Sa nouvelle génération là il pour avoir un changement de sa petite boule ADN qui nous a ajouté là. Là, ça disait là, nous a fait les clous, nous pour gagner un nouveau pigeon. Sa pigeon là nous a grandi. Et là, au sa pigeon là, nous pourrait faire même affaire que nous pour injecter un petit bout de l'ADN encore là-dedans. Et petit à petit, de génération en génération, nous pourrait ici arriver à un affaire qui est closely related à nous deux qui nous tiennent.
4: Sa fois qu'il nous peut prendre un petit échantillon de l'ADN, il peut coûter pour une petite caractéristique spécifique. Donc, il y a un bout de l'ADN qui peut plus pour se larbec, il y a un pour se liger, il y a un pour se grossir.
1: ये छात्रवृत्ति इस पक्षी को उसकी मातृभूमि में वापस लाने का रास्ता भी तैयार कर रही है। वहीं उरुषा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विशेषज्ञता हासिल कर रही है, संरक्षण के पहलू पर ध्यान केंद्रित करेगी। उरुषा जीतन कहती है, इन जानवरों पर कैमरा डेटा बिठाए गए हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से डेटा का विश्लेषण करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि अलग वातावरणीय स्थितियों में एक जानवर का बर्ताव कैसा है। जैसे एक दो की आवाज़ को हम ट्रैक कर सकते हैं। इस ध्वनि से हम

0: में पता चल जाता है कि ये जानवर ठीक है या नहीं। डोडो की ध्वनि नहीं है हमारे पास, पर डोडो के आसपास मौजूद अन्य जानवरों पक्षियों के माध्यम से हमें डोडो तक जाने का रास्ता मिल सकता है। इन दोनों छात्रवृत्तियों को मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और कोलोसाल कंपनी के बीच हुए एक समझौते के कारण संभव बनाया जा सका है। नंदिनी गुली गोपाला कहती हैं,
1: कोलोसाल और आईबीएल ने साइन किया एक कोलैबोरेशन।
0: कोलोसाल और आईबीएल ने सहयोग और आदान प्रदान के इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा उद्देश्य है डोडो परियोजना का हिस्सा बनना। अब फेलोशिप के माध्यम से ये परियोजना सफल हो पा रही है। इन दोनों युवा मॉरिशियनों को मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के मुख्यालय में आयोजित एक समारोह के दौरान औपचारिक रूप से उनकी शोध छात्रवृत्तियां प्रदान की गई।
2: जैसे कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि लंदन में प्रधानमंत्री बदलने के बावजूद शागोस्की द्वीप समूह के मुद्दे पर ब्रिटेन की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। ब्रिटिश सरकार ने पुष्टि की है कि बदलाव की मॉरिशस के साथ हुआ समझौता अब भी उसके एजेंडे में शामिल है और इस समझौते के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान मौजूदा सरकारी बजट में अब भी मौजूद है। सुनते हैं।
3: संसद का कामकाज फिर से शुरू होते ही मंगलवार 1 सितंबर को शागोस मुद्दे को लेकर नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम की सरकार से सवाल किया गया। फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस से जुड़े सवाल जवाब के दौरान कंजर्वेटिव सांसद डॉक्टर ल्यूक इवांस ने पूछा कि क्या यूके और मॉरिशस के बीच हुए समझौते के तहत भविष्य में होने वाले खर्च के लिए धन की व्यवस्था की गई है। एससीडीओ के पार्लियामेंटरी अंडर सेक्रेटरी उमा कुमारन ने कहा,
4: This is about the long-term safety and national security.
3: ये मामला यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश लोगों की लंबे समय तक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। अड्डे पर लंबे समय तक संचालन संबंधी नियंत्रण और उसकी सुरक्षा बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से है। यूके और मॉरिशस के बीच हुए समझौते का पूरा आधार यही है। इस समझौते में वित्तीय व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इस समझौते के लिए धन फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस और रक्षा मंत्रालय के मौजूदा बजट के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। कंजर्वेटिव सांसद वेंडी मोर्टन ने जब इस समझौते को लेकर अमेरिका के समर्थन के बारे में सवाल किया तो उमा कुमारन ने जवाब दिया, अमेरिकी प्रशासन ने इस समझौते का बार बार समर्थन किया है और जब से अमेरिका ने पहली बार इस समझौते को मंजूरी दी थी तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमने हमेशा साफ कहा है कि समझौते को मंजूरी देने और इसकी पुष्टि करने से पहले अमेरिकी सरकार की सहमति जरूरी है। हम अमेरिका और मॉरिशस के साथ मिलकर आगे का रास्ता तलाशते रहेंगे जो यूके के हित में हो और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करे। अब अगला कदम न्यूयॉर्क में हो सकता है जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर बैठक होगी। नए बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच संभावित मुलाकात से शागस मुद्दे पर बातचीत आगे बढ़ाने और वाशिंगटन की स्थिति को स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है।
2: वॉइस ऑफ हिंदू के सदस्यों ने कल शाम कैट्रबोन में एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया था। उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी जिनमें विदेशी श्रमिकों की स्थिति, ड्रग्स और नेपाल में घातक बाढ़ शामिल रहे। वॉइस ऑफ हिंदू के अध्यक्ष खेत मनोहर को सुनते हैं।
5: नेपाल dans sa situation très très difficile et nous remercier ban pays qui peut aider Népal et mon pensée qui l'île Mauricie, pour donner un petit coup de main, ben, Népalais, Pessibir, il arrive près de 3000 disparus et nous pensons dans nous la prière.
2: और जैसे हम आपको बता रहे थे कि सुर्खियों में नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद 8वें दिन की राहत और लापता लोगों की तलाश का अभियान जारी है जबकि आपदा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नेपाल पुलिस के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 1093 लोगों की जान जा चुकी है जबकि करीब 4500 लोग अब भी लापता हैं। कई जल परियोजनाओं की सुरंगों में राहत कर्मी उन कामगारों को तलाश रहे हैं जो कीचड़ और मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। आपदा की भयावहता को देखते हुए सरकार ने प्रभावित क्षेत्र को 3 महीने के लिए संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। राजधानी काठमांडू में अज्ञात पीड़ितों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया लेकिन इस त्रासदी के बीच मानवीय एकजुटता की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं।

0: है। बिदुर में युवा स्वयं सेवकों ने एक सहायता केंद्र बनाया है जहां प्रभावित परिवार अपने मोबाइल फोन चार्ज कर पा रही हैं और लापता परिजनों की तलाश के दौरान एक दूसरे के संपर्क में बनी हुई हैं। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल रसूवा में बच्चों के चेहरों पर फिर मुस्कान दिखाई दी, वे एक फुटबॉल के आसपास खेलते नजर आए। मलबे और तबाही के बीच ये कुछ पल की बेफिक्री मानो उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी बनकर सामने आई है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर बेहतर तरीके से पूर्वानुमान लगाने के लिए मॉरिशस में एमस्टर यानी मॉरिशस स्ट्रैटेजिक टूल फॉर द असेसमेंट ऑफ रिस्क परियोजना शुरू की गई है। इस उपकरण की मदद से अधिकारी ये पहचान सकेंगे कि देश की कौन सी महत्वपूर्ण बुनियादी संरचनाएं जलवायु और आपदा संबंधी जोखिमों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील है। इससे सरकारी धन और निवेश को सही दिशा में लगाने के साथ साथ देश की आपदा रोधी क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी मस्कैन और नेशनल डिजिटल रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट सेंटर शामिल है। परियोजना को ब्रिटिश हाई कमीशन का भी समर्थन प्राप्त है।
1: बाढ़, तूफान, पानी का उमड़ना, जलवायु खतरों के चलते एम्स्टर परियोजना को लॉन्च किया गया। एम्स्टर परियोजना के कोऑर्डिनेटर तथा यूनिवर्सिटी ऑफ मस्कैन के डॉक्टर जय दुर्गा ने कहा,
2: सैटेलाइट
1: जानकारियों के आधार पर हम इनमें से कुछ डाटा का पता लगा रहे हैं। जलवायु केंद्रों की ओर से ये डाटा प्रोसेस किए गए हैं, जिनके अंतर्गत लंबी अवधि के लिए पूर्व सूचना की जा चुकी है। जलवायु खतरों को कैप्चर किया जा चुका है, अब हम इनका मूल्यांकन करेंगे, वर्तमान एवं मूल ढांचों से संबंधित है। इस औजार की बदौलत महत्वपूर्ण मूल ढांचों की कमजोरी के बारे में जानने का और मार्गों तथा जल नेटवर्क और बिजली लाइनों का पता भी लगाने में मदद मिलेगी। डॉक्टर जय दुर्गा ने आगे बताया, इस परियोजना के तहत ये देखा जा रहा है कि विगत में यानी पिछले 30-40 वर्षों में किस तरह देश जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हुआ, मॉरिशस में किस तरह के प्रकोपों का सामना करना पड़ा, मसलन मिट्टी का कटना जैसे कि माकोंदे सड़क के पास आदि। इन जानकारियों की बदौलत अधिकारीगण निर्धारित कर पाएंगे कि प्राथमिक तरीके से किन मूल ढांचों को सुरक्षित रखना है और किस तरह बेहतर रूप से निवेश दिशा देनी है। डॉक्टर जय दुर्गा ने आगे बताया, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित इलाकों को लेकर चिंतन कर रही है, ये भी देख रही है कि किस तरह के अनुकूल अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज हैं। ये रोडमैप है जिसके अंतर्गत सरकार को प्रस्तावित कर रही है कि कहां पर सही तरीके से निवेश करना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से संचालित परियोजना एम्स्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ मस्कैन और नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैनेजमेंट सेंटर की साझेदारी से चलाई जा रही है। बरतानी उच्चायोग का भी समर्थन प्राप्त है। अनुमान है कि एम्स्टर 2027 के मध्य तक पूरी तरह से कार्यरत हो सकती है।
0: नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के साथ मिलकर भावी दमकल कर्मियों को ड्रग ओवरडोज की स्थिति में प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करने के लिए तैयार कर रही है। इस पहल के तहत 70 से अधिक नए भर्ती हुए दमकल कर्मियों को ओवरडोज के प्रमुख संकेतों की पहचान करने और ऐसी स्थिति में तुरंत उठाए जाने वाले प्राथमिक कदमों के बारे में जानकारी दी गई। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल के लिए इस तरह का ये पहला सहयोग है। आंकड़ों के अनुसार 2024 में मॉरिशस में ओवरडोज के करीब 60 मामले दर्ज किए गए थे। राष्ट्रसभा में क्रियोल मॉरिशियन भाषा के इस्तेमाल और उसकी प्रक्रिया की समीक्षा के लिए गठित सिलेक्ट कमेटी ने इस मुद्दे पर आम जनता से अपने सुझाव और विचार प्रस्तुत करने की अपील की है। लिखित सुझाव, याचिकाएं या ज्ञापन संसदीय कार्रवाई के दौरान क्रियोल मॉरिशियन के इस्तेमाल, इससे जुड़ी प्रक्रियाओं, आधिकारिक कार्यवाही के रिकॉर्ड और संसदीय बहस को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने जैसे विषयों पर दिए जा सकते हैं। अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 22 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। सभी पत्राचार नेशनल असेंबली के क्लर्क के नाम भेजे जाने हैं। मॉरिशस में 300 साल से अधिक पुरानी मॉरिशस एसोसिएशन ऑफ नोटरी ने कल यानी मंगलवार 1 सितंबर को पोर्ट लुइस में अपने पहले आधिकारिक मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश रिहाना मंगली गुलबुल और न्याय मंत्री गाविन तथा

0: अटोर्नी जनरल गविन ग्लोवर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ये उद्घाटन हिंद महासागर क्षेत्र के नोटरी सम्मेलन 2026 के तहत हुआ, जिसका आयोजन मॉरिशस में पहली से 4 सितंबर तक किया जा रहा है। इस सम्मेलन में हिंद महासागर क्षेत्र के विभिन्न देशों और द्वीपों से आए प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा ले रहे हैं। बढ़ते उम्र की आबादी के साथ बुजुर्गों की देखभाल मॉरिशस की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए लगातार महत्वपूर्ण चुनौती बनती जा रही है। इसी दिशा में जीतू अस्पताल में बुजुर्ग मरीजों के लिए तीव्र चिकित्सा देखभाल की नई इकाइयां शुरू की गई हैं। इन नई इकाइयों में जेरियाट्रिक यानी बुजुर्गों के स्वास्थ्य उपचार से जुड़ी सेवाओं को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य बुजुर्ग मरीजों को उनकी विशेष स्वास्थ्य जरूरतों के अनुरूप बेहतर और अधिक समर्पित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। कृषि क्षेत्र में कीटों पर बेहतर नियंत्रण के लिए मॉरिशस ने एक नई टेक्निक अपनाई है। देश में अब एक्सरे इरेडिएटर की सुविधा उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल फलों की मक्खियों को निष्क्रिय यानी बांझ बनाने के लिए किया जाएगा। इस उपकरण का उद्घाटन बुधवार को गेजवी में किया गया। ये अब तक इस्तेमाल की जा रही गामा किरणों पर आधारित प्रणाली की जगह लेगा। ये नई टेक्निक अमरीकी ऊर्जा विभाग और लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटोरी के साथ साझेदारी का परिणाम है। इस टेक्निक के जरिए बांझ नर फलों की मक्खियों को वातावरण में छोड़ा जाएगा, ताकि उनके प्रजनन को कम किया जा सके और इस तरह फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले इन कीटों की संख्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। मॉरिशस अपनी ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री अर्थव्यवस्था के भविष्य को नए सिरे से आकार देने के साथ साथ छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले कारीगर मछुआरों के हितों की रक्षा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी उद्देश्य से एफरीसीज क्षेत्रीय परियोजना के तहत मॉरिशस को करीब 30 मिलियन रुपए की वित्तीय सहायता मिली है। ये परियोजना ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप सदर्न अफ्रीका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की साझेदारी में संचालित की जा रही है। इस पहल के तहत मॉरिशस के करीब 2500 रोड्रिक्स के 1700 मछुआरों को विभिन्न प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य मछली पकड़ने को अधिक टिकाऊ, अधिक लाभदायक और पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार गतिविधि बनाना है, साथ ही स्थानीय मछुआरों की आजीविका को सुरक्षित करना भी है। और इस क्षेत्र में रहते हैं समुद्री संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ अधिक प्रभावी कार्यवाही के लिए मॉरिशस में वेसल मॉनिटोरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम को लागू किया जा रहा है। एल्बियो के फिशरी रिसर्च सेंटर में निगरानी अब दूर से और वास्तविक समय में की जा रही है। इसके जरिए मछली पकड़ने वाले जहाजों की भौगोलिक स्थिति और उनकी पकड़ की निगरानी की जा सकती है। इस डिजिटल बदलाव को तेज करने के लिए संबंधित नियमों में जल्द ही संशोधन किए जाने की उम्मीद है। इसका देश समुद्री गतिविधियों की निगरानी को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आधुनिक बनाना है। अंत में एक सवाल, क्या हो अगर प्रकृति के रंग खुद एक कहानी कहने लगी? पिछले 2 वर्षों से शक्ति कालिकाओं ने मॉरिशस के अलग अलग हिस्सों की यात्रा कर पेड़ों की झाल, पौधों और प्राकृतिक सामग्रियों को तलाशा और उनसे प्राकृतिक रंगों के पिगमेंट तैयार किए। इसी खोज से जन्म हुआ एमुवॉस नामक एक किताब का, जिसमें कला, कविता और प्रकृति का खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। शक्ति कालिकाओं इस किताब का वितरण खुद कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे सबसे पहले पाठकों के साथ सीधे संवाद और इस रचना को साझा करने का महत्व देना चाहते हैं। एमुवॉस का उद्देश्य हमें फिर से सुंदरता की ओर लौटाना है, उस प्रकृति और आसपास की उन चीज़ों की ओर जिन्हें हम अक्सर रोज़मर्रा की भागदौड़ में देखना भूल जाते हैं। ये किताब मानो एक नियंत्रण है, थोड़ा ठहरने, चीज़ों को एक नई नज़र से देखने और अपने आसपास मौजूद सुंदरता को फिर से महसूस करने का।
1: 2 वर्षों तक शक्ति कालिकाओं ने रंगों को निकालने के लिए सामग्री, वस्तुओं, पेड़ों की छाल और पौधों की तलाश में पूरे द्वीप का दौरा किया है। इस्तेमाल की गई हर सामग्री ने एमुवॉस नामक उसकी पुस्तक के पन्नों को संजोने में मदद की है। शक्ति कालिकाओं कहती है, इसकी कल्पना मैं करती रहती हूँ। ये सब सामान कोयला, लोहा, पौधा, इतिहास में कैसे इसका प्रयोग होता है। तब मैं इतिहास की खोज में निकली। मेरी खोज के दौरान मुझे

0: ही पता चला कि मॉरिशस ने खुद अपने लोहे का उत्पादन किया है। शक्ति के पास बहुत से दिलचस्प किस्से हैं। अपनी मुलाकातों और अनुभवों के दौरान उसने कई खोज की है और अपनी इन खोजों से उसने कलाकृतियां तैयार की हैं। शक्ति कालिका कहती है,
1: मैं retrouve une plante qui appelle indigo, c'est une couleur qui blé. Au fait, sa couleur blé là, indigo, vient depuis une plante, depuis ce feuille.
0: पाठक को इसमें कुछ लेख भी मिलेंगे जो एक मार्गदर्शक का काम करते हैं।
1: Couleur qui me trouvait l'eau du territoire, ça veut dire l'eau l'île même. Et à travers sa histoire Maurice, sa grande histoire Maurice là, raconte aussi une histoire tout ça van dimun qui travaille pour que Maurice vienne ça qui nous connaît aujourd'hui.
0: ये पुस्तक स्वयं लेखिका द्वारा वितरित की जा रही है क्योंकि वो सबसे पहले पाठकों के साथ सीधे जुड़ने और अपनी रचना साझा करने को प्राथमिकता देना चाहती है। एमवांस एक ऐसे गीत की तरह है जो हमें सुंदरता की ओर हमारे आसपास मौजूद उन चीजों की ओर वापस ले जाना चाहता है जिन्हें देखने के लिए हम कभी कभी समय निकालना भूल जाते हैं।
2: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिस्र के पूर्वी हिस्से में आज बुधवार सुबह हुए एक भीषण बस हादसे में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई है जबकि 28 अन्य घायल हुए हैं। ये दुर्घटना दक्षिण सिनाई प्रांत में रेड सी के तटीय शहरों दहाब और नुवेबा के बीच सड़क पर हुई। मिस्र और जॉर्डन की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हादसे में मारे गए लोगों में 10 तक जॉर्डन के नागरिक शामिल हो सकते हैं। दुर्घटना के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। ये इलाका दुनिया भर में पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि हादसे के समय बस में कुल कितने लोग सवार थे। मिस्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सभी घायलों को 3 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है। बढ़ते हैं अब मौसम के हाल की ओर गीता सुनारायण के साथ।
3: हमारे इलाके पर हल्की अस्थिर हवाएं चल रही हैं। आज रात बादल घिरे रहेंगे और रहकर बारिश होगी, खासकर पूर्व और ऊंचे इलाकों पर। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 14 से 16 और साहिली इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह बादल घिरे रहेंगे, ऊंचे इलाकों और हवाई ढलानों पर बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 20 से 23 और साहिली इलाकों पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा, दक्षिण पश्चिम में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। कल सुबह समुद्र की स्थिति में सुधार आने लगेगा। दूर समुद्र में और दक्षिण के समुद्र में आज रात न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:17 पर सूरज निकलेगा।

0: तो इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयार में पूरे समाचार डेस्क का और सहयोग देने वाले शिव का भी सहयोग मिला है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हम शुभ समाचारों की ओर।
1: NBC Play, NBC Radio.tv.
0: शुक समाचार सुनिए। जग्गू रोड बेलमा में, जग्गू रोड बेलमा में 65 साल की 65 years old की श्री दिमनदेव मदन, श्री दिमनदेव मदन जिन्हें मनोज मासों के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके बेटे जयप्रकाश मदन के घर बेलमाव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कथकोको की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 2 PM। मोसलमोराफ्री पॉइंट कानूनी में 82 साल के 82 years old के श्री जनेश्वर केदू जिन्हें जोहर के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 1:30 बजे उनके घर पॉइंटो कानूनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुची की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुमोरो 1:30 PM। अब्दुल गजाक स्ट्रीट अपरवेल में 72 साल की 72 years old की श्रीमती जयरानी सौमी पैदाश नाम पोपिया जिन्हें देवी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे विवेक सौमी के घर अपरवेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की शमशान भूमि ली जाएगी।

permission tomorrow at 10 a.m. John Key Road, Gondomask Pavi mein, John Key Road, Gondomask Pavi mein, 61 saal ki, 61 years old ki Shrijit Ramchand, jinhe Prem ke naam se log zyada jante the ki mrityu ho gayi hai, unki arthi kal subah 11:30 baje, unke ghar Gondomask Pavi se utha kar antim sanskar ke liye, Mejin ki shamshan bhoomi le jayi jayegi, permission tomorrow at 11:30 a.m. Angrimosia Lokule mein 72 साल के 72 years old के श्री गुरुदत्त ननका जिन्हें गुरु के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सातना ननका के घर ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM राय रोड रिविया जी पोस्ट में 65 साल के 65 years old के श्री सुदर्शन मोरिमुतु जिन्हें दर्शन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सरोजिनी मोरिमुतु के घर रिविया जुपस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी कमीशन टुमारो एट 2 PM नंबर 33 पोपेनिसी स्ट्रीट बोबासा में 74 साल के 74 years old के श्री देवनारायण जिलाल जिन्हें बाबू के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल शाम 3:30 बजे उनके घर बोबासा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिवैल की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 3 PM Très bon, number 5, Vakwa me, 81 साल के 81 years old के श्री सुरुजलाल मानिक जिन्हें सोना के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल 2:30 बजे उनके घर वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वामा मैल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM जुक्रे रोड नोटरडाम में 92 साल के 92 years old की श्री रूप नारायण सिंह अजोदा जिन्हें किशोर के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके बेटे आचार्य रिजेश अजोदा के घर नोथदाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गुडलैंड्स की शमशान भूमि ली जाएगी कमीशन टुमारो एट 10:30 AM ब्रांच रोड मौलाशो में 77 साल के 77 years old की श्री इंदरजीत तिलक जिन्हें सुब्रानंद के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके बेटे सचिन तिलक के घर मौलाशो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोसलमा लुबीन बेलमाओ की शमशान भूमि ली जाएगी कमीशन टुमारो एट 11 AM नंबर 30 मोसलमा वीओएस फोबाक ब्रांच रोड पुत्रोदो हमलेट में 77 साल के 77 years old के श्री परानंदा नारायणन जिन्हें दासन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल 12 बजे उनकी पत्नी श्रीमती राजमणि नारायणन के घर पुत्रोदो हमलेट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए Caro Martel Espérance Sapiton ki shamshan bhoomi le jayegi commission tomorrow at noon. Shok mein dube in sabhi parivaron ke prati mari gehri samvedna hai.

शाम के ठीक 6:32 हुए हैं और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन। आज सितंबर 2 की शाम है, बुधवार की शाम, और आप सबका स्वागत है नई सोच प्रोग्राम में। आज मैं किरण आपका साथ दे रही हूँ। आशा करते हैं आज का दिन आपका बहुत अच्छे से कटा हो। जैसा भी आपका दिन गया हो, आज की शाम आपका बेहतरीन होना चाहिए। नई सोच इस प्रोग्राम में हम आपका साथ देंगे और

कहते हैं एक सोच और हजार नए रास्ते। ये है सनमपुरी की आवाज में तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, पुराना गाना लेकिन नई आवाज़।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: शाम के 6:43 हुए हैं और हमारा साथ रहेगा रात के 9 बजे तक रेजो मनोरंजन पर. और आप इस वक्त ड्राइव कर रहे हो या फिर थके मांदे घर पर आराम कर रहे हो या कुछ आप में से इस वक्त काम शुरू कर रहे हो तो हम आपका साथ दे रहे हैं और इस बात का हम पूरा ख्याल रखेंगे कि आपका पूरा मनोरंजन हो, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है रेजो मनोरंजन. और फिर हम इस समय जिन विचारों पर, जिन ख्यालों पर गौर कर रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि सोच हैं. कभी सोचा है आपने? अगर नहीं तो सोचिए.

शाम ढलने का समय आ चुका है और सूरज भी ढलने को आया, चांद निकलने का समय है, लेकिन तेज़ हवा के साथ साथ थम थम कर रिमझिम बारिश होने के आसार हैं। बहुत जगहों पर रिमझिम बारिश हो भी रही है और सर्द मौसम का एहसास हो रहा है। ऐसे में हम आपका साथ दे रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, आपका प्रोग्राम नई सोच। कहते हैं कि सोच ही वो ऐसी बात है जिससे कि हम दुनिया बदल सकते हैं। लकीरों से हटकर चलने का हुनर, यही तो है नई सोच का असर।

इस समय शाम के ठीक 7 बजे हैं और समय हुआ है हमारे अगले प्रोग्राम का और वो है दिलों की आवाज़ जहां लफ्ज़ों को आवाज़ मिलती है और दिलों को सुकून। स्वागत है आपका दिलों की आवाज़ में। इस प्रोग्राम में हम उन सभी गानों को चलाएंगे जो गाने आपके दिल के करीब हैं, जिन गानों से आपको अपनों की याद आती है, दिल की बातों की याद आती है। पहला गाना फिल्म शिवाय से लिया गया, दरख्वास्त आप सभी के लिए।

शाम की ये जो वेला होती है वह आराम की एक आराम का एक समय होता है, जहाँ पर आप अपने दुखों को भूलकर, अपने दिन भर गुजरे संघर्षों को भूलकर आराम के दो पल जीते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसे ख्यालों में खो जाइए जहाँ पर दिलों की आवाज़ सुनाई दे। कहते हैं आपके आस पड़ोस में जो शोरगुल हैं वो सुनने के लिए आपको जतन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। कितना भी जतन करें ये शोरगुल कानों में आ ही जाते हैं, लेकिन आपके दिल के अंदर जो आवाज़ है, जो हमेशा आपसे बात करना चाहती है, उसे सुनने का कम से कम एक पल आपके पास होना चाहिए, और ये वही पल है। चलिए अगला गाना आपके नाम प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म से लिया गया, प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना।

हर धड़कन की एक कहानी होती है। आज सुनेंगे कुछ ऐसी ही कहानियां। मैं हूं आपके साथ दिलों की आवाज में, आपका अपना प्रोग्राम। अगला गाना किशोर कुमार की आवाज में, आने वाला पल जाने वाला है।

कुछ बातें कहनी नहीं पड़ती, महसूस की जाती हैं, और यही बातें महसूस करेंगे आप दिलों की आवाज़ प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम इस समय चल रहा है रेडियो मनोरंजन पर, और मैं किरण आपका साथ दे रही हूँ। ये सफ़र चलेगा रात्रि के 9 बजे तक। अगला गाना कभी तो नज़र मिलाओ कभी तो करीब आओ, एक समय में बहुत मशहूर हुआ था ये गाना अदनान सामी की आवाज़ में। तो चलिए एक साथ इसका आनंद उठाते हैं।

आपके दिलों की बात अब होगी आपके साथ। ये है दिलों की आवाज प्रोग्राम। चाहे इस वक्त आप ड्राइव कर रहे हो, चाहे इस वक्त खाना बना रहे हो, या फिर कोई फैसला लेने के लिए बैठे हो। फैसला चाहे बड़े से बड़े क्यों ना हो, या फिर छोटी से छोटी बात क्यों ना हो, आप अपने दिल की सुने। चाहे वो फैसला कल क्या पहनना है, कल खाने पे क्या बनाना है, कल ब्रेकफास्ट के लिए क्या चुनना है,

आप अपने दिल की सुने, क्योंकि कहते हैं जो दिल कहता है वही फैसला सही होता है। और कहते हैं कि दर्द हो या प्यार, हर जज्बात की होती है एक आवाज। रिश्तों की डोर, यादों की खुशबू, आपको सभी कुछ यहाँ पर मिलने वाला है दिलों की आवाज़ प्रोग्राम में। अगला जो गाना चलेगा किशोर कुमार

आज भी इस गाने को जब आप सुनेंगे तो उन यादों में खो जाएंगे जो कभी आपके ज़िंदगी के सबसे अहम लम्हे हुआ करते थे। तो चलिए एक साथ किशोर की आवाज़ में, कभी होती नहीं है हार, वो है प्यार।

चुप्पी भी कभी कभी बहुत कुछ कह जाती है और आज उसी चुप्पी को इस प्रोग्राम में हम आवाज़ दे रहे हैं। अभी आपने अदनान सामी की आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना जो आप सालों से सुनते आ रहे हैं और इस वक्त आप अगर खाने के लिए बैठे हो तो शुभ आहार। हम आशा करते हैं कि इस प्रोग्राम में आपका पूरा मनोरंजन हो रहा है। हमारा साथ अभी से और 9 बजे तक रहेगा और अगला जो गाना चलेगा वह है फिल्म त्रिदेव से लिया गया, गली गली में फिरता है तू क्यों बनके आवारा, तू क्यों बनके बन जा रहा। और इस फिल्म के लगभग सभी गानों को फिर से बनाया जा रहा है, इसको फिर से संगीत दिया गया, फिर से आवाज़ दी गई और ये उस समय की मूवी है, उस समय के गाने हैं जब खूबसूरती की परिभाषा कुछ और हुआ करती थी, ब्यूटी का डेफिनेशन कुछ अलग हुआ करता था। आज इन सभी बातों को फिर से नए अंदाज में प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। और चलिए हम ओरिजिनल का आज लुत्फ़ उठाते हैं, गली गली में फिरता है।

रात्रि के 7:53 हुए हैं और इस समय आप बहुत प्यार के साथ हमारा साथ दे रहे हैं, ये जानकर हमें बेहद खुशी हो रही है। हमें इस समय सुन रहे हैं स्वेनाल और आप अपने भाई श्रवण, भाभी कृति, अभिनव, कियान, अनव्या और तिलक परिवार के लिए अगला गाना मांग करते हैं। और साथ में हैं इस वक्त जो हमें सुन रहे हैं गुलशन जी, और आप अगला गीत अपनी प्यारी एंजल आयशा, अपनी मम्मी प्रभा, बहन दीक्षिका और भोला परिवार के नाम करना चाहते हैं। और फिर क्यूबिप से हमें सुन रही हैं उमा जी, जो कि ब्लू ओशन सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन जो कि क्यूबिप से हैं, उनके नाम अगला गीत करना चाहती हैं। वे सब अभी औंसलागे में हैं और ख़ास तौर पर आप मिस फिरोज़ा के नाम और अपनी पूरी टीम के नाम अगला गीत नाम करवाना चाहती हैं। और फिर चांदनी भी हमें सुन रही हैं और उन्हें भी प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और किशन कन्हैया फिल्म से गीत सुनने की इच्छा रखते हैं, पोम्पलेमुस से सचिन। तो आप सभी को आपके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला गाना फिल्म किशन कन्हैया ही से लिया गया है, आशा भोंसले और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में, कुछ हो गया हाँ हो गया।

इस वक्त रात के ठीक 8 बजे हैं और मैं आपका साथ दे रही हूँ, मैं किरण। आप में से बहुतों को आज पहली बार इस प्रोग्राम में मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और इसीलिए आप में से बहुत मुझे मैसेज भेजकर पूछ रहे हैं कि आज का प्रोग्राम कौन प्रस्तुत कर रहा है। जी, मैं किरण और इस वक्त आप रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़े हुए हैं, आपका अपना प्रोग्राम दिलों की आवाज़। कुछ रिश्ते मोहताज नहीं होते शब्दों के, वो बस दिलों की आवाज़ बन जाते हैं। और फिर दिल का हाल बताने के लिए कभी कभी एक गाना ही काफ़ी होता है। तो फिर सुनते रहिए दिलों की आवाज़। अगला गाना किशोर कुमार की आवाज़ में, आओ मेरे पास और आओ। और ये गाना ख़ास तौर पर रोशनुआ के अपाजू परिवार के लिए, वहाँ पर हमें सुन रहे हैं डारेन, श्वेता, रविश, प्रिशा और लोवेशा। और साथ में इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं माधुरी जी। और जो लोग हमें मैसेज नहीं भेज रहे, हमको फ़ोन नहीं कर रहे, आप सभी के नाम ये अगला गाना। और अभी पूरे एक घंटे तक हम साथ रहने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चाहे आप ड्राइव कर रहे हों, चाहे खाना खा रहे हों, और या फिर आप आराम कर रहे हों, या फिर बस गानों का आनंद उठा रहे हों।

कुछ गाने नए होते हैं, कुछ पुराने, लेकिन एहसास हमेशा नया करते हैं। आपका एक बार फिर स्वागत है दिलों की आवाज में। मैं किरण आपका साथ दे रही हूँ। पुराने गानों की यादें नए गानों की धुन में, आज दिल की हर बात हो रही है गानों के साथ। 90s का मेलोडी हो या आज का नया ट्रेंड, हर गाने के पीछे एक कहानी है। सुनते हैं अगला गीत SP बाला सुब्रमण्यम के आवाज में, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी। ये गीत सुनने की इच्छा रखती हैं निशा कोहमोदिल से। तो निशा जी, आपके लिए ये अगला गाना।

ये जो अगला गाना चलेगा वह उस जमाने का है जब लव लेटर्स लिखे जाते थे। अब कहाँ किसी को कोई लव लेटर लिखता है। नया गाना है पर फील पुरानी है। और हर ऐसे मेरे कहने का मतलब था कि इन सभी गानों को नया बनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन उसी फील के साथ जो एहसास हम उस दौड़ में महसूस किया करते थे। कुछ ऐसे गाने होते हैं जो दिल के हर तार को छू लेते हैं। ये भी वही वाला गाना है, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तर पाओगे। किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म सत्ते पे सत्ता से लिया गया ये गाना, खास तौर पर फिनिक्स से रेहना के लिए जो इस वक्त हमारा साथ दे रही है। और आप फिनिक्स से हैं और कहती हैं कि वहाँ जारों का ठंड है, तो जहाँ जहाँ पर इस तरह के ठंड महसूस किए जा रहे हैं हम आपको यही राय देंगे कि आप सुरक्षित रहें, आप अपना पूरा ख्याल रखें और अगर और कुछ ना करना हो तो बस अपने रेडियो के पास बैठकर हमारे गानों को आप सुना कीजिए।

गाना खत्म हुआ लेकिन बात अभी बाकी है और वो है दिलों की आवाज। इस प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं इस समय रेडियो मनोरंजन पर। रात के 8:25 हुए हैं, अभी से लगभग आधे घंटे तक का हमारा साथ बाकी है और अगला जो गीत चलने वाला है आशा भोंसले की आवाज़ में, बहुत ही मशहूर मूवी था जिंदगी एक जुआ, और इस मूवी से जो एक सबसे हिट गाना चला था उसको आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिल तो दिल है, दिल का क्या है।

0: रात्रि के 8:34 हुए हैं। अब थोड़ा और रेट्रो हो जाइए और ले चलते हैं आपको 80s के ज़माने में। और इस छोटे ब्रेक के बाद आज का सबसे रिक्वेस्टेड गाना चलेगा, कहीं जाइएगा मत। आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़, अपना मनपसंद प्रोग्राम रेडियो मनोरंजन पर।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

दिलों की आवाज़ ये प्रोग्राम जब चलता है तो आप अपने रेडियो का वॉल्यूम तेज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वो गाना बजता है जो आपके दिल के सबसे करीब है। मैं हूँ किरण और ये है दिलों की आवाज़। यहाँ पर आपके ही पसंद के गाने चल रहे हैं, चाहे वो नया हो या पुराना, जहाँ हर धुन के साथ जुड़ी है एक कहानी, ऐसे गाने हम आपके लिए चला रहे हैं। अगला जो गीत चलेगा वो भी एक पुराना गाना किशोर कुमार की आवाज़ में गया हुआ था, लेकिन इसको नए अंदाज में नए एहसास देने के लिए इसको आवाज़ दी है हरिहरन ने।

वादा है क्या क्या है कसम क्या है कसम जाने ना हम 8:56 हुए हैं यह इस प्रोग्राम का अंतिम गाना है और आज के लिए इतने ही गाने इतनी ही बातें अपना ख्याल रखिए हम मिलेंगे फिर कभी दिलों की आवाज़ पर गानों और जज्बातों के साथ अभी के लिए शुभ रात्रि शुक्रिया नमस्कार

0: Continuous music. RM3.
1: 7 days a week. 24 hours a day.
2: Live.
1: This is Radio Marxus.
3: रेडियो मॉर्चस रेडियो मनोरंजन पर सबके स्वागत बा माइक पे हम हैं दिलों के संगत आओ जी प्रताप सिंह आज है बुधवार की रात 2 सितंबर साल 2026 अभी से लेके रात के 11 बजे प्रस्तुत बा भोजपुरी तक का कार्यक्रम थोड़ा मन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुनने के लिए नंबर वर्क में एक जगह दे भी जगह विचार और टिकटॉक पेज हमें ऑन कर अब से रात के 10 बजे और बेशक कोनो भी गीत थोड़ा मन करता मांग के कोई के जन्मदिन बा शादी शादी के साल गिरा या इसे कोई का गीत मांगता हुआ तो टेलीफोन का जगह दे वे जगह विचार पर अच्छा प्रोग्राम के आगे बढ़ाओ बेचो जान गावल गीत के साथ आगल चेकन चांदो चलक साथ सुनाब जागी तुआ

0: सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। कमर धमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमच जलसा हंगामा भोजपुरी तड़का।

0: सब जो जो गीत चला था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन के लहरों पे और अजय प्रताप सिंह के साथ रात भर ये ठंडा कर रहता बोले दिन से दिन की घामा करी कहाँ घामा कर रखो रात ठंडा ठंडा फर्जी से शान ने ठंडा और अब जो ठंडा छीसी जिसी पानी भी बरसा था बाप रे बाप ठंडा पूछा था लिबिया में लिबिया चलाल बा और बेशक खर्चा हो दे वे जो भी चैंक पर सब बजाय टेलीफोन करे और अभी कुछ संगतिया वाला लाइन पे और कैसे मिल अब जा शोभा जीवन पॉम्बले मुझसे हेलो शोभा जी
1: हेलो प्रताप जी नमस्ते
0: नमस्ते
1: कैसे हवा
0: हम ठीक है तू कैसे हवा
1: हम बहुत ठीक हैं
0: तोरो बगल पानी पानी
1: हाँ पानी बरसा था
0: बाप रे बाप फुफ इतनी ठंडा नहीं तो दे ठंडाओ करता से माँ
1: हाँ हाँ हाँ
0: एक कुछ देख बा कोई मारा हो जाए

0: था ना?
1: हाँ, सोमवार से सो है ना।
0: और तोहर लगे सब ठीक ठाक?
1: हाँ, तोहर यहाँ परिवार
0: चला था धीरे धीरे।
1: एक गाना मांगा था।
0: हाँ बोलो।
1: ऐ पूर्णिमा फकीरा पियागल परदेश।
0: पियागल परदेश?
1: हाँ ये गिटवा ऐसनी ही हाँ पिया जला परदेश।
0: रिजॉर्ट के कर खातिर
1: सब कैक्टिन सब कोई खातिन जितना कोई भोजपुरी के
0: शौकीन है कुछ हैं से सुनने के
1: हाँ
0: पियागल परदेश है।
1: हाँ हाँ जमीनी
0: तो डाल दिया एक जोड़ी की डाल दी
1: बाय
0: बहुत बहुत धन्यवाद टेलीफोन कर ल।
1: अच्छा
0: इधर शोभा बॉम्बे मुझसे और को संग जवाब लाइन पे अगर सिमिल अब जा शांता सुकारी। हेलो शांता जी नमस्ते। हेलो
2: नमस्ते
0: कैसे शांता जी?
2: अच्छा क्या हो
0: काल हमार नहीं लीला कोलवा तो हर राजू के बोली मत है जो दलवा चाची कमती कर दम की कान निकलाती होता प्लीज।
2: अच्छा अच्छा
0: हाँ हमने हमेशा बोली ऐसा जब भी टेलीफोन कर बतल टेलीफोन वहाँ जो हर राजू के बोली माँ कमती कर दिया सुनन शिदंग की बाला इन पे तबले को समीन अब जा। हेलो भाई सुनन
3: नमस्ते।
0: नमस्ते भाई कैसे समाचार?
3: अच्छा ठीक है आप ठीक है?
0: एकदम ठीक ठाक। बोला
3: आप जानते हैं ना मैं एक फरमाइश करता हूँ एक गीत सुना नुयान के।
0: हाँ
3: हाँ अब एक गीत डाल दिया
0: सुना नुयान के कौन गीत
3: आप नया पोते को गीत कौनो यो गीत
0: सुना नुयान के आई गीत वाके कर खातेर
3: अवर पत्नी माला अवर पांच दो बेटी वा नाम दिलाम सुनाम समावर्ती नाम।
0: हाँ और अभी रात के तोहर बगल लेता हूँ कैसे बा होने
3: अभी बारिश बारिश
0: बारिश ना ठंडा ऐसे कर रहता बाप ठंडा बिजा हड्डी ऐसे ठंडा करता भाई बिजा हड्डी हड्डी में ठंडा ही रहता।
3: हाँ
0: एक दूसरे का जी ठंडा कर लगवा ना।
3: हाँ
0: मूवी मूवी कहते ठंडा मतलब तुम्हारा सोंजू गरम करे कब गरम कर ले अब जगह ठंडा कर रहता।
3: हाँ हाँ
0: थोड़ा ठंडा कर रहा
3: था
0: था पूछा था। हाँ हाँ था भैया थोड़ी देर में ओके बहुत धन्यवाद सुनने कर ला और एक संग जब हेलो।
4: हाँ बोलो नमस्ते कब
0: हाँ चाची राजवा कमती कर ला चाची
4: कमती कर ली
0: हूँ। अच्छा ए तामर जोड़ी चाची मनी मान चाची अगर देखता राजवा कमती कर दिला
4: नहीं हम कमती ही कर ला जाने ला का होल एक कुछ जोर से राजवा हबिये डाला था।
0: हाँ वो खातिर कैसे आज के दिन कैसे बीतल चाची बोले तो दिन कैसे
4: आई पानी पानी कर रहे बाले
0: आई बाबा से नागा से रगे पनिया बरसे लगे
4: आप जंबे करेला से जे मिल पावे चाई निकले
0: बाप वहाँ तो ठंडा के ठंडा के बाप
4: ना नेज बा ना नेज बा
0: और
4: रोज तो हर प्रोग्राम तू सुनी ला तो हर चटनी हाँ तरकारी बड़ी मजेदार सब मजेदार
0: अच्छा लग
4: बेटा सुने ला
0: अच्छा लग रहा सुने के।
4: हाँ तो हमार बेटा बोला था माँ हम बोली ये मन सुन भाई ला था पाइन पा जो जो मु पूरे सुने था अभी सुना थोड़ी।
0: हाँ
4: हाँ
0: तो आज जब प्रोग्राम के इंटरेस्टिंग बनाए ना सिद्धे चीज को
4: खो बाहु जल जाने ना बेटा हमार हम नहीं सकेला हाउ कौन सी में डाले हाउ
0: टिकटॉक टिकटॉक
4: टिकटॉक टिकटॉक में नहीं डाली ला मैं साथ नहीं जाने ला बिदा करे हम
0: तो अपने मजा दिया
4: है हम सेज रूलांट में है बेटा।
0: हाँ हाँ ओके ओके
4: आउरे में चले ला मैं दोनों गोरो पे रहे
0: फासिल फासिल नहीं बा
4: फासिल नहीं बा दोनों ठेवना इजे होगर रहल
0: डॉक्टर ओपेरे कर दोनों ठेवना।
4: हाँ दोनों ओपेरे कर के गो अच्छा बा तो आठ बरिस होगल बा।
0: हाँ का कर बा चाची
4: आवत रली जात रली सब में
0: तू एमबीसी से बावत लागे ना आवत है एमबीसी
4: नहीं खाली हम गीतवा गईले हैं
0: एता
4: एठी में कोविड में हवे मंदिर में तब बोला खूब जोली रहल।
0: हाँ अंके याद बा
4: याद बना बेटा
0: हाँ, एल्बम नहीं निकला एल्बम नहीं
4: ना हम घर से गईले रहली
0: हां हां के याद बा हां हम जानते
4: कोविड रहल
0: कोविड बाप देखल कोविड कोविड से ग्रुप बन गेल बाप ऐसन प्रॉब्लम
4: हां तो हम तब राजो में सुनने बोला था जेकर खुशी जो जी एगो गीत होय किस्सा होय तब हम से गईले त मिलल खूब जोली रहल
0: बहुत सब कोई खुशी

0: चाहती तो आवाज सुन के सब कोई गदगद हो गए। हाँ
1: हाँ हाँ
0: और अभी कौन गीत सुन बा चाची बोले थे?
1: हाँ जी हाँ गीत ज्यादा है ठीक है सुना लो यन के।
0: कौन गीत है?
1: घर में कदुआ रोटी बाहर में नहीं घर में लंबा हाँ हाँ कदुआ रोटी बाहर में लंबा धोती
0: सुना लो यन घर में हम जानते हैं काले खोद के चला दे अपसा के राती गीत मांगते हुआ।
1: हाँ हम गीतवा माता सब हमारे परिवार थे
0: और सब परिवार लोग खातिर अरे बहुत खुशी चाची सुने कर ला ऐसे ही इनके साथ देते रहिए।
1: हम रोज तो हर प्रोग्राम सुनी ला।
0: अच्छा प्रोग्राम अच्छा लगा एकदम एकदम चकाचक
1: सकारी बोले ला चटनी बोले ला चिल में के पिसल चटनी
0: बहुत धन्यवाद चाची आली हाँ
1: हम खुश रह ला खाई के चाची।
0: हाँ चाची का कर आली बाय आली बहुत धन्यवाद तही रहे उनके चाची जिन बहुत प्यार से उनके सुनने का उनका बोला ली ना एमी लीला एक एक वो नंबर बा चाची माफ करिए एक एक में और बा जगत से बोला अब सर कि एक दो में और डाल दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमने की सकी टेलीफोन करे रोको संगत लाइन पर कुछ मिले जाए। हेलो हेलो हेलो जी
2: आफिज
0: अभी आपको सभी लोग सुन रहे हैं। आफिज कहाँ से हैं आप?
2: हम लवेनिया से।
0: हाँ बोलो
2: लवेनिया
0: से हैप्पी बर्थडे बोला था तो और जन्मदिन के अवसर पर दे मना प्यार आशीर्वाद। हाँ तो अक्सर तोहर नाम आवेला ढेर कोई तोहर गीत तो कथित गीत मांग ले विष्णु हरे सलाम वालेकुम नमस्ते बोंजू हाय हगी तो आले फिर तो गीत डाले अब से फिकर नहीं करिए ठीक बा तो चला अब गीत सुन सब बाग टू बाग दू गाना एगो पूर्णिमा फकीरा गीत मंगलन शोभा और एक जना मंगलन आरगो गीत तो बाग टू बाग दू गीत सुन अब जा एगो सुना नहीं के एगो पूर्णिमा फकीरा के तो चला फकीरा पूर्णिमा फकीरा गीत पहले मोरे फुलिया कर बात सुन के बजा बोल सुन अब जा बाग टू बाग दू गाना

दुनिया भर चारों बगल गोल और हमने के जो देश है मॉरिशस से गो स्वर्ग जैसा देश है बढ़िया जोड़ी बा हमने के देश असल में लिखा जाए तो मॉरिशस से गो देश नहीं है हिंद महासागर के गो छोटा सन टापू है छोटा सन डॉट है और मॉरिशस के चारों ओर पानी ही पानी और दुनिया भर से पर्यटक वगैरह मॉरिशस के भ्रमण कर बोलन से ए उपेई ब्याह जोड़ी जो हाँ हमने के पे बढ़िया जोड़ी बा बहुजातीय देश फिर हरियाली ही हरियाली और यहाँ के समुंदर यहाँ के बालू यहाँ के घाम यहाँ के मौसम आ हा हा तो हमने के देश जो है बेशक यहाँ पर इतना जोड़ी देश है कि बॉलीवुड से देखो या वह यहाँ पर शूटिंग करे जैसे फिल्म हम के शूटिंग हो रहा है फिल्म साउथन के शूटिंग हो रहा है कुछ कुछ होता है जैसे फिल्म के शूटिंग हो रहा है यहाँ पर मॉरिशस में तो बॉलीवुड से भी लोग आवेदन से इतना हमने के देश के इतना जुड़ी बा तो यहाँ पर एक लैंडस्केप अगर खातिर आवेदन से यहाँ फिल्म कॉपी करे तगड़ा कि मॉरिशस देश त्रिलोकगंगा की गई रहे वन है कि चलावत इस हमने बहुत बहुत प्यार के साथ हरियाणा जी के नाम आप फोन फिनिक्स से बेन जलीला साइदा जिया दरकर सब परिवार के नाम और है चली आशा जानू के नाम आप रहलन को तेज मामा कुमारी फिर शुभम दीदी आरती जीजा जी और सब जानू परिवार के नाम और रात की जितना कोई अभी उनकी सुना था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर है गीत तोहरो नाम प्रताप के उसका बेस्ट फ्रेंड हिरीश नारायण के नाम हिरीश नारायण रहलन मिडलैंड्स तो चले

खजन सास बहू के रिश्ता है बहुत ही अनोखा रिश्ता रहेला सास के मनिया है बात बात पर बहू के ताना देके बहू चाहे कितना भी अच्छा रही पर सास के चेहरा कोनो न कोनो बात के लेके बहू के कुछ न कुछ बोले के और जो आज के बहू है सास के मुंह तोड़ जवाब देवेला है तो सास बहू के लड़ाई अभी से नहीं सदियों से होता जब रामायण के रिपोर्ट से महाभारत के समय से सास बहू के जो रिश्ता है अब सास जो है उसे चेला की बहू जो अगर बेटा के चोरी कर देलक और जो बहू है वो सोचेला कि छोकरा खाली पर माँ की बात सुनेला तही में लड़ाई झगड़ा हो लगेला अब बेचारा दुल्हाका करी माँ की बात सुनी तो पत्नी नाराज़ हो जाए पत्नी की बात सुनी तो माँ नाराज़ हो जाए तो ऐसा में कुछ है करे कि ऐसा में हम थोड़ा कुछ सलाह दें जब माँ थोड़े से कोशिश बोली तो माँ की बात लेके अपन पत्नी से नहीं बोलिया और जब पत्नी को न बात बोली तो अपन माँ से नहीं बोलिया खाते जब जब

नहीं बात तो है कमान जोरी से कर बा तो घर में महाभारत नहीं हुई और अगला गीत कृष्ण जी के नाम और पत्नी आशा और कर सब परिवार के नाम संजय बिहारी की ओर से पत्नी सुरेखा और सब बिहारी परिवार के नाम कल माधव भैरव के जन्मदिन रहल तो देवना प्यार माधव तो चाचा साइरन की ओर से चाची रानी दीदी परी और मामा टीना पापा कवि दादी माला पुपुरीना माधव भैरव हैप्पी बर्थडे जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक

0: Continuous music. Music. RM3.
1: On the hour, every hour. Radio Marches.
2: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। कमट, धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
3: रात के 10 बजे पर तू सुनते हो रेडियो मॉर्शस AM मोड पर और रेडियो मनोरंजन FM मोड पर 94.5 और 698.2 FM पर।

MBC Kidugu Channel और वह Radio Manoranjan Radio Mauritius और जी प्रताप सिंह अंदर में सब होच पीटर का कार्यक्रम और अगला गीत चार दिन की जिंदगी बा गीत चली करुणा खातिर हेलो करुणा गीत केशव नत्तू के नाम यश अश्विन मारी नेल जेलिन इंद्रानी लोनली फिर एक गीत चली शर्मिला विरार अनितानन को क्वीन मिलियने अश्विन अनि आयता राम नाजा आलिन पुल रोशनी निर्मल रमन कवि कविराज असमद गोहिम फिर उमा फुलचन एडवा फबरीना और हे गीत चली एडवा फबरीना और राघवेन शिवरम केन दुखिया केम शिरीन राम जोन हेलो निशा नायक हे गीत और नाम रोशन साहब फिर नूश और फिर हवन सिमवेन वेदिनो और फिरोजा ये सब संगत हमने देखा था टिकटॉक पेज पर और ढेर कोई हमके टिकटॉक पेज पर फॉलो करा था ढेर कोई रेडियो पर सुना था फिरोजा भी टिकटॉक पर आला वन हाय फिरोजा कैसे समाचार अगला की तोहर खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ चार दिन की जिंदगी सच्ची की संगत यारो है चार दिन की जिंदगी है फिर काज नहीं कौनसी हो कौनसी नहीं फिर कौन बात की घमंड कोई पैसा की घमंड करेरा कोई अपन सौंदर्य की घमंड करेरा घमंड जो है बहुत बुरा चीज है रावण ने कहा आदमी के घमंड नहीं चलता हमने कौन चीज ऐसा इतना घमंड काहे छना करे के मिलो ने गीत मांगा था ओकर माता जी के नाम इंद्रानी बिहारी और सब परिवार के नाम जी भी है गीत और नाम और गीत खासम खास फिरोजा खाते जो बहुत प्यार से हमने की देखा था टिकटॉक पर और सुना था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर

रात के 10:06 होता और अब थोड़ा सा बॉलीवुड न्यूज़ तो रखे सुनाओ। जा हाल ही में आमिर खान जो है फिर से शादी कर लन और बेशक आमिर खान जो है बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हवंजा और ओकर जिंदगी में ढेर मना शादी होल बा और वो अपन जिंदगी में दो बार शादी कर ले रहा। पहला शादी रीना दत्ता से होल, ओकर बाद किरण राव से शादी होल। दोनों रिश्ता में समय के साथ बदलाव आल और बाकी आमिर खान हमेशा अपन परिवार और निजी जिंदगी के समान देत आल बा और शादी के बंधन जुन है हाई बॉलीवुड लोग खातिर ये लोग खातिर बुझाला को मजाक कहे कि एक कुछ शादी करे रहन सा और फिर शादी नहीं चले रहा तो फिर से कोशिश करें सा शादी करे के पर एक जन शादी को लॉटरी है सब कोई कि नहीं मिल पाए तक मिलल बा तो अच्छी तरह से पर सुनो गल बा कि आमिर खान की शादी शुदा जिंदगी अच्छी तरह से नहीं चलता वो खातिर पड़ल और एगो शादी करेगी। तो अगला गीत बड़ी प्यारा संगीत उरी उरी बिस्वानी जी पाए गीतवा कहले हवन उरी उरी महिमा और गीत चली खासम खास सुनीता कदारू के नाम रागिनी बुधवा बाबिता दिनेश यादव आयशा और चांदनी अनिता लाल जी वंदना और उषा संयोगिता रामा कांजा सुबोल सुशील रिशन गीता देवी रागी पूजा उमिला तहालू और माला भी बहुत प्यासे उनके साथ देवतवन थैंक यू। अक्षय भैया कैसे अक्षय जी और आयशा भी तो चल एक साथ सुनब जाए गीत ओरी ओरी मामा

0: बिल्कुल संगत यहाँ लाइन पे बात कर समीन अब्जा। हेलो नमस्ते।
1: हेलो नमस्ते प्रताप जी।
0: के हवा जा
1: श्रीमती
0: सुयाक से हाँ। कैसे समाचार?
1: समाचार सब ठीक
0: बाप ते लालिन है नहीं देवा तो ना वो देवा ते लालिन कहाँ है इसे बोलो तो
1: लालिन तो खुदते हैं एक समय हो गल नहीं मिला था लालिन
0: हाँ एक के को निमरो बना और समाचार सुनाओ
1: सब समाचार सब ठीक बा आपके
0: सब ठीक है अगला कौन गीत सुन बा
1: संतोष महादेव का गीत वाला डाल दिया
0: कौन गीत
1: मरमिट में चढ़ा गरम पानी
0: मरमिट में चढ़ा बा
1: गरम पानी चढ़ा बा भाई अलबा इटाली से भौजाई अलबा भाई अलबा भतीजी अलबा
0: अभी कितना दिन दयान से मोरिस में
1: अभी तो जा सौ सर दो तीन समय की
0: ओके ओके
1: महेश परिवार है ये गीत डाल दिया और सब महेश परिवार सब चंद्रमुनि परिवार खातिर
0: ओके
1: सब एमबीसी के स्टाफ लोग खातिर सब जितना काम कर रहा लोग सब कोई खातिर
0: बहुत बहुत धन्यवाद चाची बहुत धन्यवाद। हेलो
2: हेलो प्रताप जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी के हव जा
2: मैं मनु
0: हाँ मनु
2: बेटा काम करता बता तब गैलाली देखा दुख लाती गीत मांगा राधा के सुभेला भर मांग सिंदूरवा कृष्णा बजावे शुक्रवार के कृष्णा जन्माष्टमी बा हई कृष्णा के गीत डाल दिया हमार नातिन बा और हमार नाती बा मिहान सब परिवार खातिर कृष्णा जन्माष्टमी सब कोई के
0: अभिनंदन हो
2: अभिनंदन
0: बहुत धन्यवाद
2: फोन कर ला लो के सब कोई के बहुत
0: धन्यवाद ओके शुभ रात्रि। तो चल से मरमित में चढ़ल बा गरम पानी और एगो संगतिया बा कुछ मिले जा शोभा काठो बोन से। हेलो शोभा।
3: हेलो नमस्ते।
0: नमस्ते कैसे समाचार?
3: ठीक ठीक आप ठीक
0: सब ठीक ठाक हाँ

0: और बोले अगला गीत के खातिर
1: सब जितना कोई रात के काम करता जितना कोई सुनाता सब में जितना दोस्त बस सबके लिए
0: सबको खाते
1: सुना
0: नयन का
1: गाना सुना
0: नयन ललका चिड़ैया चार दिन से थोड़े समय में ठीक बा बहुत बहुत धन्यवाद शोभा हमने से बात कर ला और मरमित में चढ़ रहा गर्म पानी गीत शादी से रगिनी बुधवा के नाम बबीता दिनेश यादव डिंपल बुधराम अक्षय सिद्दीक विराज प्रणेश भक्त अनिजा ओहमद आर्यन प्रिया रागिनी फिर सेविया एंजल दावी यूसुफ सिल मिल्क राजविंद गोविंद दीपचंद ला साधना आलगू आद्या गोकुल राम केविन वैदलिंगम है गीत चली जॉन अल्फ्रेड सुमन राय और है गीत नीतीश बर्टन बर्टन माफ करिए नीतीश बर्टन और है गीत मिकवी बनी दिनेश हरी साइरोन और है गीत चलावती सरीना संत बख्श और खासम खास संध्या ब्रिंदा सोती जीतू है गीत चली रानी जयसूरी खातिर भी साथ में एंजो लेनो गीत नाम उमा शिनी स्वीति योवना खातिर भी फिर है गीत चलावती मिसी खातिर और है गीत चली ज्योति चमन जी बहुत प्यार से हमने के साथ देवतवन बहुत बहुत धन्यवाद कृषि फिर है गीत चली कृष्ण सुभाष मोती है गीत नाम नोआ माधवी भीषा जवाही और है गीत चलावस रेशन कृष्णी और व्यार है गीत नाम दिव्या एम आर ए और RVR is Radio Mauritius, Radio Manoranjan. MVC is the radio channel. That is why we are here at Radio Mauritius, Radio Manoranjan. But TikTok page, where we can see it, we can see it. We can see it. We can see it. We can see it. We can see it. We can see it. We can see it. We can see it. We can see it. We can see it. We can see it. We can see it. We can see it. We can see it. We

रात के 10:26 होता, रात के 10:21 होता और अब हमनी तो रासो अब जाएगो कहानी, कहानी के शीर्षक है कंजूस पति। तो रामदीन एगो बहुत बड़ा कंजूस आदमी रहल, वो पैसा खर्च करे के डरत रहल और जैसे ही पैसा खर्च हो तो जैसे ओकर जान निकल जाता। रामदीन के ओकर पत्नी फूलमती बहुत परेशान रहे। एक दिन फूलमती बोललक और पति से, ए जी घर में सब्जी नहीं नहीं बा, जा सब्जी बाजार से सब्जी ले आव। रामदीन तुरंत बोलक, सब्जी घर में अचार तो बा। फूलमती बोलक, अचार तो रोज रोज के खा के थक गल। रामदीन मुस्कुरा के बोलक, तो आज अचार के डब्बा दू रख के खाइए, स्वाद बदल जाए। फूलमती माथा पकड़ के हिल गल। कुछ दिन बाद रामदीन के जन्मदिन आल। फूलमती सोचता कि आज तो वो जरूर कुछ खर्च करी। वो बोलक, ए जी आज तोहर जन्मदिन बा, कुछ अच्छा खाए के मन करा था। रामदीन ने घड़ी देख के बोलक, चला होटल के सामने से घूम के आइला सा खुशबू सूंघ के पेट भर जाई। फूलमती जन है गुस्सा, ओकर गुस्सा सातवां आसमान पहुँच गल। अगला दिन रामदीन के दोस्त ओकरा घरे आयल। दोस्त बोलक, रामदीन चला चाय पिए चला हो। रामदीन धीरे से बोलक, तू चाय पीब तोरा सामने बैठा के गर्माहट महसूस करब। दोस्त हंसते हंसते लोत प्रोत हो गल। एक दिन रामदीन बाजार गल तो रास्ता में ओकरा एगो बूढ़ा आदमी मिलल। बूढ़ा बोलक, बेटा भगवान के नाम पर कुछ पैसा दे दो। रामदीन जेब टटोल के बोलक, बाबा पैसा तो नहीं बाप, बाकी एगो बढ़िया सलाह दे तोहरा। बूढ़ा पूछला, कौन सलाह देबा? रामदीन बोलक, अगली बार जब केहू से पैसा मंगबा तब पहले ये देख ल कि वो आदमी हम जैसन कंजूस बा कि नहीं। बूढ़ा माटा पीट के हंसे लगल। पर लौटला पर फूलमती पूछलक, आज बाजार से कहाँ आनला हो? रामदीन घर से जेब में से एगो चीज निकाल के दिखैलक। फूलमती पूछलक, ये का है? रामदीन बोलक, बाजार में मुफ्त में मिलल मुस्कान। फूलमती हंस पड़ल, रोवा किससे शादी करके हमार जिंदगी में हंसी तो मुफ्त में मिलेला, बाकी खर्चा करे के मौका कबू ना मिलेला। रामदीन मुस्कुरा के बोलक, देखला शादी में भी फायदा ही फायदा। फूलमती हंसते हंसते बोलक, हे भगवान ये आदमी कंजूस ना कंजूस के ब्रांड एम्बेसाडो है। कहानी की स्थिति है कि ज़रूरत से ज़्यादा कंजूस आदमी के पैसा तो बचा सकेला, बाकी रिश्तेदार या दोस्त जरूर गंवा देवेला। तो देखिए तू कंजूस नहीं बन गया है, थोड़ा लगे पैसा बात पैसा के सही इस्तेमाल करिया, ठीक बा? ऐसे में अगला गीत चली राधा मोरे अमाइया किशोर खिमिया गेले वने गीतवा और है गीत चली सिमी श्रीराम के नाम वनिता के नाम दियू है गीतरों का देर आशा रागिनी नगामत रीता जानबीब रोकस्टर ग्रास और लेस सिमी श्रीराम अक्षय सीता मोती शमिला दिनेश हरी गोकुल जानकी दुबराज बृंदा कालू रोजाना बुदन ललिता मायाराम जग रघुमाला फ्लैमिंगो गर्ल और राविश खतीर। तो चलो एक साथ सुन।

सब कोई बोले लंचा कब ने पिया के मामा अब ने पिया पर पीते रहे लंचा है पिया के लट ले जब लग जाए तो बाप ही पिया के लट नहीं छुटेला और इस जिंदगी के बारे में का सकब जा बोले चोला के ठिकाने बाज है सब काल के रही को के नहीं कल हो ना हो और जिंदगी के बारे में सोच ब त सोचते रह जेब कब कब लावी हमी के दिखों सहते करा दे बेला जो चीज नया तान कर बा ऊ हो जाला फिर भी भगवान के धन्यवाद बोलिया किस जगत से जिए हमने के लड़का हमने के औरत हमने के पति लड़का सब कोई हमने क्यों के सामने बा ये सबसे बड़ा बात है तो जिंदगी जो है एक नहीं चाहे सही लेके सही ले बता स्ट्रेस हुई लग पा जिंदगी से जाता ओके जायदा धीरे धीरे हौली हौली अगला गीत भी ना भैरव के नाम का घरवाला को दुगो बेटा और सब भैरव परिवार के नाम और है कि तो हमने चलावत तेईस वंदना कुमारी के नाम कर घर वाला और लड़का लोग के नाम साथ में बिना कुमु स्वामी मेबक से वन शुरमा दुखित मेबक से रोके सब परिवार के नाम और विश्वानी बाबूला लागोसा से वन है गीत खासम खास तौर खातिर चल एक साथ सुने जिंदगी

नंद के घर जन्मे नंद लाला, मथुरा में गूंजी खुशियों की तान, मुरली वाले की कृपा से हर घर बने प्रेम और शांति का धाम। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एमबीसी रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की मंगल कामनाएं। एमबीसी रेडियो विशेस यू अ पायस कृष्ण जन्माष्टमी।

संगतियालो गहाई सुके सुक चार सप्ताह के अपनी मनाओं पर कृष्ण जन्माष्टमी और कृष्ण भगवान जो है विष्णु के अवतार में से एक है और कृष्ण भगवान की लीला के बारे में जितना भी बोला सा कम है कृष्ण जो है वो बांसुरी बजैया है और जगत के पालनहार है और माँ देवकी भी है और माँ यशोदा भी और राधा भी प्यार है रुक्मिणी भी प्यार है और कृष्ण भगवान जो है धेमा राक्षस के पद कर रख जैसे जरासन और धेमना जन राक्षस लोग बधोल पूतना जरासन कंस लेखा राक्षस के पद कर रख कृष्णा और कृष्णा के ओकर नाम ही है कृष्ण।

का मतलब अत्यंत सुख ब्लिस सच्चिदानंद हवन कृष्ण भगवान और कृष्ण भगवान के जन्मदिन मनाओ सहाय सुख के और इस्कॉन में भी मनाओ जाए बोनाके में भी और हेमाना मंदिर में भी तो कृष्ण के जन्म रात के हो रहल और कृष्ण भगवान जो जब जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ेला तब तो कृष्ण भगवान अवतार लेके आवेला इस दुनिया में धर्म के स्थापना खातिर और महाभारत में कृष्ण अर्जुन से ढेर कुछ बोलेवन ज्ञान भक्ति और कर्म के बारे में तो चला जितना भी संगत्या लोग सुख के काहम रहें वृद्धारण करें सब कृष्ण भगवान के भोग लगे सब कृष्ण भगवान के गुणगान कर अब जाता सबको की अब सब कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना हावे पायस कृष्ण जन्माष्टमी

संगति आतिश भगरती के गेला है गीत के संगे छोड़ के मोरिसवा है गीत संगे भोजपुर का प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त हुआ था। कुछ ही सेकंड्स में रात के 11 बज जाए और 11 बजे से सर्वे सुनने पर प्रोग्राम ये प्रोग्राम सुन बचा सुनने पर कार्यक्रम और कर बाद रात के 12 बजे से काफा जिसके पौन बज जाए नॉन स्टॉप फिल्मी तराने और हमने की तरह की मुलाकात यहाँ तक रहा। अब हमने की तरह की मुलाकात हुई शाम के फजर के 6 बजे से 9 बजे रही MBC रेडियो मॉरिशस पर। और एक मुलाकात तक हमने की इजाज़त दें और जी प्रताप सिंह से तारुक की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते और सलाम शुभरात्रि बाय बाय टेक केयर गॉड ब्लेस नमस्ते।

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
3: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। स्वागत है आप सभी का राइट नाउ इन योर सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। वैसे दोस्त, कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते हैं, वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। एक धुन सुनते ही स्कूल के दिन याद आ जाते हैं, या कोई पुराना दोस्त, कोई अपना, या फिर वो वक्त जब लाइफ थोड़ी सिंपल हुआ करती थी। आज सुनहरे पल में

हम उन्हीं खूबसूरत यादों के पन्ने पलटेंगे तो कहीं मत जाइएगा रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और मेरा साथ बस यूं ही देते रहे यादों के सफर पर बिल्कुल इन योर सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस

0: सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: वैसे दोस्त कहते हैं वक्त कभी वापस नहीं आता, लेकिन कुछ पुराने गाने हमें उस वक्त में ज़रूर वापस ले जाते हैं। आज भी जब कोई पुरानी मेलोडी बजती है तो दिल कहता है अरे ये तो मेरी याद है। तो आज की रात उन्हीं यादों के नाम, उन्हीं एहसासों और उन्हीं एवरग्रीन मेलोडीज के नाम। आप सुन रहे हैं सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस।

वैसे दोस्तों आपके घर में भी कोई ऐसा पुराना सॉन्ग है जो सुनते ही मम्मी पापा याद आ जाते हैं या कोई ऐसी मेलोडी जो आपके बचपन का साउंडट्रैक हुआ करती थी। म्यूजिक की सबसे ब्यूटीफुल बात यही होती है कि वक्त बदल जाता है, हम बदल जाते हैं, लेकिन एक पुराना गीत वही फीलिंग वापस ले आते हैं। तो चलिए एक और खूबसूरत याद को जिंदा करते हैं सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर।

वैसे आज प्रेजेंट से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और चलते हैं उन दिनों में जब एंटरटेनमेंट का मतलब रेडियो कैसेट और रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करता था, जब एक फेवरेट सॉन्ग के लिए पूरा दिन इंतजार होता था, वो

सिंप्लिसिटी, वो एक्साइटमेंट और वो म्यूजिक, सब कुछ कितना स्पेशल था ना। तो आज फिर से वही मैजिक महसूस करते हैं पुराने बॉलीवुड गानों के साथ सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर।

वैसे दोस्तों कभी कभी एक पुराना गाना सुन के हम स्माइल कर देते हैं बिना किसी रीजन के, शायद क्योंकि उस गाने के साथ एक ब्यूटीफुल मेमोरी जुड़ी होती है। शायद कोई ऐसा इंसान जिसे हमने कभी बहुत अपना माना था, या फिर बस वो वक्त ही था इतना खूबसूरत। आज उन्हीं मेमोरीज को दिल से सेलिब्रेट करते हैं आपका अपना नॉस्टैल्जिक म्यूजिकल जर्नी सिर्फ सुनहरे पल में। गिनेशा का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस।

करते हैं कि दिल से आपने इस खूबसूरत शो को एंजॉय किया होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से आपसे मिलने का हम वादा करते हैं एक और सुनहरे पल में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखें, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: सी रेडियो हर पल आपके साथ
1: रेडियो मॉरिशस
0: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो।
1: देखो मैके नहीं तू मत मैके मैके मत जाइयो। ए टोनी फर्नांडिस बेबी

0: साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला